0: श्रोताओं, इस समय सवेरे के 5:30 हुए हैं। वक्त है अनमोल विचार का।
1: हमारा लक्ष्य ये है पूर्ण आर्थिक और सांस्कृतिक संपन्नता के साथ पूर्ण आंतरिक शांति हो और हमारी सद्भावनाएं फलवती होकर शांति का साम्राज्य स्थापित करें। भीतरी और बाहरी शांति एक दूसरे पर निर्भर हैं। बाहरी शांति के बिना हम उन्नति के पथ पर अग्रसर नहीं हो सकते और भीतरी शांति के बिना हम दूसरों को शांति का उपदेश नहीं दे सकते। भीतरी शांति के बिना शांति का उपदेश चिराग तले अंधेरे जैसी बात होगी।
0: ये था अनमोल विचार और अब आरंभ हो

0: आंतरिक शांति हो और हमारी सद्भावनाएं फलवती होकर शांति का साम्राज्य स्थापित करें। भीतरी और बाहरी शांति एक दूसरे पर निर्भर हैं। बाहरी शांति के बिना हम उन्नति के पथ पर अग्रसर नहीं हो सकते और भीतरी शांति के बिना हम दूसरों को शांति का उपदेश नहीं दे सकते। भीतरी शांति के बिना शांति का उपदेश चिराग तले अंधेरे जैसी बात होगी।
1: ये था अनमोल विचार और अब आरंभ होता है भक्ति गीतों का कार्यक्रम प्रभाती वंदना। कार्यक्रम में सबसे पहले सुनिए संवेद स्वरों में मातृ वंदना।

सुमन कल्याणपुर के गाए भक्ति गीत के बाद कार्यक्रम में अब प्रस्तुत है शबाब की रचना महेंद्र कपूर के स्वर में।

अनुराधा पौडवाल और साथियों की गाय इस भक्ति गीत के साथ ही भक्ति गीतों का कार्यक्रम प्रभाती वंदना अब यहीं संपन्न होता है।

0: मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। सवेरे के 5:55 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम एग्री टिप्स।
1: मुख्यतः कृषि वानिकी की चार विधियां हैं, खेतों की मेड़ों पर वृक्ष लगाना, फार्म गृह व जल स्रोतों के पास पेड़ लगाना, जल निकास एवं सिंचाई की नालियों के किनारे पेड़ लगाना तथा फसल के साथ वृक्ष लगाना। किसान भाइयों, आप अपने खेतों की मेड़ों अथवा फार्म की सीमाओं पर वृक्ष लगा सकते हैं। वृक्ष लगाते समय यह ध्यान रहे कि उत्तरी और पश्चिमी सीमा पर वृक्ष लगाएं, जिससे कि पूर्व व दक्षिण की दिशा से सूर्य का प्रकाश बराबर मिल सके। ऐसे पेड़ लगाएं जो शीघ्र बढ़ने वाले हों, जिनका छतक अधिक घना ना हो, वृक्ष पानी तथा उर्वरकों के लिए प्रतिस्पर्धा ना करें। जहां तक हो सके दो दलीय वृक्ष लगाएं, जो कि नाइट्रोजन को प्रतिस्थापित करके खेत

0: उर्वरा शक्ति बढ़ाने में सहायक होते हैं और हमारी फसलों की उपज को भी प्रभावित नहीं करते। सीमाओं पर वृक्षरोपण 2 से 3 मीटर की दूरी पर करें। आवश्यकतानुसार वृक्षों की कटाई छटाई करते रहें। ऊपरी 1/3 हिस्सा छोड़ दें। ऐसा करने से वृक्षों की बढ़वार अच्छी होती है। खेत की मेड़ों पर लगाने के लिए जो उपयुक्त वृक्ष हैं उनमें कैजुरीना, सुबबूल, मलबेरी, पॉपुलर आदि शामिल हैं। किसान भाइयों, फार्म गृह एवं जल स्रोतों के आसपास भी पेड़ लगाकर हम लाभान्वित हो सकते हैं। इससे लकड़ी के अतिरिक्त विश्राम के लिए छाया मिलेगी और समय समय पर पशुओं को चारा, ईंधन की लकड़ी आदि की भी प्राप्ति होगी। अक्सर किसान फार्म गृह के पास कुछ स्थान जानवरों को बांधने के लिए तथा कृषि यंत्र आदि को रखने के लिए छोड़ देते हैं। ऐसे स्थानों पर छायादार व बहुउपयोगी वृक्ष लगाएं। ऐसे वृक्ष ज्यादा घने नहीं होने चाहिए। इसके लिए उपयुक्त वृक्ष हैं आम, इमली, जामुन, कटहल, नीम, शहतूत, संतरा आदि। जल निकास एवं सिंचाई की नालियों के किनारे भी वृक्ष लगाए जा सकते हैं। इसके लिए जो उपयुक्त वृक्ष हैं उनमें शामिल हैं बबूल, पॉपुलर, बांस आदि। इससे हमारे किसान भाइयों को अतिरिक्त आमदनी मिलेगी और साथ ही साथ नालियों आदि में मिट्टी भरने से बच जाएगा। फसलों के साथ वृक्ष लगाकर भी हम कुछ लाभ कमा सकते हैं, लेकिन वृक्षों का चुनाव करते समय हमें कुछ बातों पर विशेष ध्यान देना होगा। वृक्ष ऐसे होने चाहिए जो कि फसलों के साथ प्रतिस्पर्धा ना करें। वृक्ष ज्यादा गहराई तक जाने वाले हों। वृक्ष अधिक फैलने वाले ना हों तथा ज्यादा घने ना हों। वृक्ष शीघ्र बढ़ने वाले हों। वृक्षों की पत्तियां व जड़ें ऐसी ना हों जो कि सड़ने पर हानिकारक प्रभाव छोड़ें। ऐसे वृक्ष जिनका कि हम चुनाव करते हैं वो बहुउपयोगी होने चाहिए तथा अधिक कटाई छटाई को सहन करने की क्षमता रखने वाले होने चाहिए। ऐसे वृक्षों में बबूल, जिंदाबल्ली, देशी बबूल, पॉपुलर, कैजुरीना आदि शामिल हैं। किसान भाइयों, अपने उपयोग के हिसाब से कृषि वानिकी की विभिन्न प्रणालियों को अपनाकर आप निश्चित तौर पर लाभान्वित हो सकते हैं।
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम एग्री टिप्स।

ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। सवेरे के 6 बजने को है। अब कुछ ही पलों में समाचारों का प्रसारण होगा, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

आकाशवाणी समाचार के साथ मनीष शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउन लाइन के साथ वार्ता करेंगे। इस बातचीत से दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों को और मजबूती मिलेगी। इस दौरान सुरक्षा और संपर्क सुविधा सहित भारत और म्यांमार के समग्र संबंधों पर भी चर्चा होगी। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने कल नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति से मुलाकात की। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से खेत बचाओ अभियान आरंभ करेंगे। एक महीने का यह अभियान 30 जून तक चलेगा। इस

दौरान उर्वरकों के संतुलित और सही उपयोग, मौसम से जुड़ी चुनौतियों को देखते हुए किसानों को समय पर सलाह देने, पंचायत स्तर पर सक्रिय भागीदारी और विभिन्न योजनाओं का लाभ सीधे गांवों तक पहुंचाने पर बल दिया जाएगा। इससे पहले श्री चौहान ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत में इस अभियान में भागीदारी सुनिश्चित करने का आग्रह किया। पश्चिम बंगाल में आज मंत्रिमंडल का पहला बड़ा विस्तार होगा। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद में 35 नए मंत्रियों को शामिल किया जाएगा। शपथ ग्रहण समारोह दिन में 11 बजे लोकभवन में होगा। श्री अधिकारी ने ऐतिहासिक सत्ता परिवर्तन के बाद 9 मई को पदभार संभाला था। इस विस्तार के साथ राज्य में मंत्रियों की संख्या बढ़कर 41 हो जाएगी, जो पश्चिम बंगाल विधानसभा के 294 सदस्यों के लिए संवैधानिक रूप से तय 15% की सीमा के अनुरूप है। 10 राज्यों से राज्यसभा की 24 सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनावों की अधिसूचना आज जारी की जाएगी। आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक में 4-4 सीटें, राजस्थान और मध्य प्रदेश में 3-3 सीटें, झारखंड में 2 सीटें और मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम में 1-1 सीट पर चुनाव होंगे। महाराष्ट्र, तमिलनाडु और ओडिशा में 1-1 सीट के लिए राज्यसभा उपचुनाव की अधिसूचना भी आज जारी की जाएगी। आज से 8 जून तक नामांकन पत्र दाखिल किए जा सकते हैं। मतदान और मतगणना 18 तारीख को होगी। महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ महायुति ने विधान परिषद चुनाव के लिए 17 सीटों के बंटवारे को अंतिम रूप दे दिया है। समझौते के अनुसार भाजपा 11, शिवसेना 4 और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी 2 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। विपक्षी महाविकास अघाड़ी ने पहले ही 17 में से 15 सीटों के बंटवारे की घोषणा कर दी है, जिसमें कांग्रेस 8, शिवसेना, यूबीटी 4 और शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी 3 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। नामांकन पत्र दाखिल करने का आज अंतिम दिन है। बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर मंगोलिया के उलान बटार स्थित गंदतेग चेगलिंग मठ में अरहत सारिपुत्र और अरहत महामोगलन के पवित्र अवशेषों को पूरे विधि विधान के साथ स्थापित किया गया। ये दोनों भगवान बुद्ध के प्रमुख शिष्य थे। इन अवशेषों को भारत से 10 दिन की प्रदर्शनी के लिए लाया गया है, जो 10 जून तक चलेगी। इस प्रदर्शनी का उद्घाटन असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य और मंगोलिया में भारत के राजदूत अतुल मल्हारी गोत्सुर्वे की उपस्थिति में किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल अक्टूबर में मंगोलिया के राष्ट्रपति उखनागिन खुरेलसुख की भारत यात्रा के दौरान इस प्रदर्शनी की घोषणा की थी। प्रसिद्ध गायिका सुमन कल्याणपुर का मुंबई स्थित उनके आवास पर निधन हो गया। वे 89 वर्ष की थीं। महाराष्ट्र के राज्यपाल जिष्णुदेव वर्मा, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और सुनेत्रा पवार तथा केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने सुमन कल्याणपुर के निधन पर शोक व्यक्त किया है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर लगातार दूसरी बार आईपीएल खिताब जीत लिया। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 155 रन बनाए। विराट कोहली की नाबाद 75 रन की पारी की बदौलत बेंगलुरु ने 18वें ओवर में ही मैच जीत लिया। विराट कोहली को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। और इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय शगन चोपड़ा। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल होल्ड डिस्कशंस विद म्यांमार प्रेसिडेंट ऑन एंड आउंग लैंग इन न्यू दिल्ली टुडे। द टॉक्स विल बी हेल्ड ऑन फर्दर स्ट्रेंथनिंग द हिस्टोरिकल एंड सिविलाइजेशनल टाइज बिटवीन द टू कंट्रीज। द एंटायर गैमट ऑफ रिलेशंस बिटवीन म्यांमार एंड इंडिया including security and connectivity will come up for discussions during the talks. Prime Minister Narendra Modi will hold discussions with Myanmar President U Min Aung Hlaing in New Delhi today. The talks will be held on further strengthening the historical and civilizational ties between the

0: निदेशालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार MV कैमलबे की श्री विजयपुरम के लिए यात्रा कल शाम 4 बजे कोलकाता से आरंभ होगी। MV रानी लक्ष्मी माया बंदर होते हुए डिगलीपुर की यात्रा पर आज प्रातः 7 बजे श्री विजयपुरम से जाएगा। ये जलयान कल प्रातः 7 बजे डिगलीपुर से छूटकर माया बंदर होते हुए श्री विजयपुरम लौटेगा। MV सेंटिनल लिटिल अंडमान के लिए कल सवेरे 7 बजे श्री विजयपुरम से चलेगा तथा इसकी वापसी होगी कल ही रात 8 बजे लिटिल अंडमान से। जलयान सिंधु नानकौरी होते हुए कैम्बलवे के लिए कल सुबह 9 बजे श्री विजयपुरम से जाएगा। ये जलयान बृहस्पतिवार 4 तारीख को सुबह 8 बजे कैम्बलबे से छूटकर नानकौरी होते हुए श्री विजयपुरम लौटेगा। MV नॉर्थ पैसेज शहीद द्वीप के लिए आज दिन में 11 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा। ये जलयान आज ही दोपहर 1 बजे शहीद द्वीप से स्वराज द्वीप के लिए और दोपहर बाद 2:30 पर स्वराज द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए छूटेगा। MV जॉली बॉय स्वराज द्वीप के लिए आज दिन में 11:30 पर श्री विजयपुरम से रवाना होगा। ये जलयान आज ही दोपहर बाद 2 बजे स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप के लिए और दोपहर बाद 3:30 पर शहीद द्वीप से छूटकर श्री विजयपुरम के लिए यात्रा करेगा। MV बारटान शहीद द्वीप के लिए आज दोपहर बाद 2:30 पर श्री विजयपुरम से चलेगा तथा इसकी वापसी होगी आज शाम 4:30 पर शहीद द्वीप से। MV कमोटा स्वराज द्वीप के लिए आज शाम 5 बजे श्री विजयपुरम से छूटेगा। ये जलयान कल प्रातः 5:30 पर स्वराज द्वीप से छूटकर शहीद द्वीप होते हुए श्री विजयपुरम लौटेगा। MV जॉली बॉय स्वराज द्वीप और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल प्रातः 6 बजे श्री विजयपुरम से जाएगा। ये जलयान कल दोपहर 12 बजे रंगत से छूटकर लॉन्ग आइलैंड और स्वराज द्वीप होते हुए श्री विजयपुरम लौटेगा। MV बारटान शहीद द्वीप के लिए कल प्रातः 6:15 पर श्री विजयपुरम से चलेगा तथा इसकी वापसी होगी कल ही सुबह 8:30 पर शहीद द्वीप से। MV नॉर्थ पैसेज स्वराज द्वीप के लिए कल सवेरे 6:15 पर श्री विजयपुरम से छूटेगा तथा इसकी वापसी होगी कल ही सुबह 8:45 पर स्वराज द्वीप से। MV स्ट्रेट आइलैंड शहीद द्वीप के लिए कल दिन में 11 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा। ये जलयान कल दोपहर 1 बजे शहीद द्वीप से स्वराज द्वीप के लिए और दोपहर बाद 2:30 पर स्वराज द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए छूटेगा। MV रानी चंगा स्वराज द्वीप के लिए कल दिन में 11:30 पर श्री विजयपुरम से रवाना होगा। ये जलयान कल ही दोपहर बाद 2 बजे स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप के लिए और दोपहर बाद 3:30 पर शहीद द्वीप से छूटकर श्री विजयपुरम के लिए यात्रा करेगा। MV बारटान शहीद द्वीप के लिए कल दोपहर बाद 2:30 पर श्री विजयपुरम से चलेगा तथा इसकी वापसी होगी कल शाम 4:30 पर शहीद द्वीप से। MV कमोटा स्वराज द्वीप के लिए कल शाम 5 बजे श्री विजयपुरम से छूटेगा। ये जलयान परसों बुधवार 3 तारीख को प्रातः 5:30 पर स्वराज द्वीप से छूटकर शहीद द्वीप होते हुए श्री विजयपुरम लौटेगा। अभी आप जलयानों का यात्रा कार्यक्रम सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। सवेरे के 6:15 हुए हैं। अब आपके मनोरंजन के लिए पेश है कार्यक्रम इंद्रधनुष।
1: इंद्रधनुष।

नमस्कार श्रोताओं, जीवन के रंगों से सजे कार्यक्रम इंद्रधनुष में आप सभी का स्वागत है। इंद्रधनुष के सात रंग हमें जीवन की विविध भावनाओं और अनुभवों की याद दिलाते हैं। इन्हीं रंगों में से एक सबसे सुंदर रंग है खुशी। खुशी वह एहसास है जो चेहरे पर मुस्कान लाती है, दिलों को जोड़ती है और जीवन को उत्साह से भर देती है। छोटी छोटी

दोनों की उड़ान तो कभी रिश्तों की मधुर छाव। इन सभी के बीच प्रेम का एक ऐसा भाव है जो जीवन को संपूर्णता प्रदान करता है। प्रेम केवल दो हृदयों का मिलन नहीं बल्कि विश्वास और समर्पण का वह बंधन है जो जीवन की हर खुशी को नया अर्थ दे देता है। जब कोई अपना हमारे जीवन में आता है तो खुशियों की परिभाषा बदल जाती है। तब सफलता का आनंद, सपनों की चमक और जीवन की हर मुस्कान उसी के साथ जुड़ जाती है।

दोस्तों, जीवन की सबसे बड़ी पूंजी यदि कोई है तो वो है खुशी। हर व्यक्ति की यही कामना होती है कि उसके जीवन में सुख, शांति और खुशियों का वास हो। किसी के चेहरे पर मुस्कान लाने का सुख, किसी उदास मन में आशा जगाने का आनंद और अपनों के साथ बिताए गए मधुर क्षण, यही तो जीवन की वास्तविक खुशियां हैं। जब किसी के जीवन का दामन खुशियों से भर जाता है तो उसके चेहरे की मुस्कान केवल उसकी अपनी नहीं रहती बल्कि आसपास के वातावरण को भी आलोकित कर देती है। वास्तव में खुशियां केवल पाने का नहीं बल्कि बांटने का नाम है।

तो दोस्तों, हर आरंभ का एक सुंदर समापन होता है और आज खुशी के रंगों से सजे हमारे इस सफर का पड़ाव भी यहीं आकर ठहरता है। खुशी कोई मंजिल नहीं बल्कि जीवन जीने का एक नया तरीका है। यह हमारे विचारों में बसती है, हमारे व्यवहार में झलकती है और हमारी मुस्कान से संसार को रोशन करती है। कभी किसी अपने के साथ बिताए गए पल में, कभी किसी छोटे से सपने के पूरा होने में, तो कभी बिना किसी कारण के मुस्कुरा लेने में, खुशी अपने अनेक रूपों में हमारे जीवन को सुंदर बनाती है। इसी कामना के साथ कि आपके जीवन का हर दिन नई उम्मीदों, नई मुस्कानों और नई खुशियों के रंगों से सजा रहे। अब हम आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।

श्रोताओं, अभी आप इंद्रधनुष कार्यक्रम का आनंद ले रहे थे। इस कार्यक्रम को आपकी सेवा में प्रस्तुत कर रही थी शाइना शमीम। मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय सवेरे के 6:30 हुए हैं। श्रोताओं, अब लीजिए सुनिए रामचरित मानस गान की 256वीं कड़ी।

धारण कर सूनी कुटी के समीप पहुंचता है। सीता जी को अनेक प्रकार की मनगढ़ंत कथाएं सुनाकर वो उनके मन में भय अथवा प्रेम जगाने के प्रयत्न करता है। एक यति के मुंह से दुष्टतापूर्ण गुहार सुनकर सीता के मन में संशय उत्पन्न होता है कि तभी रावण अपने वास्तविक रूप में प्रकट हो जाता है। उसका नाम सुन और रूप देखकर सीता भयभीत होती हैं, किंतु धैर्यपूर्वक उसको श्री राम के पराक्रम की धमकी देती हैं। क्रुद्ध रावण बलात् उन्हें रथ पर बिठाकर आकाश मार्ग से उड़ चलता है। सीता का विलाप सुन मार्ग के सभी जड़चेतन प्राणी व्यथित होते हैं। गिद्धराज जटायु सीता जी को पहचानकर रावण से उन्हें मुक्त कर देने की प्रार्थना करते हैं, किंतु अपनी विनय का रावण पर कोई प्रभाव न होता देख जटायु रावण को पृथ्वी पर ला पटकते हैं और चूंच मार मार कर उसे घायल कर देते हैं।

आज जटायु सीता जी को पहचान कर रावण से उन्हें मुक्त कर देने की प्रार्थना करते हैं, किंतु अपनी विनय का रावण पर कोई प्रभाव न होता देख जटायु रावण को पृथ्वी पर ला पटकते हैं और चूंच मार मार कर उसे घायल कर देते हैं।

0: श्रोताओं, अभी आप रामचरितमानस गान की 256वीं कड़ी सुन रहे थे। गायक कलाकार थे ए हरिहरन और मिताली सिंह, तथा संगीत संयोजन किया सतीश भाटिया ने। मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। सवेरे के 6:40 हुए हैं। अब लीजिए सुनिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 वर्षों के वे परिवर्तन जिन्हें देश ने महसूस किया है पर समाचार वार्ता। लेखक और वाचक है चित्रकांत शर्मा।
1: वर्ष 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की जिम्मेदारी संभाली तब भारत कई सामाजिक और आर्थिक चुनौतियों के बीच खड़ा था। बीते 12 वर्षों में केंद्र सरकार ने योजनाओं, तकनीक और जन कल्याण आधारित नीतियों के जरिए शासन के स्वरूप में व्यापक परिवर्तन लाने का प्रयास किया। वर्ष 2026 में मोदी सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के अवसर पर यह चर्चा तेज है कि इस दौरान भारत ने किन किन क्षेत्रों में बदलाव महसूस किया और इन योजनाओं का आम लोगों के जीवन पर क्या असर पड़ा। इन वर्षों की सबसे बड़ी विशेषता सरकारी योजनाओं को सीधे लाभार्थियों तक पहुंचाने पर जोर दिया जाना रहा। शासन ने प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण, डिजिटल सेवाओं, वित्तीय समावेशन और अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं की पहुंच सुनिश्चित करने को अपनी प्राथमिकता बनाया। गांवों से लेकर शहरों तक, महिलाओं से लेकर किसानों तक और युवाओं से लेकर छोटे कारोबारियों तक कई वर्गों को केंद्र में रखकर योजनाएं लागू की गईं। प्रधानमंत्री जन धन योजना इस बदलाव की प्रमुख आधारशिला बनी। वर्ष 2014 में शुरू हुई इस योजना के तहत करोड़ों लोगों के बैंक खाते खोले गए और बड़ी संख्या में गरीब परिवार पहली बार औपचारिक बैंकिंग व्यवस्था से जुड़े। विशेष रूप से कोरोना महामारी के दौरान इस व्यवस्था ने गरीब परिवारों तक आर्थिक सहायता पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ग्रामीण

0: महिलाओं के जीवन में बड़ा परिवर्तन लेकर आई। वर्षों तक लकड़ी और उपलों के धुएं में खाना बनाने को मजबूर महिलाओं को एलपीजी गैस कनेक्शन उपलब्ध कराए गए। महिला सम्मान और स्वास्थ्य के संदर्भ में इसे एक महत्वपूर्ण कदम माना गया। स्वास्थ्य क्षेत्र में आयुष्मान भारत योजना को मोदी सरकार की प्रमुख उपलब्धियों में गिना जाता है। गंभीर बीमारियों के इलाज में यह योजना लाखों परिवारों के लिए राहत लेकर आई। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार 40 करोड़ से अधिक लोगों को इसका लाभ मिला है। स्वच्छ भारत मिशन ने देश में साफ सफाई को जन आंदोलन का रूप दिया। 2 अक्टूबर 2014 को शुरू हुए इस अभियान के तहत देश भर में करोड़ों शौचालयों का निर्माण हुआ। इससे महिलाओं की गरिमा और सुरक्षा को मजबूती मिली। सरकार के अनुसार 60 करोड़ से अधिक लोगों को इससे गरिमापूर्ण जीवन का लाभ मिला। ग्रामीण भारत में जल उपलब्धता की दिशा में जल जीवन मिशन एक बड़ा अभियान बनकर उभरा। 12 करोड़ से अधिक लोगों को नल से जल पहुंचाया गया। इसका सबसे अधिक असर ग्रामीण महिलाओं के जीवन पर पड़ा, जिन्हें पहले पानी लाने के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती थी। किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के माध्यम से सीधे आर्थिक सहायता की व्यवस्था शुरू की गई। इसके तहत किसानों के खातों में हर वर्ष 6,000 रुपए सीधे हस्तांतरित किए जाते हैं। रोजगार और स्वराज के क्षेत्र में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना और स्टार्टअप इंडिया उल्लेखनीय रही हैं। मुद्रा योजना के तहत छोटे व्यापारियों और युवाओं को ऋण उपलब्ध कराया गया, जिससे छोटे कारोबारों को बढ़ावा मिला। वहीं 2016 में शुरू हुई स्टार्टअप इंडिया पहल ने युवाओं को नए उद्यम स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत करोड़ों गरीब परिवारों को पक्के मकान उपलब्ध कराए गए। कई स्थानों पर मकानों का स्वामित्व महिलाओं के नाम दर्ज किया गया। डिजिटल इंडिया अभियान ने बीते 12 वर्षों में भारत की प्रशासनिक और आर्थिक व्यवस्था में बड़ा परिवर्तन किया। यूपीआई पेमेंट सिस्टम, डिजिटल भुगतान, डिजी लॉकर आदि ने सरकारी सेवाओं को अधिक तेज, पारदर्शी और सुलभ बनाया। निर्माण और निवेश के क्षेत्र में मेक इन इंडिया और पीएलआई योजना के जरिए भारत में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने का प्रयास हुआ। कोरोना महामारी के बाद छोटे दुकानदारों और रेहड़ी पटरी वालों के लिए पीएम स्वनिधि योजना सहारा बनी। इसके तहत बिना गारंटी ऋण देकर छोटे कारोबारियों को अपना काम दोबारा शुरू करने में सहायता दी गई। आधारभूत संरचना के क्षेत्र में भी बीते वर्षों में तेजी देखने को मिली। सीमावर्ती और दूर दराज इलाकों में सड़क, राजमार्ग और रेल संपर्क के विस्तार पर बेहतरीन काम हुआ। इसके साथ ही प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 80 करोड़ लोगों को हर महीने 5 किलो मुफ्त अनाज उपलब्ध कराया जा रहा है। गरीबी उन्मूलन को लेकर सरकार का दावा है कि पिछले वर्षों में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए हैं। पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने जन कल्याण योजनाओं, डिजिटल तकनीक, आधारभूत ढांचे और सेवा वितरण के मॉडल में कई बड़े बदलाव देखे हैं। इन योजनाओं का असर देश के अलग अलग वर्गों तक पहुंचा है और शासन व्यवस्था में तकनीक आधारित पारदर्शिता बढ़ी है। सरकार इन उपलब्धियों को नए भारत की मजबूत नींव के रूप में प्रस्तुत करती है। वहीं इन योजनाओं के क्रियान्वयन और जमीनी प्रभाव पर चर्चा और समीक्षा भी लगातार जारी रही है, लेकिन इतना स्पष्ट है 2014 से 2026 तक का यह दौर भारत की विकास यात्रा में योजनाओं और तकनीक के व्यापक विस्तार के रूप में दर्ज किया जाएगा।
1: श्रोताओं, अभी आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 वर्षों के वे परिवर्तन जिन्हें देश ने महसूस किया पर समाचार वार्ता सुन रहे थे। लेखक और वाचक थे चित्रकांत शर्मा। मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। वतन के गीत कार्यक्रम के तहत आइए अब सुनते हैं एक देशभक्ति गीत।

वतन के गीत कार्यक्रम के तहत अभी आप एक देशभक्ति गीत सुन रहे थे। मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्स पर हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। सवेरे के 6:50 हुए हैं। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार जन सेवाओं तथा मछुआरों के लिए कोई विशेष चेतावनी नहीं है। कल शाम तक के मौसम संबंधित पूर्वानुमान में बताया जाता है कि अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के एक या दो भागों पर गरज के साथ 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे के वेग से हवाएं चलेंगी तथा द्वीपों के अधिकांश भागों पर हल्की से मध्यम वर्षा होगी या गरज के साथ छींटे पड़ेंगे। ये थी मौसम की जानकारी। और अब लीजिए सुनिए हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। अब से कुछ देर बाद यानी सवेरे 7 बजे सुनिए जन सूचनाएं। 7:15 पर FM 100.9 MHz पर आप सुन पाएंगे विद भारती मुंबई से प्रसारित प्रायोजित कार्यक्रम भूले बिसरे गीत, जबकि इसी समय पर प्राइमरी चैनल पर आप सुनेंगे कार्यक्रम देश रागिनी। 7:30 पर प्राइमरी चैनल और FM 100.9 MHz पर गुड मॉर्निंग अंडमान में आप सुन सकेंगे रेडियो रागिनी 90 वर्षों की कहानी कार्यक्रम। सुगम संगीत के कार्यक्रम में 8:30 पर फनकारा होंगी रेशमा। फिल्मी गीतों का लुत्फ लीजिए सुबह 9 बजे तराने सुहाने कार्यक्रम में। 9:30 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में उस्ताद अली अकबर खान का सरोद वादन प्रसारित किया जाएगा। गीत गाता चल कार्यक्रम का समय रहेगा सुबह 10 बजे। दिन के 11 बजे आप सुन पाएंगे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT की 1296वीं कड़ी।

एक ही कलाकार कार्यक्रम में 11:30 पर एसपी बालासुब्रमण्यम के गाए गीत आप सुन सकेंगे। तेलुगु में गान लहरी कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुनेंगे एक ही फिल्म के गीत दोपहर 12:00। 12:30 पर मलयालम में होगा युवाणी कार्यक्रम। समूहगान शिक्षा का कार्यक्रम आओ हिलमिल गाएं आप सुनेंगे दोपहर 1:10 पर। 1:30 पर प्रसारित होगा कार्यक्रम आपके नाम फिल्मी पैगाम। दोपहर बाद 2:30 पर मौसम की जानकारी के बाद प्राइमरी चैनल पर हमारी पहली सभा संपन्न होगी, जबकि FM 100.9 MHz पर हमारी स्थानीय सभा जारी रहेगी लाइव फोन आउट कार्यक्रम हेलो डियर फ्रेंड्स के साथ। तत्पश्चात 3:30 पर सुनिए कार्यक्रम यूं ही गाते रहो। हमारी दूसरी सभा आरंभ होगी शाम 4:00 निकोबारी कार्यक्रम के साथ, जिसमें आप सुनेंगे टी टॉप गांव के सदस्यों द्वारा प्रस्तुत गीत। 4:30 पर सुगम संगीत के कार्यक्रम में कलाकार होंगे गुलाम अली। कार्यक्रमों का विवरण बताया जाएगा 4:40 पर। 4:45 पर सुनिए कार्यक्रम बहारों की शाम। थिरकते हुए गीतों का लुत्फ लीजिए तमिल कार्यक्रम में शाम 5:00। 5:30 पर बांग्ला में आप सुन पाएंगे युवाणी कार्यक्रम। संध्या 6:00 कृषि जगत में आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम कृत्रिम गर्भाधान, हर किसान की नई उड़ान की 8वीं कड़ी। कार्यक्रम में अतिथि होंगे वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर लावले नीनानंद साहेब राव। विषय रहेगा कृत्रिम गर्भाधान के लिए सरकारी योजनाएं और समर्थन। थिरकते हुए गीतों का लुत्फ लीजिए 6:30 पर पॉप मसाला कार्यक्रम में। 7:15 पर सुनिए मौसम की जानकारी, जलयानों का यात्रा कार्यक्रम एवं जन सूचनाएं। दिल ने फिर याद किया कार्यक्रम का समय रहेगा 7:20। 7:30 पर विश्व माता पिता दिवस और विश्व दुग्ध दिवस पर चर्चा के बाद होगा पुराने फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम यादें। चित्रपट संगीत कार्यक्रम का आनंद लीजिए रात 8:00। 8:30 पर सुनिए रोजगार समाचार। तत्पश्चात होगा कार्यक्रम गौरवगान। संध्या से आते हैं कार्यक्रम आप सुन पाएंगे रात 10:00। इन कार्यक्रमों के अतिरिक्त रात 9:15 पर स्पॉटलाइट और 9:30 पर पब्लिक स्पीक कार्यक्रम हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे, जबकि रात्रि 10:00 FM 100.9 MHz पर आप सुन पाएंगे विद भारती मुंबई से प्रसारित प्रायोजित कार्यक्रम छाया गीत। ये थे हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रम। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। सवेरे के 6:55 होने को है। अब कुछ ही पलों में संस्कृत में समाचार हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: पक्षीय सम्बन्धः इतोपि सुदृढः भविष्यति इत्यपेक्षास्ति। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना प्रकृतिसंरक्षणे स्थानीय समाह्वानानां निराकरणे अन्यसामाजिककार्येषु च तेषां प्रेरक उपक्रमाणाम् उपलब्धीनां च विषये अनेकेषां नागरिकाणाम् उत्कृष्टयोगदानाय प्रशंसा कृता। आकाशवाण्याः स्वकीये मासिक कार्यक्रमे मन की बात इत्यनेन कार्यक्रमेण राष्ट्रम् अभिसम्बोधयन् श्रीमोदी झारखण्ड राज्यस्य रांचीनगरे आयोजिते राष्ट्रिय वरिष्ठ एथलेटिक्स फेडरेशन स्पर्धायां उदयोन्मुख क्रीडकानाम् उत्कृष्ट प्रदर्शनस्य प्रशंसाम् अकरोत्। प्रवर्तमानायाः उष्णतरंगस्य स्थितिं प्रति चिन्तां प्रकटयन् प्रधानमन्त्रिणा जनान् अधिकृतान् उपदेशान् अनुसृत्य सुरक्षितं स्थातुं पूर्वसूचनानुसारं कार्यं च कर्तुं उद्बुद्धवान्।
1: इस समय देश के ज्यादातर हिस्सों में बहुत गर्मी पड़ रही है। तेज धूप, गर्म हवाएं, ऐसे मौसम में अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पानी पीते रहिए, धूप में अगर निकलना ही पड़े तो थोड़ा संभल कर निकले। इस दिशा में सरकार की भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट्स ने जो गाइडलाइंस जारी की है वो भी भूलिएगा नहीं।
0: पश्चिम बंगाल राज्यस्य मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी अद्य स्वमंत्रिमंडलस्य विस्तारं करिष्यति। पञ्चत्रिंशत् नूतनाः मन्त्रिणः मन्त्रिमंडले समाविष्टाः भविष्यन्ति। शपथग्रहणं प्रातः एकादशवादने लोकभवने भविष्यति। नूतनेन समावेशेन शुभेन्दु प्रशासने महत्वपूर्णरूपेण संवर्धनं भविष्यति, येन मई मासस्य नवमे दिनांके पञ्चमन्त्रिभिः सह कार्यभारं स्वीकृतमासीत्। अनेन विस्तारेण राज्यमन्त्रिमण्डलस्य मन्त्रिणां कुलसंख्या एकचत्वारिंशत् यावत् वर्धिता भविष्यति। निर्वाचनायोगेन दश राज्यानां चतुर्विंशति राज्यसभासदस्यानां द्विवार्षिक निर्वाचनस्य कार्यक्रमस्य घोषणा अद्य क्रियते। भूतपूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा, केन्द्रीय मंत्रिणो जॉर्ज कुरियन तथा रवनीत सिंहश्च तेषु सदस्येषु अन्तर्भवन्ति। आन्ध्रप्रदेशे, गुजराते तथा कर्णाटके प्रत्येकस्मिन् राज्ये चत्वारि चत्वारि आसनानि सन्ति। राजस्थाने तथा मध्यप्रदेशे प्रत्येकस्मिन् राज्ये त्रीणि त्रीणि आसनानि सन्ति। झारखण्डे द्वे आसने स्थः, मणिपुरे, मेघालये, अरुणाचलप्रदेशे च, मिजोरमे च प्रत्येकस्मिन् राज्ये एकैकम् आसनं रिक्तमस्ति। आयोगस्यानुसारं जूनमासस्य अष्टादशदिनांके मतदानं भविष्यति। मतगणना अपि तस्मिन्नेव दिने भविष्यति। महाराष्ट्रस्य, तमिलनाडुराज्यस्य, ओडिशाराज्यस्य च प्रत्येकस्य एकस्य आसनस्य कृते राज्यसभायाः उपनिर्वाचनस्य कार्यक्रमस्य अपि आयोगेन घोषणा क्रियते। एतद् निर्वाचनमपि अग्रिममासस्य अष्टादशदिनांके भविष्यति। एकोननवतिवर्षीया प्रख्यातगायिकायाः सुमनकल्याणपुरस्य मुम्बईनगरे स्वनिवासस्थाने मृत्युः अभवत्। पञ्चाशदधिक ऊनविंशतिशततमात् वर्षात् सप्तत्यधिक ऊनविंशतिशततमं वर्षं यावत् चलचित्रसङ्गीतस्य स्वर्णयुगे नैकासु भारतीयभाषासु कृतकार्याणां कृते एषा वयोवृद्धगायिका प्रसिद्धा आसीत्। अपि च आईपीएल क्रिकेट क्रीडायां गतरात्रौ अहमदाबादस्य नरेन्द्र मोदी क्रीडांगणे अन्तिमस्पर्धायां गुजरात टाइटन्स दलं पञ्चस्तोभैः पराजित्य गतविजेतृदलेन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु इत्यनेन अस्य वर्षस्य श्रृंखलापि विजिता इति वार्ताः।
2: नमस्कार, मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय सवेरे के 7 बजे हैं जन सूचनाएं। स्थानीय मौसम कार्यालय से आज सवेरे प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 22 घंटों के दौरान श्री विजयपुरम और आसपास के क्षेत्रों में 2 मिलीमीटर वर्षा हुई। सवेरे 5:30 पर सापेक्ष आर्द्रता 92% तथा न्यूनतम तापमान 26.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि कल शाम द्वीपों का अधिकतम तापमान रहा 31.6 डिग्री सेल्सियस। सूर्योदय सवेरे 4:54 पर हुआ तथा सूर्यास्त का समय रहेगा 5:40। मौसम के बाद अब विमान की उड़ान संबंधी सूचना। एयर इंडिया से प्राप्त जानकारी के अनुसार दिल्ली

से आ रहा यात्री विमान 2937 दिन के 11 बजे श्रीविजयपुरम पहुंचेगा तथा विमान संख्या 2936 की श्रीविजयपुरम से दिल्ली के लिए उड़ान होगी दिन के 11:40 पर। ये थी एयर इंडिया से प्राप्त जानकारी के अनुसार विमान की उड़ान संबंधी सूचना।

0: श्रोताओं, अब से कुछ देर बाद यानी सवेरे 7:15 पर 100.9 MHz FM पर आप सुनेंगे विविध भारती मुंबई से प्रसारित प्रायोजित कार्यक्रम भूले बिसरे गीत, जबकि इसी समय पर प्राइमरी चैनल पर आप सुन सकेंगे कार्यक्रम देश रागिनी। सात बजकर 30 मिनट पर प्राइमरी चैनल और FM 100.9 MHz पर गुड मॉर्निंग अंडमान में आप सुन सकेंगे रेडियो रागिनी 90 वर्षों की कहानी कार्यक्रम। सुगम संगीत के कार्यक्रम में 8:30 पर फनकारा होंगी रेशमा। फिल्मी गीतों का लुत्फ आप ले सकेंगे सुबह 9 बजे तराने सुहाने और सुबह 10 बजे गीत गाता चल कार्यक्रम में। नौ बजकर 30 मिनट पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में उस्ताद अली अकबर खान का सरोद वादन प्रसारित किया जाएगा। दिन के 11 बजे आप सुन पाएंगे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT की 1296वीं कड़ी। एक ही कलाकार कार्यक्रम में 11:30 पर SP बाला सुब्रमण्यम के गाए गीत आप सुन सकेंगे। मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 KHz और FM 100.9 MHz पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। सवेरे के 7:05 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार बुलेटिन बस कुछ ही पलों बाद।
1: नमस्कार, आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत स्वास्थ्य सेवा निदेशालय की ओर से विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जा रहा है। समाज कल्याण विभाग द्वीप समूह के वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगजनों के लिए दिव्यांगता मूल्यांकन शिविरों का आयोजन करने जा रहा है। श्री विजयपुरम में कैट की सर्किट बैठक 8 जून से आयोजित की जाएगी और जिला और राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिताएं 6 जून से शुरू।

सुबह के समाचारों के साथ मैं पूजा सिंह। राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत राज्य हेल्थ सोसाइटी और स्वास्थ्य सेवा निदेशालय की ओर से विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जा रहा है। इसका उद्देश्य आम जनता को तंबाकू के हानिकारक प्रभावों के प्रति जागरूक करना और तंबाकू मुक्त जीवन शैली को बढ़ावा देना है। इस सिलसिले में विभिन्न प्रतियोगिताओं के आयोजन किए जा रहे हैं। दो श्रेणियों में आयोजित होने वाले 500 से 800 शब्दों की निबंध लेखन प्रतियोगिता अंग्रेजी या हिंदी में से किसी भी भाषा में A4 आकार के पेपर में हाथ से लिखी होनी चाहिए। निबंध मौलिक और तंबाकू नियंत्रण या तंबाकू के दुष्प्रभावों से संबंधित होना चाहिए। पेपर

प्रतिभागी का नाम, उम्र, पता और संपर्क नंबर स्पष्ट रूप से लिखा होना चाहिए। तंबाकू विरोधी जागरूकता और स्वस्थ जीवन शैली विषय के साथ चित्रकला प्रतियोगिता भी आयोजित की जाएगी। चित्र A2 ड्राइंग शीट या हाफ साइज चार्ट पेपर पर बनाई जानी चाहिए। प्रतिभागी का नाम, उम्र, पता और संपर्क नंबर पेंटिंग के पीछे वाले हिस्से पर साफ साफ लिखा होना चाहिए। प्रत्येक श्रेणियों के लिए नगद पुरस्कार दिए जाएंगे। इसके लिए आवेदन 10 जून तक राज्य तंबाकू नियंत्रण सेल का कार्यालय में जमा किए जा सकते हैं। समाज कल्याण विभाग द्वीप समूह के वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगजनों के लिए एडिप और RVY योजना के अंतर्गत सहायक उपकरणों के वितरण हेतु दिव्यांगता मूल्यांकन शिविरों का आयोजन करने जा रहा है। शिविर 22 जून से सुबह 9 बजे से द्वीपों के विभिन्न चिकित्सा केंद्रों पर आयोजित किए जाएंगे। मूल्यांकन शिविर में आने वाले लाभार्थियों से अपना UDID कार्ड, आय प्रमाण पत्र और आधार कार्ड साथ लाने को कहा गया है। RVY योजना के तहत आने वाले 60 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग के वरिष्ठ नागरिकों से अपना आधार कार्ड और 15,000 रुपये से कम मासिक आय दर्शाने वाला आय प्रमाण पत्र के साथ आवश्यक दस्तावेज लाने को कहा गया है। अधिक जानकारी के लिए नोडल अधिकारी या संबंधित CDPO कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है। भारतीय स्टेट बैंक ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान ने पशुपालन और पशु चिकित्सा सेवा विभाग के सहयोग से गुप्तापाड़ा ग्राम पंचायत में 12 दिवसीय पोल्ट्री फार्मिंग प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया। इसका उद्देश्य महिला सशक्तिकरण और स्वरोजगार के अवसरों को बढ़ावा देना था। ये कार्यक्रम विशेष रूप से NRLM स्वयं सहायता समूहों की महिला सदस्यों के लिए तैयार किया गया था, ताकि ग्रामीण महिलाओं को पशुधन क्षेत्र में व्यवहारिक कौशल और आय बढ़ाने के अवसर प्रदान किए जा सकें। इस अवसर पर डॉ. संजलि ने इस प्रशिक्षण में मुख्य विशेषज्ञ के रूप में अपनी सेवाएं दी। कार्यक्रम में विभिन्न स्वयं सहायता समूहों की कुल 23 महिला प्रतिभागियों ने भाग लिया। कार्यक्रम के समापन समारोह के दौरान गुप्तापाड़ा ग्राम पंचायत प्रधान दुर्लभ दास ने प्रशिक्षण पूरा करने वाली सभी महिला प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र वितरित किए। उन्होंने महिलाओं से प्रशिक्षण का उपयोग आर्थिक आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए करने को कहा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी श्री विजयपुरम से सुन रहे हैं। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। श्री विजयपुरम में कैट की सर्किट बैठक 8 से 19 जून तक वर्चुअल माध्यम से आयोजित की जाएगी, जिसमें न्यायिक सदस्य उर्मिला दत्ता सेन और प्रशासनिक सदस्य सुचित्य कुमार दास मामलों की सुनवाई करेंगे। इस दौरान नए आवेदन भी स्वीकार किए जाएंगे। जिन विभागों के मामले कैट में लंबित हैं, वे संबंधित दस्तावेजों के साथ सरकारी अधिवक्ता और पैनल अधिवक्ताओं से संपर्क कर सकते हैं। साथ ही सभी विभागाध्यक्षों से अपने नोडल अधिकारियों को सुनवाई की तारीख पर संबंधित दस्तावेजों के साथ उपस्थित रहने का निर्देश देने को कहा गया है। अंडमान निकोबार राज्य ओलंपिक संघ की ओर से आयोजित जिला और राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिताओं के कार्यक्रम में संशोधन किया गया है। संशोधित कार्यक्रम के अनुसार दक्षिण अंडमान ओपन जिला बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन 6 से 8 जून तक, ओपन राज्य बैडमिंटन चैंपियनशिप 20 से 23 जून और जिला योगा चैंपियनशिप 13 और 14 जून को आयोजित की जाएगी। संघ ने खिलाड़ियों और प्रतिभागियों से प्रतियोगिता में भाग लेने की अपील की है। इन खेलों में ओपन जिला और ओपन राज्य बैडमिंटन चैंपियनशिप की प्रविष्टियां जमा करने की अंतिम तिथि 5 और 19 जून है, जबकि जिला योगा चैंपियनशिप की अंतिम तिथि 12 जून निर्धारित की गई है। टीबी मुक्त भारत अभियान 100 दिवसीय अभियान के तहत कर्मियों के लिए निवारक स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देने के लिए एक विशेष पहल की गई। इसके अंतर्गत दक्षिण अंडमान जिला टीबी केंद्र की ओर से फिनिक्स बे स्थित लाइट हाउस और लाइटशिप निदेशालय दीप भवन में आयुष्मान आरोग्य शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर चिकित्सा विशेषज्ञ डॉ. शिव शंकर सिंह मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। उन्होंने प्रारंभिक निदान के महत्व, स्वस्थ जीवन शैली की आदतें, टीबी जैसी संक्रामक बीमारियों, गैर संक्रामक बीमारियों से बचाव और नियमित स्वास्थ्य जाँच की आवश्यकता पर जोर दिया। शिविर के दौरान निदेशालय के कर्मचारियों के लिए NCD स्क्रीनिंग और एक्सरे स्क्रीनिंग की गई। इसका उद्देश्य टीबी और जीवन शैली से जुड़ी बीमारियों जैसे मधुमेह और उच्च रक्तचाप के शुरुआती लक्षणों का पता लगाना और उनका समय पर इलाज करना था।

0: शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए डाइट 11 शर्मा में 2 वर्षीय डीएलएड पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए आज से कॉमन कॉलेज एडमिशन पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 21 जून की मध्यरात्रि तक है। आवेदन पत्रों की जांच 22 से 28 जून तक चलेगी। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ने जुलाई 2026 शैक्षणिक सत्र के लिए विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश प्रक्रिया शुरू कर दी है। विश्वविद्यालय की ओर से प्रमाण पत्र, डिप्लोमा, पीजी डिप्लोमा, स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर के पाठ्यक्रम संचालित किए जाते हैं। प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन 15 जुलाई तक किए जा सकते हैं। इच्छुक अभ्यर्थी अधिक जानकारी के लिए इग्नो क्षेत्रीय केंद्र श्री विजयपुरम से संपर्क कर सकते हैं। आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रसारित होने वाला ये प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप मीडियम वेव के साथ साथ FM 100.9 MHz पर भी सुन रहे हैं। प्रादेशिक समाचार के अलावा सुबह 9 बजे, 10 बजे और 11 बजे प्रतिघंटा समाचार हेडलाइंस FM रेडियो पर भी उपलब्ध है। और अब समाचार पत्रों की सुर्खियां। द्वीपों के उपराज्यपाल ने कहा, अंडमान में अपतटीय तेल अन्वेषण के प्रारंभिक निष्कर्ष हाइड्रोकार्बन की संभावनाओं का संकेत देते हैं। इस समाचार को द डेली टेलीग्राम्स ने अपनी बड़ी खबर बनाते हुए सचित्र प्रकाशित किया है। द्वीप समाचार ने इस खबर के अलावा प्रधानमंत्री द्वारा मन की बात कार्यक्रम में देशवासियों से अपने आसपास समाज की बेहतरी के लिए लगातार काम कर रहे लोगों को पहचानने और स्वयं भी अच्छे कार्यों से जुड़ने की अपील के समाचार को अपनी बड़ी खबर बनाई है। अंडमान एक्सप्रेस अंग्रेजी ने आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरा होने के अवसर पर आकाशवाणी श्री विजयपुरम द्वारा सेलुलर जेल से फ्लैग पॉइंट तक वॉकाथॉन आयोजित करने के समाचार को अपने अखबार के बॉक्स में जगह दी है। इन्फो इंडिया ने द्वीप समूह में चलाए जा रहे टीबी मुक्त भारत अभियान 100 दिवसीय अभियान के समाचार को पहले पन्ने पर छापा है, जबकि द इको ऑफ इंडिया ने मायाबंदर क्षेत्र में खराब मोबाइल कनेक्टिविटी को लेकर लोगों में चिंता के समाचार को प्रमुखता दी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत स्वास्थ्य सेवा निदेशालय की ओर से विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जा रहा है। समाज कल्याण विभाग द्वीप समूह के वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगजनों के लिए दिव्यांगता मूल्यांकन शिविरों का आयोजन करने जा रहा है। श्री विजयपुरम में कैट की सर्किट बैठक 8 जून से आयोजित की जाएगी और जिला और राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिताएं 6 जून से शुरू। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 438.6 MHz अर्थात 684 KHz पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। सवेरे के 7:15 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम देश रागिनी।

देश रागिनी कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, देशभक्ति केवल एक भावना नहीं है, बल्कि हमारा अपने राष्ट्र के प्रति समर्पण, सम्मान और प्रेम का प्रतीक है। जब बात हो अपने वतन की, तो हर दिल खुद ब खुद गर्व से भर जाता है। हमारा देश ही हमारी पहचान है, हमारी शान है।

सपनों में जान हो और दिल में अपने देश के लिए कुछ कर गुजरने का जुनून हो, तब सफलता की हर मंजिल आसान लगने लगती है। दोस्तों, चुनौतियां चाहे कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, दृढ़ संकल्प और मेहनत के बल पर उन्हें पार किया जा सकता है, देश प्रेम की भावना को दिल में लिए।

वैसे दोस्तों, प्रेम के कई रूप होते हैं। किसी को अपने आप से प्रेम है, किसी को प्रकृति से प्रेम है, तो किसी को जीवन से प्रेम है। लेकिन सबसे अनमोल होता है अपनी मातृभूमि से प्रेम, वह प्रेम जो बिना किसी स्वार्थ के होता है।

दोस्तों, हमारे देश की मिट्टी खुशबू, देशभक्ति का जज्बा और जीत का जुनून, जब ये तीनों साथ मिलते हैं तभी जन्म होता है अटूट देशभक्ति की भाव का। इसी देशभक्ति के भाव को दिल में लिए मैं गीता चाहूंगी कार्यक्रम से इजाज़त। नमस्कार।

मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्स और FM 100.9 मेगाहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। सवेरे के 7:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम गुड मॉर्निंग अंडमान।

नमस्कार श्रोताओं, हमारे इस विशेष कार्यक्रम रेडियो रागनी 90 वर्षों की कहानी में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस सफर में मैं हूं आपके साथ, आपकी रेडियो सखी सुनीता। श्रोताओं, 90 वर्षों के इस यात्रा में रेडियो का सफर विश्वास, राष्ट्र निर्माण और मनोरंजन की एक अनूठी दास्तां है। यह न केवल सूचना का जरिया रहा, बल्कि भारत की आवाज़ बनकर इसने बहुजन हिताय

0: बहुजन सुखाय के आदर्श को जीवित रखा है। तो आइए अब सुनते हैं ऐसे ही एक श्रोता की जुबानी और उनके अनुभव।
1: मैं पुष्पा कुमारी बा सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। मुझे रेडियो अपने अनुभव को साझा करने का मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद देती हूँ। बचपन में जब भी बाबा रेडियो खोलते, वह प्रसिद्ध धुन मेरे मन मस्तिष्क को आनंद देता था, अब भी देता है। उस धुन को करोड़ों लोग आज भी सुनते आ रहे हैं। मैं आकाशवाणी केंद्र में बाल कलाकार के रूप में रंगारंग कार्यक्रम, कविता, अंताक्षरी, स्कूली शिक्षा से संबंधित कार्यक्रमों में भाग लिया करती थी। व्यस्त होने पर निर्मात्री एवं संपादक आशा जी के साथ कई लघु नाटकों में अपनी वाणी दी। अलग अलग चरित्र को निभाने के समय अपनी आवाज, समय, गति, उच्चारण, लय, एक दूसरे श्रोता को समझाने की कला एवं अनुशासन मुझे रेडियो से ही मिली। सभी प्रकार

धुन मेरे मन मस्तिष्क को आनंद देता था, अब भी देता है। उस धुन को करोड़ों लोग आज भी सुनते आ रहे हैं। मैं आकाशवाणी केंद्र में बाल कलाकार के रूप में रंगारंग कार्यक्रम, कविता, अंताक्षरी, स्कूली शिक्षा से संबंधित कार्यक्रमों में भाग लिया करती थी। व्यस्त होने पर निर्मात्री एवं संपादक आशा जी के साथ कई लघु नाटकों में अपनी वाणी दी। अलग अलग चरित्र को निभाने के समय अपनी आवाज, समय, गति, उच्चारण, लय, एक दूसरे श्रोता को समझाने की कला एवं अनुशासन मुझे रेडियो से ही मिली। सभी प्रकार की जानकारी, जलयान यात्राएं, हवाई यात्रा, रोजगार संबंधी जानकारी, रोगों की लक्षण एवं बचाव संबंधी विशेषज्ञों से मुलाकात, पुराने नए मधुर गीत, साथ में किसान भाइयों के कार्यक्रम में हमारे लोकगीत सुनने को मिलते हैं, बहुत अच्छा लगता है। मैं 1982 का भूकंप, 2004 का सुनामी और 2023 का कोविड का समय जीवन में कभी भूल नहीं पाऊंगी। हमारे जो भी रिश्तेदार, सगे संबंधी जो कि अंतर द्वीप क्षेत्र में रह रहे थे, उन्हें रेडियो ने अपनी आवाज द्वारा मिलन एवं ढाढ़स बंधवाया। आज भी रेडियो एकमात्र ऐसा साधन है जो कि दूर दराज के क्षेत्रों में, खेतों में, सड़कों में रात्रि के समय, बिहान के समय हो या दोपहर शाम के समय, रेडियो सुना जा रहा है। हर एक जीवित प्राणी का स्वस्थ मनोस्थिति बनाने वाली आकाशवाणी, अपने को प्रसिद्धि दिलाने वाली आकाशवाणी, अनुभव साझा करने का मौका देने वाली रेडियो को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी जितने भी कार्यरत रेडियो सदस्य हैं, सबों को ढेरों सारी शुभकामनाएं, धन्यवाद।

0: श्रोताओं, आजकल की इस दुनिया में रेडियो ने ऐप के माध्यम से लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाई है। आज आकाशवाणी ऐप्स डिजिटल माध्यमों और एफएम के जरिए नई पीढ़ी से जुड़ रही है। आइए अब सुनते हैं ऐसे ही एक नवयुवक की जुबानी और उनके अनुभव।
1: मैं बचपन से ही रेडियो सुनता हूँ और रेडियो मेरे जीवन का एक खास हिस्सा रहा है। जब मैं छोटा था तब घर में सुबह सुबह रेडियो की आवाज़ से ही दिन की शुरुआत होती थी। रेडियो के कार्यक्रम मुझे बहुत पसंद है, खास करके फिल्मी गीतों का कार्यक्रम। जब हमारी पसंद का गाना बजता है और हमारा नाम लिया जाता है तो एक अलग ही खुशी मिलती है। रेडियो सिर्फ मनोरंजन का साधन ही नहीं बल्कि ये ज्ञान का भी एक अच्छा माध्यम है। इससे हमें देश दुनिया की खबरें मिलती हैं, नए विचार सुनने को मिलते हैं और कई प्रेरणादायक कहानियां भी सुनने को मिलती हैं। रेडियो हमें सिखाता है और जोड़ता भी है। मुझे नए और पुराने दोनों तरह के गाने सुनने बहुत अच्छे लगते हैं, चाहे पॉप मसाला का एनर्जेटिक गाने हो या भूले बिसरे गीत हो। रेडियो हर रंग का संगीत सुनाता है। कभी कभी पुराने गीत सुनकर पुरानी यादें ताजा हो जाती हैं और दिल को सुकून मिलता है। रेडियो की सबसे खास बात यह है कि इसे सुनने के लिए हमें स्क्रीन की जरूरत नहीं होती। हम काम करते करते, सफर करते हुए या आराम करते हुए भी रेडियो सुन सकते हैं। रेडियो की आवाज में एक अपनापन होता है जो दिल को छू लेता है। आज भी इतनी नई टेक्नोलॉजी के बावजूद भी रेडियो की अपनी एक अलग पहचान और जगह है। मेरे लिए रेडियो सिर्फ एक मशीन नहीं बल्कि एक दोस्त है जो हमेशा साथ निभाता है। धन्यवाद।

0: श्रोताओं, कार्यक्रम जारी रहेगा इस अंतराल के बाद।
1: तेज बुखार, पसीना आना, सिर और शरीर में दर्द, उल्टी और कमजोरी,
2: ये मलेरिया के लक्षण हो सकते हैं।
1: मलेरिया संक्रमित मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से फैलता है।
2: समय पर इलाज न मिलने पर ये बीमारी गंभीर रूप ले सकती है।
1: सोते समय मच्छरदानी का उपयोग करें।
2: घर और आसपास पानी जमा न होने दें।
1: पानी की टंकियों और बर्तनों को ढककर रखें।
2: अगर बुखार हो तो रक्त की जाँच करवाएं।
1: अब हम कर सकते हैं।
2: अब हमें करना होगा।
1: मलेरिया को मिलकर हराना होगा।
2: स्वस्थ जीवन अपनाएं, मलेरिया को दूर भगाएं।
1: स्टेट हेल्थ सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।
3: सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड ऑफिसर बनने के लिए एफकैट 2 ऑफ 2026 के आवेदन 20 मई से खुले हैं। विवरण के लिए विजिट करें afcat.edcil.co.in पर।
4: जब आप बच्चों के आसपास धूम्रपान करते हैं तो उन्हें हजारों ऐसे केमिकल से प्रभावित करते हैं जिनसे उनके जीवन को खतरा है। बीड़ी सिगरेट के धुएं में साइनाइड और कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे कई जहरीले तत्व होते हैं जो स्वास्थ्य की गंभीर समस्याओं को जन्म देते हैं, जैसे कानों में दर्दनाक संक्रमण, गंभीर अस्थमा और जानलेवा निमोनिया। बच्चों का जन्म के समय कम वजन बीड़ी सिगरेट के धुएं की वजह से भी होता है और ये अचानक होने वाली शिशु मृत्यु के जोखिम को दुगना कर देता है। इसीलिए आज ही बीड़ी सिगरेट पीना छोड़ें।
5: QR कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिल बन गया।
6: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
7: RBI कहता है,
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
8: श्रोताओं, रेडियो अकेले का साथी है, बच्चों का मनोरंजन है, जवानों की महफिल है तथा बुजुर्गों का मित्र है। रेडियो के अनेकों नेक लाभ हैं। यह मनोरंजन, ज्ञानवर्धन, शिक्षा, व्यापारिक उन्नति, राष्ट्रीय एकता आदि कई क्षेत्रों में लाभकारी है। तो आइए अब सुनते हैं एक ऐसे ही गृहिणी की जुबानी जो अपने अनुभव हमसे साझा कर रही हैं।
9: नमस्कार, मैं आपकी नियमित श्रोता रेखा भगत बोल रही हूँ। सबसे पहले मैं आपके लोकप्रिय कार्यक्रम और पूरे रेडियो परिवार, खासकर आकाशवाणी श्री विजयपुरम का दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। आपके कार्यक्रम सुनकर हमें रोज नई जानकारी, प्रेरणा और मनोरंजन मिलता है। सुबह के भजन, बच्चों के लिए कहानियाँ और देश दुनिया की खबरें सब बहुत उपयोगी और रोचक होती है। हमारे जैसे दूर दराज द्वीपों में रहने वालों के लिए आपका रेडियो परिवार जैसा साथ देता है। मुझे खास तौर पर बच्चों से जुड़े कार्यक्रम बहुत पसंद आते हैं। आपकी नैतिक कहानियों पर जो कार्यक्रम होते हैं उनसे बच्चों को अच्छी सीख मिलती है। आवाज की गुणवत्ता और प्रस्तुति बहुत अच्छी रहती है। अंत में मैं

0: श्रोताओं, रेडियो अकेले का साथी है, बच्चों का मनोरंजन है, जवानों की महफिल है तथा बुजुर्गों का मित्र है। रेडियो के अनेकों अनेक लाभ हैं। यह मनोरंजन, ज्ञानवर्धन, शिक्षा, व्यापारिक उन्नति, राष्ट्रीय एकता आदि कई क्षेत्रों में लाभकारी है। तो आइए अब सुनते हैं एक ऐसे ही गृहिणी की जुबानी जो अपने अनुभव हमसे साझा कर रही हैं।
1: नमस्कार, मैं आपकी नियमित श्रोता रेखा भगत बोल रही हूँ। सबसे पहले मैं आपके लोकप्रिय कार्यक्रम और पूरे रेडियो परिवार, खासकर आकाशवाणी श्री विजयपुरम का दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। आपके कार्यक्रम सुनकर हमें रोज नई जानकारी, प्रेरणा और मनोरंजन मिलता है। सुबह के भजन, बच्चों के लिए कहानियाँ और देश दुनिया की खबरें सब बहुत उपयोगी और रोचक होती है। हमारे जैसे दूर दराज द्वीपों में रहने वालों के लिए आपका रेडियो परिवार जैसा साथ देता है। मुझे खास तौर पर बच्चों से जुड़े कार्यक्रम बहुत पसंद आते हैं। आपकी नैतिक कहानियों पर जो कार्यक्रम होते हैं उनसे बच्चों को अच्छी सीख मिलती है। आवाज की गुणवत्ता और प्रस्तुत बहुत अच्छी रहती है। अंत में मैं आपके पूरे रेडियो परिवार को मेरी शुभकामनाएं देती हूँ। आप इसी तरह ज्ञान और खुशी की रोशनी फैलाते रहें। धन्यवाद।

0: दोस्तों कहते हैं समय बदलता है, तकनीक बदलती है, लेकिन आवाज़ों का जादू कभी पुराना नहीं होता। श्रोताओं अब कार्यक्रम से चाहेंगे इजाजत। नमस्कार।
1: रेडियो रागिनी 90 वर्षों की कहानी।

श्रोताओं, अभी आप गुड मॉर्निंग अंडमान कार्यक्रम का आनंद ले रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। सवेरे के 8 बजने को है। अब कुछ ही पलों में समाचारों का प्रसारण होगा, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: सौभाग्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
1: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
0: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में म्यांमा के राष्ट्रपति ओ मिन आउलाइन से वार्ता करेंगे। 10 राज्यों से राज्यसभा की 24 सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनावों की अधिसूचना आज जारी की जाएगी। केंद्र उर्वरकों के संतुलित और सही उपयोग को बढ़ावा देने के लिए आज मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से खेत बचाओ अभियान आरंभ करेगा।

0: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी आज 35 नए मंत्रियों को शामिल कर मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। प्रसिद्ध गायिका सुमन कल्याणपुर का मुंबई में निधन। और क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर आईपीएल खिताब जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में म्यांमा के राष्ट्रपति ओ मिन आउलाइन के साथ वार्ता करेंगे। इस बातचीत से दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों को और मजबूती मिलेगी। इस दौरान सुरक्षा, संपर्क सुविधा सहित भारत और म्यांमा के समग्र संबंधों पर चर्चा होगी।
1: म्यांमा के राष्ट्रपति आज शाम राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। सांस्कृतिक परिसर में आयोजित लाइट एंड द लोटस रेलिक्स ऑफ द अवेकेंड वन प्रदर्शनी का भी दौरा करेंगे। इस प्रदर्शनी में भगवान बुद्ध से संबंधित पिप्रहवा पवित्र अवशेषों तथा उनसे जुड़ी महत्वपूर्ण प्राचीन धरोहरों का प्रदर्शन किया जा रहा है। म्यांमार भारत की नेबरहुड फर्स्ट एक्ट ईस्ट और महासागर नीतियों के संगम पर स्थित है। म्यांमार के राष्ट्रपति की भारत की यह आधिकारिक यात्रा से दोनों देशों के बीच बहुआयामी संबंधों को और गहराई मिलेगी तथा दोनों देशों के बीच साझेदारी के नए अवसर खुलने की आशा है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: 10 राज्यों से राज्यसभा की 24 सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनावों की अधिसूचना आज जारी की जाएगी। आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक में 4-4 सीटें, राजस्थान और मध्य प्रदेश में 3-3 सीटें, झारखंड में 2 सीटें और मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम में 1-1 सीट पर चुनाव होंगे। महाराष्ट्र, तमिलनाडु और ओडिशा में 1-1 सीट के लिए राज्यसभा उपचुनाव की अधिसूचना भी आज जारी की जाएगी। 8 जून तक नामांकन दाखिल किए जा सकते हैं। मतदान 18 जून को होगा, उसी दिन मतगणना भी होगी। महाराष्ट्र में सत्ताधारी महायुति गठबंधन ने आगामी विधान परिषद चुनावों के लिए 17 सीटों के बंटवारे को अंतिम रूप दे दिया है। समझौते के अनुसार भाजपा 11 सीट पर, शिवसेना 4 और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी 2 सीट पर चुनाव लड़ेगी। विपक्षी महाविकास आघाड़ी ने पहले ही 17 में से 15 सीटों के लिए अपने बंटवारे की घोषणा कर दी है, जिसमें कांग्रेस 8 सीट पर, शिवसेना यूबीटी 4 और शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी 3 सीट पर चुनाव लड़ेगी। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से खेत बचाओ अभियान आरंभ करेंगे। उर्वरकों के संतुलित और सही उपयोग को बढ़ावा देने के लिए 1 महीने का यह अभियान 30 जून तक चलेगा।
2: यह अभियान देश की कृषि भूमि को बचाने और किसानों को वैज्ञानिक खेती के लिए की दिशा में एक बड़ी पहल है। इस अभियान में कृषि विश्वविद्यालय, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि विज्ञान केंद्र और जनप्रतिनिधि सभी मिलकर भाग लेंगे। अभियान के तहत किसानों को मिट्टी परीक्षण, सोयल हेल्थ कार्ड, प्राकृतिक खेती, संतुलित उर्वरक उपयोग और जल संरक्षण जैसे विषयों पर जानकारी दी जाएगी। साथ ही नकली खाद, बीज और कीटनाशकों की पहचान करने के बारे में भी किसानों को सजग किया जाएगा। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों से प्रेरित भारत में पिछले 12 वर्ष में अभूतपूर्व बदलाव आया है। इस दौरान मोदी सरकार ने गरीबों, किसानों, महिलाओं और युवाओं के कल्याण तथा सशक्तिकरण के लिए कई प्रमुख पहल की। आकाशवाणी समाचार विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर विशेष प्रस्तुति लेकर आया है। आज बात किसानों के कल्याण की दिशा में सरकार के कदमों की।
3: नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा पिछले 12 वर्षों में किसानों के कल्याण और उनकी आय बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। इनमें सबसे प्रमुख योजना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है, जो देश की सबसे बड़ी किसान कल्याण योजनाओं में से एक है। इस योजना के तहत किसानों को हर साल 6,000 रूपए सीधे उनके बैंक खातों में दिए जाते हैं और अब तक लगभग 9,50,00,000 किसान परिवारों के खातों में 4,28,000 करोड़ रूपए से अधिक की राशि भेजी जा चुकी है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या के रहने वाले किसान दिनेश कुमार जायसवाल ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि किसान सम्मान निधि योजना किसानों के लिए बहुत लाभकारी है।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चलाई जा रही किसान सम्मान निधि योजना का मुझे भरपूर लाभ मिल रहा है। इससे मुझे काफी सहायता मिलती है। हम समय पर अपने खाद और बीज की खरीदारी कर लेते हैं।
3: वहीं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से सिंचाई व्यवस्था मजबूत हुई है और मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के माध्यम से किसानों को मिट्टी की पोषक तत्वों की जानकारी दी जा रही है। साल 2014-15 से लेकर अब तक 26

0: करोड़ मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जा चुके हैं। वहीं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत करीब 23 करोड़ किसानों को 1,92,000 करोड़ रुपए के फसल बीमा दावों का लाभ मिला है। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के तहत छोटे और सीमांत किसानों को 60 वर्ष की आयु के बाद हर महीने 3,000 रुपए की पेंशन सुनिश्चित की जा रही है। उत्तर प्रदेश के एक लाभार्थी गौरव त्यागी ने इस योजना की सराहना करते हुए कहा कि यह किसानों के लिए बहुत फायदेमंद है।
1: किसान मानधन योजना चल रही है, बहुत ही लाभदायक है। प्रधानमंत्री की तो जितनी भी योजनाएं रही हैं वो सारी बड़ी महत्वपूर्ण रही हैं, किसान के हित में रही हैं। और ये बुढ़ापे में जो 3,000 रुपए की इसके मिलेंगे, ये जो बहुत ही बढ़िया टाइम की जो एज के हिसाब से।
0: वही न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानों के लिए एक मजबूत सहारा बना है, जिसके तहत किसानों को उनके उत्पादन लागत का 1.5 गुना मूल्य मिल रहा है। सरकार के द्वारा उठाए गए ठोस नीतियों के कारण देश का कुल खाद्यान्न उत्पादन 2013-14 के 265 मिलियन टन से बढ़कर 2024-25 में लगभग 358 मिलियन टन हो गया है। इसके अलावा भारत ने रिकॉर्ड 154 मिलियन टन से अधिक चावल का उत्पादन कर चीन को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश बन गया है। आज भारत का किसान केवल अन्नदाता ही नहीं बल्कि देश की आर्थिक प्रगति और विकास का एक महत्वपूर्ण आधार भी बन चुका है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल में आज मंत्रिमंडल का पहला बड़ा विस्तार होगा। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद में 35 नए मंत्रियों को शामिल किया जाएगा। शपथ ग्रहण समारोह दिन में 11 बजे लोकभवन में होगा। श्री अधिकारी ने ऐतिहासिक सत्ता परिवर्तन के बाद 9 मई को पदभार संभाला था। इस विस्तार के साथ राज्य में मंत्रियों की संख्या बढ़कर 41 हो जाएगी, जो पश्चिम बंगाल विधानसभा के 294 सदस्यों के लिए संवैधानिक रूप से तय 15% की सीमा के अनुरूप है। प्रसिद्ध गायिका सुमन कल्याणपुर का कल मुंबई स्थित उनके आवास पर निधन हो गया। वे 89 वर्ष की थी। एक श्रद्धांजलि।
3: कल्याणपुर का जन्म 28 जनवरी 1937 को ढाका में हुआ था। सुमन कल्याणपुर ने 1950 के दशक के मध्य में हिंदी फिल्मों में अपने करियर की शुरुआत की और आगे चलकर उन्होंने महान संगीतकारों और गायकों, विशेष रूप से मोहम्मद रफी के साथ सैकड़ों गीत रिकॉर्ड किए। उनके सबसे लोकप्रिय गीतों में आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे, नाना करते प्यार शामिल है।
4: नाना करते प्यार तुम्हीं से कर बैठे।
3: सुमन कल्याणपुर के करियर की एक विशेषता ये थी कि उनकी आवाज़ महान गायिका लता मंगेशकर से काफी मिलती जुलती थी। इस तुलना के बावजूद सुमन कल्याणपुर ने अपनी एक अलग पहचान बनाई और अपनी मधुर तथा सधी हुई गायकी के लिए वो हमेशा याद की जाएंगी। उनके निधन से भारतीय फिल्म संगीत का एक और स्वर्णिम अध्याय समाप्त हो गया है।

आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में लू के दौरान सुरक्षा सावधानियां और बचाव विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। इस चर्चा में सफदरजंग अस्पताल के चिकित्सा विभाग की डॉक्टर रूपाली मलिक भाग लेंगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई जिलों में आंधी बारिश और खराब मौसम की घटनाओं के मद्देनजर जिला प्रशासन राहत आयुक्त कार्यालय और संबंधित विभागों को निरंतर निगरानी बनाए रखने और किसी भी आपदा की स्थिति में तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटन्स को 5 विकेट से हराकर लगातार दूसरी बार आईपीएल का खिताब जीता। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटन्स ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 155 रन बनाए। विराट कोहली के नाबाद 75 रन की पारी के बदौलत बेंगलुरु ने 18वें ओवर में ही मैच जीत लिया। विराट कोहली को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। राजस्थान के खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी को आईपीएल क्रिकेट में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया। उन्होंने सर्वाधिक 776 रन बनाकर ऑरेंज कैप जीती। वो 15 साल 65 दिन की उम्र में ऑरेंज कैप जीतने वाले सब

0: सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए। कागिसो रबाडा ने सत्र में सबसे ज्यादा 29 विकेट लेकर पर्पल कैप हासिल की। मनीष पांडे को बैकवर्ड पॉइंट पर टिम डेविड का शानदार कैच लेने के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिला। मोहम्मद सिराज को सबसे ज्यादा डॉट बॉल फेंकने का पुरस्कार मिला, उन्होंने 172 डॉट बॉल फेंकी। साई सुदर्शन को सबसे ज्यादा चौके लगाने का पुरस्कार मिला, उन्होंने 75 चौके लगाए। वैभव सूर्यवंशी को सर्वश्रेष्ठ उभरता खिलाड़ी, 237.3 के स्ट्राइक रेट के साथ सर्वश्रेष्ठ स्ट्राइकर और 72 छक्कों के साथ सर्वाधिक छक्के लगाने का पुरस्कार भी मिला। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है मुनीश शर्मा।
1: धन्यवाद लवलीन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में अपील की कि गर्मी और लू से बचने के लिए खूब पिए देसी पेय। ये खबर जनसत्ता समेत सभी अखबारों में है। पत्र आगे लिखता है कि प्रधानमंत्री ने एथलेटिक्स में बने कीर्तिमानों की सराहना की है। भारत ओमान व्यापार समझौता आज से लागू, भारतीय उत्पादों को शुल्क मुक्त बाजार। अमर उजाला ने इसे प्रमुखता से देते हुए लिखा है, मोदी सरकार के कार्यकाल में पांचवां एफटीए, पश्चिम एशिया संकट के बीच दोगुना होगा द्विपक्षीय कारोबार। राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण द्वारा 30 जरूरी दवाओं के दाम निर्धारित करने पर हिंदुस्तान लिखता है कि इससे हड्डी, हृदय रोग और मधुमेह के रोगियों को राहत मिलेगी। सुरक्षित सोशल मीडिया शीर्षक से हिंदुस्तान ने संपादकीय में लिखा है कि भारत ने 9 से 17 वर्ष के करीब 76% बच्चे सोशल मीडिया मंच का इस्तेमाल समय बिताने के लिए करने लगे हैं, जिससे उनकी सोचने समझने की क्षमता प्रभावित हो रही है और ध्यान केंद्रित करने की उनकी क्षमता भी काफी घटती जा रही है। रोहतांग में बर्फबारी, मैदानी इलाकों में बारिश से उत्तर भारत में प्रचंड गर्मी से राहत मिलने और हवा में सुधार पर अमर उजाला ने सचित्र देते हुए लिखा है कि उत्तर पश्चिम में भारत में आंधी तूफान और बारिश के आसार, जबकि नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, दिल्ली वालों के लिए राहत वाली हवा, 2018 के बाद तीसरी बार सबसे साफ हवा दर्ज की गई। प्रसिद्ध पार्श्व गायिका सुमन कल्याणपुर के निधन पर स्मृति शेष विशेष में राजस्थान पत्रिका लिखता है, 3000 से ज्यादा फिल्मी और गैर फिल्मी गीत उन्होंने गाए। पत्र ने इसे शीर्षक दिया है, रहे ना रहे हम महका करेंगे। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लगातार दूसरी बार आईपीएल चैंपियन बनने को सभी अखबारों ने सचित्र प्रकाशित किया है।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में म्यांमा के राष्ट्रपति ओ मिन आउ लाइन के साथ वार्ता करेंगे। 10 राज्यों से राज्यसभा की 24 सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनावों की अधिसूचना आज जारी की जाएगी। केंद्र उर्वरकों के संतुलित और सही उपयोग को बढ़ावा देने के लिए आज मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से खेत बचाओ अभियान आरंभ करेगा। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी आज 35 नए मंत्रियों को शामिल कर मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। प्रसिद्ध गायिका सुमन कल्याणपुर का मुंबई में निधन। और क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर आईपीएल खिताब जीता। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

रेशमा की गाई इस गजल के साथ ही सुगम संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय सुबह के 9 बजे हैं। अब आरंभ होता है फिल्मी गीतों से सजा कार्यक्रम तराने सुहाने। कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं सुमन कल्याणपुर के गाए जानवर फिल्म के इस गीत से, जिसे लिखा है हसरत जयपुरी ने, संगीत से सजाया शंकर जयकिशन ने।

किशोर कुमार और साथियों की आवाज़ों में ये गीत था दूर का राही फिल्म से। ए इरशाद के लिखे इस गीत को संगीत से सजाया था खुद किशोर कुमार ने। श्रोताओं अब सुनते हैं आनंद बख्शी का लिखा एवं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीतबद्ध किया हुआ गीत धर्मवीर फिल्म से। गायक कलाकार हैं मोहम्मद रफ़ी।

0: तराने सुहाने कार्यक्रम जारी रहेगा इस अंतराल के बाद।
1: सीमा, सीमा,
2: उठो।
3: क्या हुआ?
2: चेकअप के लिए जाना है ना।
3: सोने दो ना। अगले हफ्ते चल पड़ते, थोड़ी देर हो जाएगी तो क्या हो जाएगा?

0: गर्भावस्था के पहले 3 महीनों के अंदर जल्द से जल्द HIV की जांच जरूर करवाएं, ताकि शिशु को HIV संक्रमण से बचाया जा सके और माँ और शिशु एक स्वस्थ और लंबी जिंदगी जी सके।
1: समय का मूल
2: HIV पे कंट्रोल।
0: गर्भावस्था की पहली जांच में ही HIV टेस्ट जरूर कराएं।
3: नमस्ते कविता, अच्छा लगा कि आप आयुष्मान आरोग्य मंदिर में सर्विकल कैंसर की जांच के लिए आईं।
4: अरे दीदी, मेरी बेटी ने मुझे प्रोत्साहित किया।
3: आपकी बेटी तो बहुत समझदार है। बेटा, तुम कितने साल की हो?
4: मैं 14 साल की हूँ।
3: अब आपको अपनी बेटी को सर्विकल कैंसर से बचाने के लिए टीका लगवाने लाना होगा।
4: क्या कैंसर के लिए भी टीका होता है?
3: हाँ, ये एक ऐसा कैंसर है जिससे HPV की वैक्सीन के जरिए बचाव किया जा सकता है।
4: धन्यवाद दीदी।
3: जरूर, अपनी बेटी को HPV का टीका लगवाने के लिए वैक्सीन पोर्टल UWIN पर रजिस्टर करना मत भूलना।
5: भारत सरकार ने सर्विकल कैंसर से बचाव के लिए 14 साल की लड़कियों के टीकाकरण को सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर निशुल्क उपलब्ध किया है। आज ही www.uwin.mohfw.gov.in पे जाके HPV वैक्सीनेशन के लिए रजिस्टर करवाएं। ये संदेश भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
6: गणेश के संगीत निर्देशन में तैयार, अब लीजिए सुनिए चालाक फिल्म का गीत। गीत रचना हसरत जयपुरी की, स्वर दिया सुमन कल्याणपुर ने।

0: कभी कभी।
1: साहिर का लिखा ये गीत था आंखें फिल्म से। स्वर दिया लता मंगेशकर ने, धुन बनाई रवि ने। और अब कार्यक्रम में सुनते हैं रोटी फिल्म का ये गीत किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ों में। गीतकार हैं आनंद बख्शी तथा संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

सुरेश वाडकर और अभिजीत के गाए जागृति फिल्म के इस गीत के साथ ही फिल्मी गीतों से सजा कार्यक्रम तराने सुहाने अब यहीं संपन्न होता है।

0: मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है।
1: तेज बुखार, पसीना आना, सिर और शरीर में दर्द, उल्टी और कमजोरी,
2: ये मलेरिया के लक्षण हो सकते हैं।
1: मलेरिया संक्रमित मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से फैलता है।
2: समय पर इलाज न मिलने पर ये बीमारी गंभीर रूप ले सकती है।
1: सोते समय मच्छरदानी का उपयोग करें।
2: घर और आसपास पानी जमा न होने दें।
1: पानी की टंकियों और बर्तनों को ढककर रखें।
2: अगर बुखार हो तो रक्त की जाँच करवाएं।
1: अब हम कर सकते हैं।
2: अब हमें करना होगा।
1: मलेरिया को मिलकर हराना होगा।
2: स्वस्थ जीवन अपनाएं, मलेरिया को दूर भगाएं।
1: स्टेट हेल्थ सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।
3: नमस्ते कविता, अच्छा लगा कि आप आयुष्मान आरोग्य मंदिर में सर्विकल कैंसर की जांच के लिए आईं।
4: अरे दीदी, मेरी बेटी ने मुझे प्रोत्साहित किया।
3: आपकी बेटी तो बहुत समझदार है। बेटा, तुम कितने साल की हो?
4: मैं 14 साल की हूँ।
3: अब आपको अपनी बेटी को सर्विकल कैंसर से बचाने के लिए टीका लगवाने लाना होगा।
4: क्या कैंसर के लिए भी टीका होता है?
3: हाँ, ये एक ऐसा कैंसर है जिससे HPV की वैक्सीन के जरिए बचाव किया जा सकता है।
4: धन्यवाद दीदी।
3: जरूर, अपनी बेटी को HPV का टीका लगवाने के लिए वैक्सीन पोर्टल UWIN पर रजिस्टर करना मत भूलना।
5: भारत सरकार ने सर्विकल कैंसर से बचाव के लिए 14 साल की लड़कियों के टीकाकरण को सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर निशुल्क उपलब्ध किया है। आज ही www.uvin.mohfw.gov.in पे जाके HPV वैक्सीनेशन के लिए रजिस्टर करवाएं। ये संदेश भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
0: श्रोताओं, इस समय सुबह के 9:30 हुए हैं। शास्त्रीय संगीत इस कार्यक्रम के तहत आज हम आपको उस्ताद अली अकबर खान का हिंदुस्तानी शैली में सरोद वादन सुनवा रहे हैं। इनके साथ तबले पर पंडित महापुरुष मिश्रा और तानपुरे पर ध्यानेश खान और जियोफ्रे लिपनर ने संगति की है। तो लीजिए सुनिए उस्ताद अली अकबर खान का सरोद पर बजाया राग बागेश्री कन्नड़ा। अलाप और गीत 3 ताल में निबद्ध है।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में श्रोताओं अभी आप उस्ताद अली अकबर खान का हिंदुस्तानी शैली में सरोदवादन सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है, सवेरे के 10 बजे हैं। लीजिए अब सुनिए फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत गाता चल। कार्यक्रम का पहला गीत हमने फिल्म पुकार से लिया है। गायक हैं उदित नारायण, कविता कृष्णमूर्ति और स्वर्णलता, और गीत रचना जावेद अख्तर की, संगीत रचना की है AR रहमान ने।

उपेंद्र के संगीत निर्देशन में तैयार इकबाल कुरैशी के लिखे इस गीत को स्वर दिया है सुमन कल्याणपुर ने। फिल्म का नाम है बॉम्बे बाय नाइट।

आप प्रस्तुत हैं हेमा सिर देसाई की आवाज़ में जयदीप सहानी का लिखा एवं सलीम सुलेमान का संगीतबद्ध किया हुआ फिल्म चक दे इंडिया का ये गीत।

श्रोताओं अब सुनते हैं जानिसार अख्तर का लिखा गीत जिसे संगीतबद्ध किया है राज रतन ने। गायक कलाकार है सुमन कल्याणपुर तथा फिल्म का नाम है रामो उस्ताद।

चालाक, आइए सुनवाते हैं इस फिल्म का गीत। शब्द रचना हसरत जयपुरी के हैं व तर्ज बनाई है गणेश ने। इस गीत को गाया है सुमन कल्याणपुर ने।

श्रोताओं, अब सुनवा रहे हैं कुमार सानू और अलका याग्निक का गाया फिल्म मेला का यह गीत। समीर की बोलो को सुरों में पिरोया है अनु मलिक ने।

अब प्रस्तुत है आनंद बख्शी की लिखी एक गीत रचना जिसे संगीत से सजाया है विजू शाह ने। फिल्म बुलंदी के इस गीत को गाया है उदित नारायण और कविता कृष्णमूर्ति ने।

न मुझको छेड़ो, ऐसे न मुझको देखो, जो देखना ही कुछ तुमको है तो फिर मेरे दिल को देखो। हम प्यार के है राही, दिल प्यार की है मंजिल, किस काम की ये महफिल, दिल से न मिला जो दिल होगा मिलना हमारा मुश्किल होगा, मिलना हमारा मुश्किल होगा।

साजिद, सुजैन डीमेलो और कमाल खान की मिलीजुली आवाज़ों में अब सुनिए फिल्म नो प्रॉब्लम का ये गीत। नगमा निगार है शब्बीर अहमद और संगीत है साजिद वाजिद का।

रूप कुमार राठौड़ और साथियों की आवाज़ों में अब सुनिए अनवर फिल्म से ये गीत, जिसे लिखा है सैयद कादरी ने और धुन बनाई मिथुन ने।

और अब कार्यक्रम के अंत में सुनिए उदित नारायण, अलका याग्निक और साथियों का गाया हुआ कहो ना प्यार है फिल्म का गीत, शब्द रचना सावन कुमार की और संगीत राजेश रोशन का।

श्रोताओं, इस गीत के साथ ही फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत गाता चल अब यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय दिन के 11 बजे हैं। लीजिए अब सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी की 1296वीं कड़ी।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार। साथ ही साथ नए महीने जून की आप सबको उमंग कार्यक्रम की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं।
3: और अजीत का भी नमस्कार। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे आपके सबके चहेते कार्यक्रम उमंग में। आइए करते हैं शुरुआत हमेशा की तरह एक सुंदर विचार से, जिसे हमें भेजा है आर्यनगर कोहका भिलाई से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल जी ने। लिखते हैं,
2: मौसम चाहे जैसा हो, मन में उम्मीद की धूप हमेशा खिली रहनी चाहिए। बहुत खूबसूरत विचार है। आप सबको उमंग कार्यक्रम की ओर से धन्यवाद।
3: और आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है केंद्रपाड़ा ओडिशा से देशदीप दास, कोटकुटिया नायक, पद्मलोचन मोहंती, अभिराम साहू, सत्यजीत नायक और साई प्रसाद नायक जी का।
2: रिंग रोड नर्मदा नगर से सूरज वर्मा, ऋषभ कनक और भावना वर्मा।
3: और ग्राम खैगांव तहसील महेश्वर से प्रेमलाल वर्मा, निकेश, धर्मेंद्र और ममता बाई वर्मा जी ने लिखा है। बड़ा खूबसूरत लिखा है।
2: प्रिय अजीत जी और विमलेश जी, आपको हमारा प्यार भरा नमस्कार। गुड मॉर्निंग, आप कैसे हैं जी? आशा करते हैं आप सकुशल होंगे। आज बहुत दिनों बाद आपके उमंग कार्यक्रम में पत्र भेज रहे हैं। काम की कुछ व्यस्तताओं के कारण आपके उमंग कार्यक्रम में पत्र नहीं भेज पा रहे थे, लेकिन हम लोग नियमित रूप से आपका उमंग कार्यक्रम सुन रहे थे। उमंग कार्यक्रम में इन दिनों राग रस बरसे कार्यक्रम बेहद पसंद आ रहा है। धन्यवाद इस कार्यक्रम को उमंग कार्यक्रम में शामिल करने के लिए। आपने संगीत प्रेमियों की खुशी को दोगुना बढ़ा दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद।
3: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इतने खूबसूरत संदेश के लिए। अगला संदेश हमें मिला है जेल रोड कानपुर से फातिमा वली बेलदार, सरफुद्दीन वली बेलदार, वसीम अकरम बेलदार और डब्ल्यू सोनम बेलदार जी का।
2: खेरागढ़ राजलालपुर छत्तीसगढ़ से मोतीलाल भीमटे और सुशीला भीमटे।
3: और हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोडखे, नंदा बोडखे, हनुमान बोडखे और उत्तम जामदाड़े जी।
2: आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद संदेशों के लिए।
3: और अब बारी है श्रोताओं पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर जानने की। तो हमारा पहला प्रश्न था, दुनिया का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल कहाँ है?
2: इसका उत्तर जान लेते हैं साथियों। दुनिया का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल है अंटार्कटिका का शीत मरुस्थल।
3: और अब सुनिए हमारा दूसरा प्रश्न। हमारा दूसरा प्रश्न था, चेरी ब्लॉसम के फूलों को जापानी भाषा में क्या कहते हैं?
2: चेरी ब्लॉसम के फूलों को जापानी भाषा में सकुरा कहते हैं।
3: और अब हमारा पूछा गया अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न था, मूल रूप से ट्यूलिप फूल किस देश का है?
2: ट्यूलिप फूल मूल रूप से कजाकिस्तान का है। यहाँ से ये तुर्की पहुँचा और धीरे धीरे पूरे यूरोप में फैल गया।
3: और फिर हमने आपसे पूछा था श्रोताओ, रजनीगंधा फूल रात में ही अधिक खुशबू क्यों देता है?
2: इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों। प्रकृति ने रजनीगंधा फूलों को रात्रि परागण या नाइट पॉलिनेशन के लिए बनाया है। रात को इस फूल के अंदर का सुगंधित तेल बहुत अधिक सक्रिय हो जाता है, जिसके कारण रात्रि बेला के कीट पतंगे इस फूल की ओर आकृष्ट होते हैं।
3: हमारा अंतिम प्रश्न था, गुलाब फूल की दुनिया भर में लगभग कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं?
2: इसका उत्तर है, गुलाब फूल की दुनिया भर में लगभग 100 प्रजातियां पाई जाती हैं।
3: तो श्रोताओं ये थे हमारे पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। अब सुनिए आज का प्रश्न। हमारा आज का

0: प्रश्न है, किन दो देशों के बीच की दीवार को गिरा दिया गया था और उस दीवार का क्या नाम था? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: किन दो देशों के बीच की दीवार को गिरा दिया गया था और उस दीवार का क्या नाम था?
0: आप हमारे IVRS नंबर यानी 8800440555 पर या हमारे ईमेल यानी audio@cieet.nic.in पर अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं। और हाँ, इंस्टा, एक्स, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
1: और अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। आज का हमारा पहला कार्यक्रम है श्रोता संवाद। चर्चा का विषय है समावेशी शिक्षा।
0: ये कार्यक्रम उमंग प्रसारण का मासिक संस्करण है, जिसे हम CIET NCERT और शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा संयुक्त रूप से की जाने वाली डिजिटल व अन्य पहलों के बारे में जानकारी देते हैं। आज की चर्चा की विषय विशेषज्ञ हैं प्रोफेसर भारती कौशिक। श्रोता संवाद।
1: उमंग कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं कि हर महीने हमारा विशेष मासिक रेडियो संस्करण श्रोता संवाद प्रसारित होता है, जिसमें हम जानकारी देते हैं शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार और CIET NCERT द्वारा संयुक्त रूप से की जा रही विभिन्न पहलों पर। इस क्रम में आज हमारे साथ हैं प्रोफेसर भारती कौशिक। आप CIET के मीडिया निर्माण प्रभाग की अध्यक्ष हैं। तो प्रोफेसर कौशिक, आपका हमारे स्टूडियो में हार्दिक स्वागत है।
2: धन्यवाद।
1: हमारे श्रोता ये जानने के लिए हमेशा बहुत उत्सुक रहते हैं कि श्रोता संवाद में हमारी चर्चा का विषय क्या रहेगा। तो आज हम किस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं?
2: आज हम चर्चा करने जा रहे हैं एक ऐसे विषय पर जो अक्सर आपको और मुझको छूता तो है, हम देखते तो हैं
1: जी,
2: लेकिन कहीं ना कहीं हम झिझक जाते हैं इस पर बातचीत करने में
1: जी।
2: आज हम बातचीत करेंगे समावेशी कक्षाओं की, समावेशी शिक्षा की।
1: क्या बात है। तो मेरा पहला प्रश्न श्रोताओं की ओर से ये है कि समावेशी शिक्षा से क्या तात्पर्य है? क्या इसे हम समता मूलक शिक्षा भी कह सकते हैं?
2: इसको हम समता मूलक शिक्षा तो शायद नहीं कह पाएंगे। क्यों? क्योंकि समावेशी शिक्षा का अर्थ है सभी को सम दृष्टि से देखना
1: जी,
2: तभी तो वो समावेशी शिक्षा है, सबको साथ लेकर के चलना। लेकिन जहां हम बात करते हैं समता मूलक, मतलब हर एक की विशिष्टता को, हर एक की आवश्यकता को पहचान देना, हर एक की आवश्यकता को समझना और उसके अनुरूप उसकी पूर्ति करना
1: जी।
2: अब ये विद्यालयों में, हमारे कक्षा कक्ष में कैसे हो सकती है, इसको एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं
1: जी।
2: आप ये समझिए कि समावेशी कक्षा के या समावेशी शिक्षा के प्रावधानों में आता है कि सबको समान तरह की पुस्तकें देना, सबको समान तरह का खाना देना मिड डे मील के अंतर्गत, या सबको समान तरह की आप यूनिफॉर्म देते हैं। ठीक है
1: जी।
2: अब अगर कोई विद्यार्थी मेरी कक्षा में ऐसा है जो देख नहीं सकता या जिसको देखने में दिक्कत है, तो क्या होगा? लेकिन मैं तो समावेशी शिक्षा के अंतर्गत काम कर रही हूँ, तो मुझे तो उसको मुद्रित या प्रकाशित या छपी हुई किताबें ही देनी है
1: जी।
2: लेकिन वो विद्यार्थी जो नहीं देख पा रहा, उसका क्या? उसके लिए तो वो किताबें किसी काम की नहीं है। यहाँ पर मुझे क्या करना है? यहाँ मुझे समतामूलक शिक्षा के सिद्धांतों का पालन करते हुए मैं उनके लिए ऐसी किताबें दूं जो या तो वो सुन लें, यानी ध्वनि के रूप में हो किताबें, रिकॉर्डेड हों
1: जी,
2: या मैं उन्हें ऐसी किताबें दूं जो ब्रेल में हो, जिनको वो छू करके पढ़ सकें, या एक तीसरा स्वरूप हो सकता है कि मैं उन्हें डेजी में भी किताबें दूं, जो भी ध्वनि आधारित किताबें होती
1: जी।
2: समतामूलक शिक्षा में हम क्या करते हैं? हम प्रत्येक विद्यार्थी की व्यक्तिगत आवश्यकता को ध्यान में रख करके हम तब उसको पूर्ति करते हैं। और समावेशी शिक्षा में हम क्या करते हैं? सबको सम दृष्टि, एक समान दृष्टि से देखते हैं। यानी अगर हम एक को अगर हम मुद्रित किताबें दे रहे हैं, तो पूरी कक्षा को हम मुद्रित किताबें दे रहे हैं, तो वहां व्यक्तिगत आवश्यकताओं का उतना ज्यादा ध्यान हम नहीं दे पाते हैं
1: जी। आपने बहुत ही विस्तार से हमें बताया कि समावेशी शिक्षा और समता मूलक शिक्षा में क्या अंतर है। अब थोड़ी सी बात करते हैं इसके इतिहास की। प्रोफेसर भारती, हमें अब ये बताएं कि भारत में समावेशी शिक्षा की शुरुआत कब हुई?
2: सबसे पहला जिक्र विकलांग विद्यार्थियों की शिक्षा का आता है हमारे कोठारी कमीशन में, जो 1964 का जो शिक्षा आयोग है, जिसको हम कोठारी कमीशन के नाम से भी जानते हैं
1: जी।
2: इस कमीशन में बातचीत तो की गई थी कि हमें दिव्यांगजन, विकलांगजनों को हमें शिक्षा देनी है, लेकिन यह स्पष्ट नहीं किया गया था कि इनकी शिक्षा दीक्षा कैसे होगी
1: जी।
2: क्या इन्हें सामान्य विद्यालयों में, मुख्यधारा विद्यालयों में बिठा करके पढ़ाना है, या इनके लिए अलग से कुछ हमें एक विद्यालय खोल

0: नहीं होंगे, लेकिन हाँ जिक्र जरूर किया गया था। तो शुरुआत हमने किया कि ठीक है, इनके लिए हम कुछ अलग से विद्यालय बनाते हैं, वहां हम इनको पढ़ाएंगे। फिर धीरे धीरे समझ में आया कि ये विद्यार्थी भी अंततः हिस्सा तो हमारे ही समाज का बनेंगे। तो एक पहल छोटी सी ये की गई कि इन विद्यार्थियों को विशेष विद्यालयों से निकाल करके कुछ समय के लिए मुख्यधारा विद्यालयों में लाया गया, ताकि दोनों तरह के विद्यालयों के बच्चे आपस में बातचीत कर सकें और घुल मिल सकें और एक दूसरे को अजूबा न समझे। विशेष विद्यालयों में पाठ्यचर्या भी विशेष थी, शिक्षक भी विशेष थे और बच्चे भी हमारे विशेष आवश्यकता वाले थे। तो जब ये हम मुख्य धारा में इनको कुछ समय के लिए लेके आए, तो ये हमारा एक प्रयोग कुछ आंशिक रूप से सफल हुआ
1: जी।
0: उसके बाद धीरे धीरे हमने क्या किया, कुछ विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को हमने विद्यालय से पूर्व उनकी पूर्ति करने की कोशिश की और फिर उन्हें मुख्य धारा विद्यालयों में प्रारंभिक कक्षाओं से समावेश करना उनका शुरू किया। इसमें भी कुछ सफलताएं मिली, कुछ विफलताएं मिली, लेकिन सफलताओं से सीख करके आगे बढ़े और आज हम एक ऐसी स्थिति में हैं जहां हम कहते हैं कि हर बच्चे को मुख्य धारा विद्यालय में दाखिला दे। इसीलिए हम जीरो रिजेक्शन पॉलिसी अपनाते हैं कि एडमिशन में हमें सभी को दाखिला देना ही है। इसीलिए आज हमारा हर एक विद्यालय समावेशी विद्यालय है।
1: जी प्रोफेसर भारती, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से बताया कि दिव्यांगजनों को मुख्यधारा में पढ़ाने की बात की है। जैसा कि हम सभी ये जानते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने देश की शिक्षा के पूरे परिदृश्य को बदल दिया है।
0: बिल्कुल।
1: आज हम विशेष रूप से आपसे ये जानना चाहेंगे कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में समावेशी शिक्षा के मौलिक सिद्धांत क्या क्या हैं।
0: हाँ, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने हमारे शिक्षा के परिदृश्य को बहुत अच्छी तरह से परिवर्तित किया
1: जी।
0: है, ठीक है। इसने मुख्य धारा की शिक्षा व्यवस्था में तो बहुत परिवर्तन किए ही हैं, साथ ही साथ जो समावेशी शिक्षा की हमारी परिकल्पना है
1: जी,
0: उसमें भी बहुत बदलाव किए हैं। जैसे अभी तक हम समझते थे कि समावेशी शिक्षा का मतलब एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था जो सिर्फ और सिर्फ दिव्यांगजन या विकलांग शिक्षार्थियों से जुड़ी हुई है या उन विद्यार्थियों से जुड़ी हुई है जो अलाभान्वित वर्गों या क्षेत्रों से आते हैं
1: जी।
0: राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने हमारी इस अवधारणा को और व्यापक और विस्तृत स्वरूप दिया है
1: जी।
0: इसने सामाजिक आर्थिक रूप से अलाभान्वित समूहों की पहचान की है, जिसको अंग्रेजी में हम कहते हैं सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स। तो इसमें 5 उपसमूह आते हैं
1: जी।
0: सबसे पहला उपसमूह इसमें लिंग के आधार पर है, जिसमें हम जेंडर आधारित आवश्यकताओं को पहचानते हैं और उनकी पूर्ति विद्यालयों में कैसे की जाए इस पर सोच विचार करते हैं
1: जी।
0: दूसरा जो हमारा उपसमूह है वो ऐसा उपसमूह है जो विषम भौगोलिक परिस्थितियों से आता है या वहां से संबंधित रखता है। विषम भौगोलिक परिस्थितियां जैसे पहाड़ी क्षेत्रों से आता है, मरुभूमि से आता है या ऐसी जगहों से आता है जहां बहुत ज्यादा बारिश होती है, विद्यार्थियों को अपने विद्यालयों तक पहुंचने में अतिरिक्त कठिनाई का सामना करना पड़ता है
1: जी।
0: तो वहां पर विद्यालय कैसे सकारात्मक भूमिका निभा सकते हैं, ये हमारा दूसरा उपसमूह है
1: जी।
0: तीसरा उपसमूह हमारा सांस्कृतिक परिवेश को लेकर के है। सांस्कृतिक परिवेश कैसे, इसमें हमारे ऐसे उपसमूह में लोग आते हैं जो जनजातीय क्षेत्रों से हैं, आदिवासी क्षेत्रों से हैं या अल्पसंख्यक समूहों से संबंधित हैं
1: जी।
0: इन उपसमूहों के छात्रों को भी विशेष आवश्यकताएं हैं, उनकी पाठ्यचर्या से संबंधित, उनके दिनों दिन की आवश्यकताओं और रहन सहन से संबंधित, जिनका पाठ्यचर्या से जुड़ाव होना बहुत जरूरी है, तो इन पर भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। इसके अलावा एक चौथा उपसमूह है जो है हमारा आर्थिक रूप से कमजोर समूह, हमें दोनों ही जगहों पे मिलता है, ग्रामीण क्षेत्रों में भी मिलता है और शहरी क्षेत्रों में भी मिलता है, तो इस पर भी विशेष रूप से ध्यान देना जरूरी है। पांचवा उपसमूह इसमें आता है जो है विकलांगताओं का या विशेष आवश्यकताओं का, जिनको हम पहले से भी पहचानते हैं
1: जी।
0: इसमें NEP 2020 या राष्ट्रीय शिक्षा नीति विकलांग जन अधिकार अधिनियम 2016 को पूर्ण रूप से अपना समर्थन देती है और इस 2016 के अधिनियम में 21 तरह की विकलांगताओं या दिव्यांगताओं को पहचाना जाता है। तो हम इन पूरी 21 तरह की दिव्यांगताओं के सकारात्मक शैक्षिक समावेशन पे हम बात करते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में
1: जी।
0: इसके अलावा राष्ट्रीय शैक्षिक नीति 2020 ने जो एक बहुत महत्व

0: महत्वपूर्ण बात उठाई है, वो है भारतीय सांकेतिक भाषा। जी, पहली बार एक सरकारी दस्तावेज में भारतीय सांकेतिक भाषा को भाषा का एक औपचारिक दर्जा दिया गया, और ये भी कहा गया कि जो भी हमारे शिक्षण अधिगम सामग्री है, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर पर हो या राजकीय स्तर पर हो, दोनों ही स्तरों पर यह सामग्री सांकेतिक भाषा में भी उपलब्ध कराई जाए। तो ये बहुत दो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिन पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने समावेशी शिक्षा के परिप्रेक्ष्य में हमारी दृष्टि को बहुत व्यापक किया है।
1: जी, आपने अभी सांकेतिक भाषा की बात की, तो हमारे श्रोता जरूर ये जानना चाहेंगे कि सांकेतिक भाषा क्या है और समावेशी शिक्षा में इसकी क्या भूमिका है।
0: सांकेतिक भाषा एक ऐसी भाषा जहां आप बोल करके नहीं बातचीत करते हैं,
1: जी।
0: एक ऐसी भाषा जहां आप देख करके हाव भावों से, संकेतों से पहचानते
1: जी।
0: हैं। जैसे आपको प्यास लगी है, लेकिन आप एक ऐसी जगह पर हैं जहां बहुत शोर शराबा हो रहा है, आप चाहे जितना मर्जी चिल्ला करके बोले क्या होगा, कोई आपकी बात नहीं समझ पाएगा। लेकिन अगर आपने पानी पीने का इशारा किया
1: जी,
0: तो जो देख रहा है वो समझ जाएगा ना कि भाई आपको पानी पीना है।
1: बिल्कुल।
0: लेकिन ये तो बात हुई एक विशेष स्थिति की।
1: जी,
0: आप सोचिए, आपके हमारे बीच में ऐसे लोग भी तो हैं जिनको सुनाई कम देता है
1: जी,
0: या जिनको बिल्कुल ही सुनाई नहीं देता, और ये स्थिति शायद उनकी जन्म से है।
1: जी,
0: अच्छा, अब ये लोग क्या करेंगे? ऐसा तो नहीं है कि सुनाई नहीं देता तो वो बात नहीं करना चाहते, अपने विचार नहीं रखना चाहते, उनको समझ नहीं आ रहा है। तो उनके लिए जो भाषा है वो है संकेतों की भाषा।
1: जी,
0: अब ये संकेत हर जगह के अलग हो सकते हैं। भारत में अगर सांकेतिक भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो वो है भारतीय सांकेतिक भाषा।
1: जी,
0: अगर आप अमेरिका में जाकर के कुछ सांकेतिक भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो वो अमेरिकन सांकेतिक भाषा हो जाती है।
1: जी,
0: दोनों भाषाओं में अंतर है, और ये अंतर उस तरीके से है जिस तरीके से आप अपने हाथों का, अपनी उंगलियों का या अपने हाव भावों का इस्तेमाल करते हैं। तो हर देश की अपनी एक सांकेतिक भाषा है। और आपको यहाँ ये जानकर आश्चर्य होगा, जैसे संज्ञा शब्द होते हैं हमारी बोलचाल की भाषा में, मौखिक भाषा में, बिल्कुल उसी तरह से, उदाहरण के लिए लेते हैं गणपति का संकेत।
1: जी,
0: गणपति का संकेत मंगलवार को दर्शाता है महाराष्ट्र में,
1: जी,
0: ठीक है, लेकिन मंगलवार को दर्शाएगा हनुमान जी की गदा का संकेत कहाँ? उत्तरी भारत में।
1: बिल्कुल।
0: तो ये संकेत भी हमारे अलग अलग जगह पे अलग अलग आते हैं।
1: जी,
0: तो इसीलिए भारतीय सांकेतिक भाषा की जब हम बात करते हैं तो उसमें भी उतनी ही विविधता है जितनी की किसी और मौखिक भाषा में है।
1: जी, ये तो हुई हमारी सांकेतिक भाषा के बारे में जानकारी
0: जी
1: और समावेशी शिक्षा के बारे में
0: जी
1: जानकारी। तो अब हमारे श्रोता विशेष रूप से ये जानना चाहेंगे कि समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए हमारी यानी CIET NCERT द्वारा क्या क्या पहलें की गई हैं।
0: जी देखो, सांकेतिक भाषा में भी हम बहुत काम कर रहे हैं।
1: जी,
0: जैसा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर भी अधिगम सामग्री बनेगी, तो
1: जी,
0: हमारी जितनी भी पाठ्य पुस्तकें हैं उनको हम सांकेतिक भाषा के वीडियोज में हम परिवर्तित कर रहे हैं।
1: जी,
0: लेकिन इन वीडियोज में ऑडियो भी है,
1: जी,
0: और इन वीडियोज में सांकेतिक भाषा तो है ही है, साथ की साथ आपकी पाठ्य पुस्तक का पेज भी है,
1: जी,
0: ताकि कोई भी छात्र, चाहे उसे सांकेतिक भाषा आती हो या नहीं आती हो, अपने साथी के साथ बैठ करके वो वीडियो देख सके। इसके अलावा CIET NCERT सभी पाठ्य पुस्तकों का ध्वनि रूप भी बना रही है, जो बहुत सरलता से CIT की वेबसाइट पर उपलब्ध है।
1: जी,
0: इसके अलावा समावेशी कक्षाओं को प्रोत्साहित करने के लिए हर रोज दोपहर 12 बजे से 12:30 बजे तक हमारा एक विशेष लाइव सत्र हर DTH चैनल पर प्रसारित होता है। इस लाइव सत्र में हम क्या करते हैं? इस लाइव सत्र में हम एक कक्षा, एक विषय, एक पाठ्य पुस्तक और एक पाठ लेकर के हम विशेषज्ञों को आमंत्रित करते हैं कि आप आइए, इस पाठ की सहायता से आप ये बताइए कि आप कैसे इस पाठ को समावेशी कक्षाओं में सबकी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए
1: जी
0: आप पढ़ा सकते हैं। और जब आप आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे तो समावेशी कक्षा है, लेकिन सिद्धांत आपको समतामूलक अपनाना है, यानी प्रत्येक विद्यार्थी की आवश्यकता को आपको ध्यान में रखना है। तो एक हमारी ये जाती है सीरीज।
1: जी
0: इसके अलावा अगर आप चाहें तो अपने विद्यालयों को किस तरह से अवरोध मुक्त बना सकते हैं,
1: जी
0: उसके लिए हमारे पास है प्रिया सुगम्यता योद्धा। अब ये
1: जी
0: प्रिया

0: सौम्यता योद्धा क्या है, ये एक छोटी सी कॉमिक बुक है जो बहुत सरलता से समझाती है कि सुगम्यता का मतलब केवल इतना ही नहीं है कि आप सीढ़ियां हटा करके रैंप बना लें
1: जी,
0: सुगम्यता का मतलब यह भी है कि आपकी जो कक्षा है उसका दरवाजा थोड़ा सा बड़ा हो
1: जी,
0: आपका जो सभागार है उसके मंच तक पहुंचने के लिए सीढ़ियों के साथ रैंप हो, व्हीलचेयर आसानी से पहुंच जाए
1: जी,
0: आपके विद्यालय में कौन सी कक्षा कहाँ है, कौन सी प्रयोगशाला कहाँ है उसका एक मानचित्र भी कहीं उपलब्ध हो
1: जी,
0: आपकी विद्यालय में टेक्टाइल पाथ हो। टेक्टाइल पाथ क्या, आपने मेट्रो में सफर तो किया ही होगा,
1: जी जी
0: जब आप मेट्रो स्टेशन पर होते हैं तो आपने देखा होगा वो पीली टाइलें,
1: बिल्कुल
0: पीली टाइलें कैसी हैं, उनकी विशेषता यह है कि आप अपने जूते पहने हुए भी उनको महसूस कर सकते हैं
1: जी,
0: उनके उभारों को महसूस
1: बिल्कुल
0: कर सकते हैं, मतलब वो स्पर्शनीय टाइल हैं।
1: जी,
0: ये स्पर्शनीय टाइल बताती हैं कि कहाँ रास्ता है, कहाँ इकट्ठा होना है हमें
1: जी,
0: तो उस तरह की टाइलें हमारे विद्यालयों की संरचना को भी बहुत सुगम्य बनाती हैं
1: जी।
0: इसके अलावा एक और बहुत महत्वपूर्ण पहल हमारी CIT NCERT की है, वो है दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम 2016 में पहचानी गई सभी 21 तरह की दिव्यांगताओं को विद्यालयी स्तर पर पहचानने के लिए एक जांच सूची बनाना
1: जी,
0: जिसको हम कहते हैं प्रशस्त। प्रशस्त हिंदुस्तान की पहली स्टैटिस्टिकली स्टैंडर्डाइज्ड मानकीकृत जांच सूची है
1: जी,
0: जो 21 तरह की सभी दिव्यांगताओं को शिक्षकों विशेष शिक्षकों की मदद से पहचानती है और इसके लिए शिक्षकों का दिव्यांगताओं के बारे में विशेषज्ञ होना भी जरूरी नहीं है
1: जी
0: तो ये भी एक हमारी पहल है
1: जी प्रोफेसर भारती, अभी आपने ये जानकारी दी कि NCERT की बुक्स ऑडियो बुक्स के रूप में उपलब्ध हैं, तो ये किताबें हमें कहाँ से मिल सकती हैं?
0: ये किताबें आपको बहुत सरलता से CIET के वेब पेज से मिल सकती हैं। आप CIET के वेब पेज पे जाइए, वहां पे ऑडियो बुक्स लिखिए तो आपको वो मिल जाएंगी
1: जी,
0: और एक और सरल उपाय है
1: जी,
0: आजकल तो गूगल हम सबकी मदद के लिए है ही है,
1: बिल्कुल
0: गूगल
1: बिल्कुल
0: पर जाइए लिखिए ऑडियो बुक्स CIET NCERT आपको
1: जी
0: सीधा वहां उसी पेज पे ले जाएगा
1: जी
0: और आप वहां से ले सकते हैं
1: जी
0: एक चीज और भी अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये किताबों के लिए आपको कुछ शुल्क देना पड़ेगा तो ये बिल्कुल निःशुल्क उपलब्ध हैं और CIT वेब पेज के साथ साथ आपको ये दीक्षा पर भी आराम से मिल सकती हैं
1: जी
0: और यह किताबें आपको NCERT ऑफिशियल YouTube चैनल पर भी आपको मिल जाएंगी तो सरलता से आप हमारी ऑडियो बुक्स को CIT की वेबसाइट से NCERT ऑफिशियल YouTube से और
1: जी
0: साथ ही साथ दीक्षा से बिल्कुल निशुल्क बिना किसी शुल्क के प्राप्त कर सकते हैं
1: जी आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी। अब मेरा अगला प्रश्न ये है कि समावेशी शिक्षा की प्रक्रिया में आदिवासी समूहों और समाज के अन्य पिछड़े समूहों को भी शामिल करने की दिशा में NCERT की क्या पहल है?
0: बिल्कुल आदिवासी जाति या अन्य पिछड़े समूहों को शिक्षा से जोड़ने के लिए NCERT की पहलों में सबसे मुख्य जो है वो यह है कि हमारी जो पाठ्य पुस्तकें हैं
1: जी
0: अगर आप ध्यान से देखें तो वो पाठ्य पुस्तकें पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करती हैं
1: जी
0: उनकी कहानियां उनके पाठों की विषय वस्तु जनजाति समूहों हमारे आदिवासी समूहों और अन्य पिछड़े वर्गों के परिवेश को भी दर्शाती हैं
1: जी
0: जिससे ये पाठ्य पुस्तकें हर बच्चे को अपनी सी लगती हैं उससे उनमें कोई अलगाव की भावना विकसित नहीं होती
1: जी
0: है तो सबसे बड़ी बात तो यही है और जब आप पाठ्य पुस्तकों से जुड़ते हैं तो फिर आप अपने विद्यालयों से भी जुड़ते हैं
1: जी
0: ये पहल हमारी यहाँ से शुरू होती है लेकिन अंत यहाँ पर नहीं है
1: जी बिल्कुल। तो अब आज का अंतिम प्रश्न, ये भी प्रश्न मेरा दिव्यांगों से ही जुड़ा हुआ है। मेरा प्रश्न है, दिव्यांगों के लिए शिक्षा सुनिश्चित करने हेतु क्या कुछ विशेष प्रयास किए जा रहे हैं?
0: दिव्यांगों की शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए जैसा हमने बीच में भी बताया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने तो बहुत सारे प्रावधानों की बात की है उसके दो प्रावधानों पर हमने चर्चा की कि सामाजिक आर्थिक रूप से अलाभान्वित समूह कौन से हैं उसमें कौन से बच्चे आते हैं और भारतीय सांकेतिक भाषा की इसके अलावा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 कहती है कि प्रत्येक बच्चे की भागीदारी और उसको अपनापन या जुड़ाव महसूस हो इस पर बहुत ज्यादा काम करना जरूरी है। दूसरा राष्ट्रीय शिक्षा नीति ये भी कहती है कि व्यक्तिगत सहयोग और समर्थन दिया जाए प्रत्येक बच्चों को तभी हम

0: गुणवत्तामूलक शिक्षा की बात करते हैं समावेशी कक्षाओं या शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत। तीसरी चीज राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहती है कि आपको तकनीक
1: जी
0: और सहायक उपकरणों का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी
1: जी
0: है। इसका अर्थ यह भी है बहुत सरल से शब्दों में कि आप दीक्षा प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कीजिए,
1: जी
0: आप ध्वनि पुस्तकों का इस्तेमाल कीजिए।
1: जी
0: साथ ही साथ अगर कोई बच्चा आकर के शिक्षक को कहता है कि जी मुझे आज की कक्षा रिकॉर्ड करनी है क्योंकि मैं सही से लिख नहीं पाता हूँ या समझ नहीं पाता हूँ या ज्यादा देर तक याद नहीं रख पाता हूँ, तो शिक्षकों को डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि यह भी समावेशी कक्षा प्रणाली का ही एक भाग है और
1: जी
0: सहायक उपकरणों का प्रयोग है। एक और चीज भी है इसी कड़ी में जुड़ता है, शिक्षकों का संवेदीकरण और उनकी तैयारी।
1: जी
0: मतलब शिक्षकों को आपको सेंसिटाइज करना भी जरूरी है विशेष आवश्यकताओं के प्रति, ताकि वो अपनी कक्षाओं को समतामूलक और समावेशी कक्षाओं में परिवर्तित कर सके।
1: जी
0: यह काम लेकिन सिर्फ और सिर्फ शिक्षा शिक्षक और विद्यालय नहीं कर पाएगा, इस काम के लिए आपको परिवार और समुदाय का सहयोग भी लेना होगा।
1: जी
0: जब परिवार और समुदाय शिक्षा व्यवस्था प्रणाली से जुड़ते हैं तभी तो विद्यार्थियों का समग्र विकास हो पाएगा। तो बहुत सारी चीजें हम एक साथ शुरू कर रहे हैं।
1: जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर भारती इस उपयोगी जानकारी के लिए। इस आशा के साथ कि देश की शिक्षा व्यवस्था में समावेशी शिक्षा का भविष्य दिन प्रतिदिन उज्जवल होता जाएगा, हम आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। आप हमारे श्रोताओं को कोई विशेष संदेश देना चाहेंगी?
0: मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि आप विशेष आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशील रहिए, ये आपके और हमारे आसपास ही हैं। कई बार हम इन्हें देख करके भी अनदेखा कर देते हैं, तो ऐसा ना करें। याद रखिए, बूंद बूंद से ही सागर भरता है।
1: आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: नमस्कार।
1: नमस्कार। अभी आपने सुना कार्यक्रम श्रोता संवाद। हमें इस कार्यक्रम पर आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतजार रहेगा।

0: तो हमारा आज का प्रसारण यहीं पर समाप्त होता है, इसलिए मुझे यानी अजीत को
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: अभी आप प्रायोजित कार्यक्रम NCERT की 1296वीं कड़ी सुन रहे थे।

हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। 11:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम एक ही कलाकार, जिसमें आज आप सुनेंगे एसपी बाला सुब्रमण्यम के गाए कुछ गीत। एक ऐसी आवाज़ जो कभी रोमांस बनकर दिलों को छूती है, कभी भावनाओं को शब्द देती है, और कभी संगीत की मधुर लहर बनकर मन को सुकून पहुंचाती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं महान गायक एसपी बाला सुब्रमण्यम जी की। एक ही कलाकार के आज के अंक में हम सुनेंगे उनके गाए कुछ चुनिंदा और सदाबहार गीत। तो बने रहिए हमारे साथ और आनंद लीजिए इस खास संगीतमय प्रस्तुति का। एसपी बाला सुब्रमण्यम का पूरा नाम है श्रीपति पंडितरा देवला बाला सुब्रमण्यम। उनका जन्म 4 जून 1946 को आंध्र प्रदेश के नेल्लौर गांव में हुआ था, नेल्लौर जिले में हुआ था। उनके पिता एसपी सांभामूर्ति प्रसिद्ध हरिकथा कलाकार थे, इसीलिए संगीत और कला का माहौल उन्हें बचपन से ही मिला। बचपन से ही बाला सुब्रमण्यम जी का रुझान संगीत की ओर था। हालांकि उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू की थी, लेकिन संगीत के प्रति गहरा लगाव होने फिल्मी दुनिया की ओर ले आया। साल 1966 में तेलुगु फिल्म श्री श्री श्री मर्यादा रमन्ना से उन्हें पहला बड़ा मौका मिला। इसके बाद उनकी आवाज़ दक्षिण भारतीय सिनेमा में तेजी से लोकप्रिय हो गए। धीरे धीरे उन्होंने तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम फिल्मों में अपनी खास पहचान बनाई। हिंदी सिनेमा में एसपी बाला सुब्रमण्यम को सबसे बड़ी पहचान मिली फिल्म मैंने प्यार किया से। इस फिल्म में अभिनेता सलमान खान के लिए गाए गए गीत बेहद लोकप्रिय हुए। उनकी आवाज़ ने अभिनेता सलमान खान के शुरुआती फिल्मों को एक अलग पहचान दी।

एसपी बाला सुब्रमण्यम ने अपने शानदार फिल्मी सफर में कई सुपरहिट फिल्मों में अपनी मधुर आवाज से यादगार बना दिया। हिंदी सिनेमा में मैंने प्यार किया से मिली लोकप्रियता के बाद उन्होंने हम आपके हैं कौन, साजन, पत्थर के फूल, लव, रोजा, हमसे है मुकाबला और एक दूजे के लिए जैसे फिल्मों में अपनी आवाज का जादू बिखेरा।

एसपी बाला सुब्रमण्यम ने अपने करियर में लगभग 40,000 से भी अधिक गीत रिकॉर्ड किए। यह उपलब्धि उन्हें दुनिया के सबसे अधिक गीत रिकॉर्ड करने वाले गायकों में शामिल करती है। एसपी बाला सुब्रमण्यम को संगीत जगत में उनके विशेष योगदान के लिए कई बड़े पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। उन्हें 6 बार राष्ट्रीय पुरस्कार मिले। भारतीय संगीत और सिनेमा में उनके अमूल्य योगदान को देखते हुए भारत सरकार ने उन्हें वर्ष 2001 में पद्मश्री और वर्ष 2011 में पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया। उनकी गायकी की मिठास और भावनाओं से भरी आवाज़ आज भी हर पीढ़ी को उतनी ही पसंद आती है।

26 सितंबर वर्ष 2020 को एसपी बालासुब्रमण्यम इस दुनिया को अलविदा कह गए, लेकिन उनकी मधुर आवाज़ और उनके गाए अनगिनत गीत आज भी संगीत प्रेमियों के दिलों में उसी तरह जीवित हैं। उनकी गायकी में जो अपनापन, मिठास और भावनाएं थी, वही उन्हें बाकी गायकों से अलग बनाती है। उनके गीत सिर्फ संगीत नहीं बल्कि सुनहरी यादों का एहसास है, जिन्हें लोग आज भी उतने ही प्यार से सुनते हैं आने वाले समय में भी एसपी बालासुब्रमण्यम की आवाज़ यूं ही संगीत की दुनिया में गूंजती रहेगी और हर पीढ़ी को अपने सुरों से मंत्रमुग्ध करते रहेगी।

0: तो श्रोताओं, कार्यक्रम एक ही कलाकार में आज हमने जाना महान गायक एसपी बाला सुब्रमण्यम के जीवन और उनके शानदार संगीत सफर के बारे में। उनके गाए सदाबहार गीत आज भी संगीत प्रेमियों के दिलों में खास जगह रखते हैं। इसी के साथ आज का ये अंक यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय दोपहर के 12 बजे हैं। लीजिए सुनिए तेलुगु कार्यक्रम।
1: మీడియం వేవ్ 438.6 మీటర్లు అనగా 684 కిలోహర్ట్స్ పై ఆకాశవాణి శ్రీ విజయపురం కేంద్రం నుంచి నేటి ప్రసారం ప్రారంభం.

अभी आपने सुना मलयालम कार्यक्रम। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय दोपहर के 1 बजने को है। अब अगला प्रसारण हमारे दिल्ली केंद्र से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउलाइन के बीच नई दिल्ली में द्विपक्षीय बैठक हो रही है। दोनों नेताओं के बीच ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों को और सुदृढ़ करने के लिए ये चर्चा हो रही है। म्यांमा और भारत के बीच सुरक्षा और संपर्क सहित दोनों देशों के संबंधों के सभी पहलुओं पर बातचीत की संभावना है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि म्यांमा के राष्ट्रपति का काफी व्यस्त कार्यक्रम है।
1: म्यांमा के राष्ट्रपति आज शाम राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। सांस्कृतिक परिसर में आयोजित लाइट एंड द लोटस रेलिक्स ऑफ द अवेकेंड वन प्रदर्शनी का भी दौरा करेंगे। इस प्रदर्शनी में भगवान बुद्ध से संबंधित पिप्रहवा पवित्र अवशेषों तथा उनसे जुड़ी महत्वपूर्ण प्राचीन धरोहरों का प्रदर्शन किया जा रहा है। म्यांमा भारत की नेबरहुड फर्स्ट एक्ट ईस्ट और महासागर नीतियों के संगम पर स्थित है। म्यांमा के राष्ट्रपति की भारत की यह आधिकारिक यात्रा से दोनों देशों के बीच बहुआयामी संबंधों को और गहराई मिलेगी तथा दोनों देशों के बीच साझेदारी के नए अवसर खुलने की आशा है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। राज्यपाल आरएन रवि ने कोलकाता के लोकभवन में आयोजित समारोह में 35 नए मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। समारोह में मुख्यमंत्री और अन्य वरिष्ठ नेता उपस्थित रहे। नवनियुक्त मंत्रियों को विभाग बाद में आवंटित किए जाएंगे। 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों के द्विवार्षिक चुनाव के लिए अधिसूचना आज जारी कर दी गई है। इस चुनाव के अंतर्गत आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक में 4-4 सीट, राजस्थान और मध्य प्रदेश में 3-3 सीट, झारखंड में 2 सीट और मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम में 1-1 सीट पर मतदान होगा। नामांकन 8 जून तक दाखिल किए जा सकते हैं। 18 जून को मतदान होगा। मतगणना भी उसी दिन होगी। सर्वोच्च न्यायालय में 5 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई है। इसके साथ ही मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों की कुल संख्या 37 हो गई है। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि राष्ट्रपति ने मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद सर्वोच्च न्यायालय में 5 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के 6 वर्ष पूरे हो गए हैं। पिछले 6 वर्षों में इस योजना से लाखों रेहड़ी पटरी वालों को आसान ऋण मिला है। इसके माध्यम से अब तक 1,12,00,000 से अधिक ऋण वितरित किए गए हैं। शहरों और कस्बों में इस पहल के माध्यम से 75,00,000 से अधिक लोग लाभान्वित हुए। योजना के अंतर्गत अब तक 17,800 करोड़ रूपये से अधिक के ऋण प्रदान किए गए हैं। भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता CEPA आज से लागू हो गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि यह समझौता दोनों देशों के आर्थिक और रणनीतिक संबंधों को और मजबूत करेगा। होटल, रेस्तरां और अन्य व्यवसायों द्वारा उपयोग किए जाने वाले 19 किलोग्राम के व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 4 प्रमुख शहरों में 42 रूपये से लेकर 53 रूपये 50 पैसे तक की वृद्धि की गई है। घरेलू उपयोग में आने वाली गैस की दरों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT रुड़की ने JEE एडवांस्ड परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए हैं। कुल 56,880 उम्मीदवार परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं। इनमें से 10,107 छात्र

0: अच्छा बच्चों, सब लोग आ गए हैं ना?
1: आ गए हैं।
0: आप किस स्कूल में पढ़ते हैं?
1: मारुति संगीत पाठशाला।
0: मारुति संगीत पाठशाला के बच्चे हैं आप लोग?
1: हाँ।
0: तो आज हम एक नया गाना सिखाएं।
1: हाँ,
0: किसने लिखा है मालूम है? दोड रंगे गौड़ा। किसने लिखा है ये गाना?
1: दोड रंगे गौड़ा।
0: तो आप गाना सीखने के लिए तैयार हैं?
1: हाँ, तैयार है।
0: इस गाने का शीर्षक है कडल हक्कीगळु। क्या है?
1: कडल हक्कीगळु।
0: तो पहले क्या करना, इस गाने को लिख लेना है ना?
1: हाँ।
0: तो बाद में हम गा सकते हैं, नहीं तो नहीं गा सकते है ना?
1: हाँ।
0: तो पहले क्या करना, पेन पेंसिल पेपर सब उठा के अपने आगे रख लेना है। रख लिया है?
1: हाँ।
0: अच्छा, तो मैं डिक्टेट करती हूँ, आप सब लिख लीजिए। हारु तिहवु, हारु तिहवु,
1: हारु तिहवु, हारु तिहवु,
0: कडल करय खगकुला,
1: कडल करय खगकुला,
0: यनी तो मुगिला,
1: यनी तो मुगिला,
0: उद्द अगला,
1: उद्द अगला,
0: जी की दानी तो,
1: जी की दानी तो,
0: बांदला,
1: बांदला।
0: अच्छा, तो एक पहला स्टंजा है।
1: हाँ?
0: आगे का स्टंजा है, बान लोक नगुव नाका,
1: बान लोक नगुव नाका,
0: हारो हक्की पालिगे,
1: हारो हक्की पालिगे,
0: रेक्के बीसी धैर्य सूसी,
1: रेक्के बीसी धैर्य सूसी,
0: चुक्की मुट्टो हम्मीगे,
1: चुक्की मुट्टो हम्मीगे।
0: लिख लिया?
1: हाँ।
0: सब लोग लिख लिया?
1: हाँ।
0: अच्छा, तो अगला स्टंजा, दूर दूर हारी हारी,
1: दूर दूर हारी हारी,
0: व्योम कानुआ बजे,
1: व्योम कानुआ बजे,
0: हसीव मरेसी,
1: हसीव मरेसी,
0: वांछे मेरेसी,
1: वांछे मेरेसी,
0: दिगंत सेरो लघु बगे,
1: दिगंत सेरो लघु बगे।
0: तो अब बच्चा आखिर स्टंजा वो भी सुना दो।
1: हाँ,
0: लिखे थे।
1: हाँ,
0: याव नाडो यंथ काडो,
1: याव नाडो यंथ काडो,
0: हारो आसे हक्कीगे,
1: हारो आसे हक्कीगे,
0: मुक्त गगन नूरु काल,
1: मुक्त गगन नूरु काल,
0: ईजो शक्ति रेक्केगे,
1: ईजो शक्ति रेक्केगे।
0: तो सब लोग एक गाना तो लिख लिया।
1: हाँ।
0: अब इसे कैसे गाना, किस तरह गाना, ये तो मालूम होना है ना?
1: हाँ।
0: अच्छा जी, जरा चुपके रहना, गीता जी आ रही है दीदी।
1: हाँ?
0: इसको हम रिक्वेस्ट कर देंगे।
1: हाँ? हाँ।
0: गीता जी आइए यहाँ, हमारे बच्चे सब ये गाना सीखना चाहते हैं। पहले इसके आरोह अवरोह क्या है ये बताइए।

0: संगीत में ये चक्रवाक राग होता है और हिंदुस्तानी में इस राग को कहते हैं आहिर भैरव। इसका ताल है कर्नाटक संगीत में चतुर्थ जाति एक ताल तीसर नड़े। इस ताल को हिंदुस्तानी में कहते हैं दादरा। तो अब भैया विश्वनाथ नागपुर जी भी यहाँ आए हैं, वे तबला बजाने के लिए तैयार होकर बैठे हैं। तबला बजा के दिखाते हैं ना।
1: धा दिन्ना।
0: अब आप लोगों को मालूम हो गया ना ये गाना कौन सी राग पर आधारित है। अब दीदी आपको सिखाती है ये गाना।

दूसरा अंतरा का धुन कैसा है ये मालूम हो गया, मगर जो स्वर आते हैं वो नहीं मालूम हुआ है ना। तो गीता दीदी स्वर को भी सिखाती हैं।

ये आखिर का अंतर जो है ना, वो पहले अंतर था ना, बान लोक नगुना का, उसी के जैसे ही है। अच्छा तो गाते हैं।

0: तो बच्चों, अब इस पूरे गाने की धुन आपको याद होगी, है ना? अब घर पे जाके खूब प्रैक्टिस करना, तो आप सब लोगों को ये गाना बहुत अच्छी तरह से याद हो जाएगी, करेंगे ना? अच्छा बच्चों, तो नमस्कार।
1: अभी आप समुगान शिक्षा का कार्यक्रम आओ हिल मिल गाए सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय दोपहर के 1:30 हुए हैं। अब श्रोताओं का पसंदीदा कार्यक्रम आपके नाम फिल्मी पैगाम। तो श्रोताओं, पढ़ते हैं आज का पहला व्हाट्सएप मैसेज, जिसे भेजा है सदर बाजार।

मारवाड़ बिलारा राजस्थान से तरुण चौहान और प्रतीक चौहान ने। हमारे इन दोस्तों ने पसंद किया है फिल्म जब जब फूल खिले का ये खूबसूरत सा गीत। आइए सुनते हैं इनका पसंद का ये गीत।

फिल्म ममता से सुनिए अगला गीत। भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र चिंपा, कपिल चिंपा, ईशान चिंपा और पूजा परिहार, हमारी ये श्रोतागण सुनना चाहते हैं ये गीत।

उदित नारायण की आवाज़ में अब पेश है फिल्म अनाड़ी का एक गाना। इस गीत को पसंद किया है असम से रोमेश पात्रो ने।

असम से जुड़े हैं हमारे श्रोता हितेंद्र दास, जिनकी पसंद है फिल्म चित चोर का ये गाना। आइए सुनते हैं इनके पसंद का ये गीत।

अब सुनिए अगली फरमाइश सुहानी नैना कविता और अंजलि की, जो अस्टिनाबाद श्री विजयपुरम से हमें सुन रहे हैं। हमारे ये श्रोतागण सुनना चाहते हैं फिल्म मोहरा का ये खूबसूरत संगीत।

कार्यक्रम का अंतिम फरमाइशी गीत हमने लिया है चलते चलते फिल्म से, डेली फ्रॉम श्री विजयपुरम से चंदना की पसंद पर। चलिए सुनवाते हैं ये गीत।

श्रोताओं, इस गीत के साथ ही आज का आपके नाम फिल्मी पैगाम कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। दोपहर के 2 बजने को है, अब से कुछ ही पलों के बाद मिड डे न्यूज और दोपहर समाचार हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: opportunities for street vendors. And India ends impressive campaign at Asian Under 20 Athletics Championships with 19 medals, including 10 gold in Hong Kong. With that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउ लाइन ने नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता की। भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता लागू। भारतीय निर्यातकों को ओमान में 98% उत्पाद समूहों पर शुल्क मुक्त बाजार पहुंच मिलेगी। पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। 35 नए मंत्रियों ने ली शपथ। मई महीने में सकल जीएसटी संग्रह बढ़कर 1,94,000 करोड़ रूपये से अधिक हुआ। पीएम स्वनिधि योजना के 6 साल पूरे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, योजना ने रेहड़ी पटरी वालों के लिए विकास के नए अवसर खोले हैं। पश्चिम एशिया में तनाव फिर तेज। अमेरिका ने ईरान में रडार और ड्रोन प्रणालियों पर हमले किए। और हांगकांग में एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने 10 स्वर्ण सहित 19 पदक जीते। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउ लाइन के बीच नई दिल्ली में द्विपक्षीय बैठक हुई। दोनों नेताओं के बीच ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों को और सुदृढ़ करने के लिए वार्ता हुई। बातचीत के दौरान म्यांमार और भारत के बीच सुरक्षा और संपर्क सहित दोनों देशों के संबंधों के सभी पहलुओं पर चर्चा हुई। हमारे संवाददाता ने बताया है कि म्यांमार के राष्ट्रपति आज शाम राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे।
2: सांस्कृतिक परिसर में आयोजित लाइट एंड द लोटस रेलिक्स ऑफ द अवेकेंड वन प्रदर्शनी का भी दौरा करेंगे। इस प्रदर्शनी में भगवान बुद्ध से संबंधित पिप्रहवा पवित्र अवशेषों तथा उनसे जुड़ी महत्वपूर्ण प्राचीन धरोहरों का प्रदर्शन किया जा रहा है। म्यांमार भारत की नेबरहुड फर्स्ट एक्ट ईस्ट और महासागर नीतियों के संगम पर स्थित है। म्यांमार के राष्ट्रपति की भारत की यह आधिकारिक यात्रा से दोनों देशों के बीच बहुआयामी संबंधों को और गहराई मिलेगी तथा दोनों देशों के बीच साझेदारी के नए अवसर खुलने की आशा है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। राज्यपाल आरएन रवि ने कोलकाता के लोकभवन में आयोजित समारोह में 35 नए मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। समारोह में मुख्यमंत्री और अन्य वरिष्ठ नेता उपस्थित रहे। नवनियुक्त मंत्रियों को विभाग बाद में आवंटित होंगे।
3: ये मंत्रिमंडल विस्तार राज्य सरकार की प्रशासनिक संरचना को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। नए मंत्री राज्य के विभिन्न क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं और इनमें अनुभवी विधायकों के साथ साथ पहली बार विधायक बने सदस्य भी शामिल है। समारोह में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के साथ साथ वरिष्ठ राजनीतिक नेताए, सरकारी अधिकारियों और आमंत्रित अतिथियों उपस्थित थे। नवनियुक्त मंत्रियों के बीच विभागों का आवंटन बाद में घोषित किया जाएगा। आज शपथ लेने वाले मंत्रियों में स्वपन दास गुप्ता, अर्जुन सिंह, तापस राय, शंकर घोष और अन्य शामिल है। काशफिन नाहर, आकाशवाणी समाचार, कलकत्ता।
1: 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों के द्विवार्षिक चुनाव के लिए अधिसूचना आज जारी कर दी गई है। इस चुनाव के अंतर्गत आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक में 4-4 सीट, राजस्थान और मध्य प्रदेश में 3-3 सीट, झारखंड में 2 और मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम में 1-1 सीट पर मतदान होगा। नामांकन 8 जून तक दाखिल किए जा सकते हैं। 18 जून को मतदान होगा। मतगणना भी उसी दिन होगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता CEPA आज से लागू हो गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि यह समझौता दोनों देशों के आर्थिक और रणनीतिक संबंधों को और मजबूत करेगा। एक राष्ट्रीय दैनिक में प्रकाशित लेख में श्री गोयल ने कहा कि यह समझौता नए बाजार खोलेगा, इससे निर्यात में वृद्धि होगी तथा निवेश को भी बढ़ावा मिलेगा। श्री गोयल ने कहा कि व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते के अंतर्गत भारतीय निर्यातकों को ओमान में

0: 98% उत्पाद समूहों पर शुल्क मुक्त बाजार पहुंच मिलेगी। श्री गोयल ने कहा कि इससे रोजगार बढ़ेगा और विद्यार्थियों, कामगारों, महिलाओं, किसानों, मछुआरों तथा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को महत्वपूर्ण रूप से लाभ होगा। वस्तु और सेवा कर जीएसटी का सकल संग्रह पिछले महीने 3.2% बढ़कर 1,94,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया। पिछले वर्ष मई में ये 1,88,000 करोड़ रुपए था। पिछले महीने केंद्रीय जीएसटी का सकल संग्रह 37,397 करोड़, राज्य जीएसटी का 45,143 करोड़ और एकीकृत जीएसटी का 51,990 करोड़ रुपए रहा। इस अवधि के दौरान वस्तुओं की कर योग्य आपूर्ति में 26.9% की वृद्धि हुई। सेवा क्षेत्र में इसमें 22.2% की बढ़त दर्ज की गई। जीएसटी रिफंड में 2.6% की वृद्धि हुई और यह आंकड़ा 27,281 करोड़ रुपए रहा। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के 6 वर्ष पूरे हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना की सराहना करते हुए कहा कि पीएम स्वनिधि ने बिना गारंटी के ऋण, वित्तीय समावेशन और विकास के नए अवसर खोलकर लाखों रेहड़ी पटरी वालों के जीवन स्तर में सुधार किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यह योजना विश्वास, सम्मान और सशक्तिकरण पर आधारित है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि वर्ष 2020 में योजना शुरू होने के बाद से अब तक 1,12,00,000 से अधिक ऋण दिए गए हैं।
1: देश के लाखों रेहड़ी पटरी वालों को पिछले 6 साल से पीएम स्वनिधि स्कीम के जरिए आसानी से कर्ज मिल रहा है। इससे उनके लिए अस्थायी आजीविका सुनिश्चित हो पाई है। इस योजना के तहत बिना किसी गारंटी के 3 चरणों में क्रमशः 15,000, 25,000 और 50,000 रुपए तक के कर्ज उपलब्ध कराए जाते हैं। इन कर्जों पर ब्याज सब्सिडी तथा ऋण गारंटी सहायता भी प्रदान की जाती है। इस पहल से देश भर के शहरों और कस्बों में 75,00,000 से अधिक लाभार्थियों को फायदा हुआ है। पीएम स्वनिधि योजना के तहत अब तक 17,800 करोड़ रुपए से अधिक के कर्ज वितरित किए जा चुके हैं। इसके अलावा 55,00,000 से अधिक लाभार्थियों को इस स्कीम से डिजिटल रूप से जोड़ा गया है। सुपर्णा सैकिया के साथ अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के रामसिया गांव से राष्ट्रव्यापी खेत बचाओ अभियान का शुभारंभ किया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि यह अभियान 1 महीने तक चलेगा।
2: 1 महीने तक चलने वाला यह अभियान देश की कृषि भूमि को बचाने और किसानों को वैज्ञानिक खेती के लिए जागरूक करने की दिशा में एक बड़ी पहल है। कार्यक्रम में किसानों को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा,
3: ये खेत बचाओ कार्यक्रम इसलिए कि हमारी माटी बर्बाद ना हो जाए, हमारे खेत बर्बाद ना हो जाए। धरती कहे पुकार के इतना खाद मत डालो, इतना कीटनाशक मत डालो।
2: इस अभियान में कृषि विश्वविद्यालय, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि विज्ञान केंद्र और जनप्रतिनिधि मिलकर भाग ले रहे हैं। अभियान के तहत किसानों को मिट्टी परीक्षण, सोइल हेल्थ कार्ड, प्राकृतिक खेती, संतुलित उर्वरक उपयोग और जल संरक्षण जैसे विषयों पर जानकारी दी जाएगी। अभियान के दौरान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, फसल बीमा योजना, किसान क्रेडिट कार्ड जैसी सरकारी योजनाओं का लाभ भी किसानों तक पहुँचाया जाएगा। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
0: सर्वोच्च न्यायालय में 5 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई है। इसके साथ ही मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों की कुल संख्या 37 हो गई है। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राष्ट्रपति ने मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद सर्वोच्च न्यायालय में 5 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की।
4: विधि मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति शील नागू, बॉम्बे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री चंद्रशेखर, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा, जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति अरुण पल्ली को पदोन्नत किया गया है। वरिष्ठ अधिवक्ता वेंकिता सुब्रमणि मोहना को भी सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। केंद्र सरकार ने पिछले महीने एक अध्यादेश जारी कर कानून में संशोधन किया था। इसके अंतर्गत मुख्य न्यायाधीश के अलावा सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 33 से बढ़कर 37 कर दी गई थी। अंकित की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
0: होटल, रेस्तरां और अन्य व्यवसायों द्वारा उपयोग किए जाने वाले 19 किलोग्राम के वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में देशभर में वृद्धि की गई है। हालांकि घरों में उपयोग होने वाली घरेलू खाना पकाने की गैस की दरों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। दिल्ली में व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 42 रूपये की वृद्धि हुई है और अब इसकी कीमत 3,113 रूपये 50 पैसे होगी। मुंबई में

0: ₹40.50 की वृद्धि के साथ नई कीमत ₹3,067.50 होगी। कोलकाता में ₹53.50 की वृद्धि के साथ व्यावसायिक सिलेंडर की कीमत अब ₹3,255.50 होगी। चेन्नई में कीमतों में ₹42 की वृद्धि हुई है और अब नई कीमत ₹3,283 होगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। ईरान ने अमरीका के एक ड्रोन को मार गिराया है। अमरीका के ईरान में रडार और ड्रोन नियंत्रण स्थलों पर हमले के बाद पश्चिम एशिया में तनाव एक बार फिर बढ़ गया है। ईरान ने जवाबी हमले की बात स्वीकार की, जबकि कुवैत ने कहा कि वो आने वाले ड्रोन और मिसाइल हमलों को रोक रहा है। कुवैत की सेना ने कहा है कि उसकी वायु रक्षा प्रणाली मिसाइल और ड्रोन हमलों का सामना कर रही है। इसराइल द्वारा लिटानी नदी के पार लेबनान पर अपना कब्जा बढ़ाने के कारण तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। एक रिपोर्ट।
1: सैन्य टकरावों के बीच राजनयिक बातचीत जारी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वे ईरान के साथ एक अच्छे समझौते के करीब हैं। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग्जी ने पुष्टि की है कि दोनों पक्षों के बीच बातचीत जारी है, लेकिन उन्होंने स्पष्ट किया कि औपचारिक रूप से समझौता होने तक किसी भी निर्णय को अंतिम नहीं माना जा सकता। दूसरी ओर लेबनान पर इसराइल के बढ़ते जमीनी हमलों की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कड़ी आलोचना हो रही है। फ्रांस ने स्थिति पर विचार करने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आपातकालीन बैठक बुलाने का अनुरोध किया है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: भारत ऑस्ट्रेलिया रक्षा मंत्रियों की दूसरी संवाद बैठक नई दिल्ली में हो रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और ऑस्ट्रेलिया के उप प्रधानमंत्री तथा रक्षा मंत्री रिचर्ड माल्स बैठक की सह अध्यक्षता कर रहे हैं। बैठक के दौरान श्री सिंह ने कहा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच रक्षा संबंध काफी मजबूत हुए हैं।
2: मैं आपकी सरकार को 2026 की राष्ट्रीय रक्षा रणनीति और एकीकृत निवेश कार्यक्रम की पहल के लिए बधाई देना चाहता हूं। चर्चा के दौरान मैं इन नीतिगत दस्तावेजों और भारत ऑस्ट्रेलिया रक्षा संबंधों में विकास के संभावित अवसरों पर आपके विचारों को सुनने के लिए उत्सुक हूं।
0: श्री माल्स ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया और भारत ने अपनी रक्षा साझेदारी को और मजबूत किया है और दोनों पक्ष समुद्री क्षेत्र में मिलकर काम कर रहे हैं। वार्ता में द्विपक्षीय रक्षा सहयोग में हुई प्रगति की समीक्षा और सहयोग के नए रास्ते तलाशे जाएंगे। म्यांमा के नामकाम शहर में भीषण विस्फोट में 55 लोगों की मौत हो गई है। कल हुए इस विस्फोट में 70 से अधिक लोग घायल हुए हैं। ये घटना खनन के लिए रखे गए सामान में हुए विस्फोट के कारण हुई। स्थानीय अधिकारी प्रभावित निवासियों को राहत, चिकित्सा देखभाल और पुनर्वास सहायता प्रदान कर रहे हैं। स्थानीय मीडिया रिपोर्टों के अनुसार विस्फोट में 100 से अधिक घर क्षतिग्रस्त हुए हैं। मलेशिया ने 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के सोशल मीडिया अकाउंट पर रोक लगाने वाले नियमों को आज से लागू कर दिया है। इसके अंतर्गत कम से कम 80 लाख उपयोगकर्ताओं वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को आयु सत्यापन प्रणाली लागू करनी होगी। नियमों का पालन न करने वाली कंपनियों पर 100 लाख रिंगिट तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। सरकार ने कहा कि इन उपायों का उद्देश्य बच्चों को हानिकारक सामग्री, साइबर बुलिंग और जैसी चीजों से बचाना है। ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील और इंडोनेशिया सहित अन्य देशों ने भी बच्चों के सोशल मीडिया तक पहुंच पर आयु आधारित प्रतिबंधों की घोषणा की है। हांगकांग में 22वीं एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने 10 स्वर्ण, 5 रजत और 4 कांस्य सहित 19 पदक जीते हैं। पदक तालिका में भारत दूसरे स्थान पर रहा। घरेलू मोगली वेंकटराम ने कल पुरुषों की 800 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को बधाई दी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउलाइन ने नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता की। भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता लागू। भारतीय निर्यातकों को ओमान में 98% उत्पाद समूहों पर शुल्क मुक्त बाजार पहुंच मिलेगी। पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। 35 नए मंत्रियों ने ली शपथ। पीएम स्वनिधि योजना के 6 साल पूरे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा योजना ने रेहड़ी पटरी वालों के लिए विकास

0: के नए अवसर खोले हैं। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलो हर्ट्स और FM 100.9 मेगाहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। मौसम। मौसम विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार खराब मौसम के चलते मछुआरों को मौसम संबंधी चेतावनी में बताया जाता है कि द्वीप समूह में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से हवा चलेगी। मछुआरों को सूचित किया जाता है कि वे 4 जून तक समुद्र में ना जाएं। कल तक के मौसम संबंधी पूर्वानुमान में बताया जाता है कि अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में बिजली गरजने के साथ हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। ये था मौसम का हाल। इस समय 2:31 होने वाले हैं। अब प्राइमरी चैनल पर हमारी पहली सभा समाप्त होती है। अपनी दूसरी सभा में शाम 4 बजे हम आपकी सेवा में फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हम आपसे अनुमति चाहते हैं, लेकिन अब से लेकर शाम 4 बजे तक हम आपसे जुड़े रहेंगे 100.9 मेगाहर्ट्ज़ FM पर स्थानीय कार्यक्रमों के साथ। नमस्कार।

हम बोल रहे हैं विविध भारती एफएम श्री विजयपुरम केंद्र से और हमारा प्रसारण उपलब्ध है 100.9 मेगाहर्ट्ज पर। अब प्रस्तुत है हमारा लाइव फोन आउट फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम हेलो डियर फ्रेंड्स।

0: कार्यक्रम हेलो डियर फ्रेंड्स में हम अपने सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत करते हैं और इस सुरीली महफिल में आज मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त शिबानी। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं कार्यक्रम हेलो डियर फ्रेंड्स। हेलो डियर फ्रेंड,
1: सुशील यादव बोल रहा हूँ, रणमगरी सेक्टर 4 उदयपुर राजस्थान से।
0: सुशील यादव जी बताइए कैसे हैं आप?
1: अच्छे हैं मैडम, बिल्कुल। अभी तो वर्तमान में तो गर्मी झेल रहे हैं, बहुत अधिक है राजस्थान में तो।
0: जी जी, तो इस गर्मी के मौसम में राहत पाने के लिए आप क्या करते हैं?
1: मेन तो यही है मैम कि 10 बजे से लेके 4 बजे तक बाहर नहीं निकलते हैं, और सुबह सुबह तो काम चल जाता है, सुबह और शाम को काम चला लेते हैं
0: जी।
1: और दिन में क्योंकि उसकी धूप की तीव्रता और टेम्परेचर अधिक होता है तो हीट स्ट्रोक होने का डर रहता है, तो बाहर नहीं निकलते।
0: जी जी, थोड़ी सावधानी से रहिए।
1: राजस्थान की खबरें भी आपने सुनी होगी, अभी 2 दिन पहले बीकानेर में सेंट का स्टॉर्म आया था बहुत जोरदार।
0: जी जी जी, तो सुशील यादव जी और अपने बारे में भी कुछ नहीं, उससे पहले बताइए गाना बताइए, कौन सा गाना सुनेंगे आप?
1: गाना जीनियस फिल्म का गाना है, आतिफ असलम का गाया हुआ।
0: जी
1: और दिन मेरी ना सुने,
0: बहुत
1: दिनों से नहीं
0: जी,
1: सुना
0: ये गाना
1: था, तो
0: मिल
1: आप
0: चुका है
1: सुनिए।
0: जी। हाँ बताइए क्या बोल रहे थे आप?
1: मैं वैसे तो बैंकर हूँ, रिटायर्ड बैंकर हूँ, और मैंने जिंदगी भर यही सेवा की है लोगों की, तो आदत में है।
0: जी
1: और बैंकिंग के संबंध में मैं एक थोड़ा निवेदन करना चाहता हूँ, कर सकता हूँ क्या?
0: जी जी जरूर।
1: मैं मतलब सभी साथियों से और सभी सुनने वालों से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि अपने जहाँ कहीं भी आप सेविंग करते हैं बहुत अच्छा करते हैं, और आजकल की जो बचत है वो यही बचत है कि आपके खर्चों में थोड़ी बहुत कटौती करके पैसा बचाया जा सकता है जो भविष्य में काम आता है।
0: जी बहुत ही
1: और दूसरी बात यह है कि जो भी आप लोगों के खाते चलते हैं तो अनावश्यक रूप से खाते ना रखें, एक या दो खाते ही रखें, क्योंकि जो खाते चलते नहीं वो इनऑपरेटिव हो जाते हैं, फिर डोरमेंट हो जाते हैं, फिर लॉक हो जाते हैं। तो और तीसरी बात, खातों में नॉमिनेशन जरूर जुड़ाएं, ये हमारे हमारे नहीं रहने के बाद में हमें बहुत सहयोग करते हैं।
0: जी बहुत ही प्यारा संदेश दिया आपने, उम्मीद है आपके संदेश हमारे श्रोताओं ने सुना होगा।
1: हाँ
0: जी
1: जी,
0: तो चलिए सुशील यादव जी गाना सुनवा दें आपको।
1: मैं मेरे साथ में गाना सुनेंगे, रेणु यादव है,
0: जी
1: मोहित यादव है, कार्तिक यादव, नमिता यादव, संजू और शानी यादव भी सुनते
0: तो
1: सुनती है
0: चलिए
1: हमारी। अच्छा
0: सारे
1: प्रोग्राम में सिलेक्शन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको,
0: जी, तो सारे
1: और
0: मित्रों के
1: वैसे
0: साथ सुनिएगा आपके पसंद का जीनियस फिल्म का ये गीत।
1: ओके,
0: नमस्कार।
1: थैंक यू जी।

0: हेलो डियर फ्रेंड।
1: राज फिल्म का है गाना सुना दीजिए। ठीक है,
0: हेलो जी,
1: हेलो।
0: आपका
1: राज
0: नाम
1: फिल्म का है
0: बताइए।
1: गाना बताइए। ये मेरा नाम अमल बसुमतारी है। जी
0: अमल जी, हाँ
1: जी
0: बताइए कौन
1: हाँ
0: सा गाना
1: बताइए कौन
0: सुनेंगे
1: सा
0: आप।
1: गाना सुनेंगे आप? राज फिल्म का गाना मिलेगा।
0: राज का कौन सा गीत?
1: कितना प्यारा है ये सहरा।
0: कितना प्यारा है ये चेहरा। हाँ जी, ये गाना मिलेगा। तो अमल जी, अपने बारे में कुछ बताइए।
1: हम तो घर पे रहते हैं, घर में किसान का काम करते हैं और जैसे घर वालों का काम करते हैं। और अभी तो बहुत असम में बहुत गर्मी पड़ रहा है, बारिश नहीं हो रहा है। 3-4 दिन से पहले हमारे यह इलाका में, असम में बारिश हुआ है, शायद शायद में हुआ है, लेकिन हमारे इस इलाका में नहीं हो रहा है।
0: जी, तो इस समय आपके
1: तो इस
0: खेतों
1: समय
0: में
1: आपके
0: काम चल
1: खेतों में
0: रहा है
1: काम
0: क्या?
1: चल रहा है क्या? खेतों में तो अभी धान का खेती लगाया नहीं जाता है। थोड़ा जून महीने के 15-16 तारीख की बात ही होगा। अभी चाय का काम चल रहा है, चाय का खेती है हमारा।
0: जी

0: से काम चल रहा है।
1: जी, तो अमल जी, और अपने शौक के बारे में कुछ बताइए, खेती बाड़ी कामकाज के अलावा आपको और क्या क्या किन किन चीजों का शौक है?
0: जो मैं तो रेडियो सुनने ज्यादा अच्छा लगता है, रेडियो का प्रोग्राम, जो भी रेडियो का प्रोग्राम होता है, और आप लोग का इतना प्यार है, जो विजयपुरम के तरफ से मेरे पास बहुत कॉल आता है और ऐसे प्रोग्राम में शामिल होने के लिए बहुत अच्छा लगता है। किसी दोस्त का फरमाइश और ऐसे वगैरह अच्छा लगता है, और ऐसे तो हम सबके साथ मिलजुल के रहना अच्छा लगता है। और आकाशवाणी नहीं तो मेरा भूख भी नहीं लग जाता है। हर रोज आकाशवाणी का प्रोग्राम सुबह से है रात तक सुनते रहते हैं।
1: जी, हमारे केंद्र से कौन कौन से कार्यक्रम सुनते हैं आप?
0: ऐसे हिंदी, जब हिंदी प्रोग्राम होता है गानों का, उसको सब सुनता है। और ऐसे फरमाइशी कार्यक्रम को तो हम छोड़ते नहीं है, हर रोज आते रहते हैं। जैसे डीआर फैन हो, जो भी संडे को आता है, और ऐसे रिकॉर्डिंग वाला प्रोग्राम भी होता है, उसको भी सुनता है। व्हाट्सएप से प्रोग्राम आता है, उसको भी सुनता है।
1: जी,
0: रिक्वेस्ट वाला प्रोग्राम
1: जी, अच्छा लगा, आप हमारे कार्यक्रम सुनते हैं, इतने पसंद करते हैं।
0: कैसा है
1: जी
0: आपका उधर?
1: जी जी
0: आपका उधर मौसम कैसा है?
1: हमारे यहाँ तो बारिश हो रही है, हल्की फुल्की। जी जी, तो अमल जी, आपका गीत मिल चुका है, चलिए सुनते हैं आपके पसंद का गीत।
0: याद कर सकता हूँ?
1: जी बोलिए।
0: सबसे पहले बिमल बसुमतारी है, भाईकोन मुंडा है, रमेश पात्र, जोगेंद्र रंगती, और भगवान सिंह परमार है, रमेश प्रजापति है, और राकेश है, पूरन वर्मा है, लखेंद्र वर्मा है, और धर्मवीर जी है, पूनम है, और सभी सुनने वाले दोस्तों को मैं डेडिकेट करना चाह रहा हूँ मैम।
1: जी, तो अमल जी, आपका गाना प्ले हो चुका है, सारे मित्रों के साथ सुनिएगा आपका ये गीत। नमस्कार, हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद।

0: हेलो डियर फ्रेंड,
1: नमस्कार मैम।
0: नमस्कार। मेरी बात हो रही है आशुतोष जी से?
1: और मेरी बात हो रही है शिवानी मैम से।
0: जी आशुतोष जी, बताइए कैसे हैं आप?
1: हाँ, अच्छा हूँ मैम। और आप लोग याद किया, मतलब विजयपुरम ने याद किया, दिल खुश हो गया मैम जी।
0: जी, हम अपने सारे श्रोताओं को याद करते हैं, हमारे कार्यक्रम से जोड़ने की कोशिश करते हैं। कभी कुछ श्रोता जुड़ पाते हैं और जो नहीं जुड़ पाते हैं तो वो थोड़ा इंतज़ार करिए अपने बारी का, हम इतना ही कहेंगे। जी
1: नहीं, मेरा तो मैम जी फोन तो आ ही जाता है, हर एक महीना में आ ही जाता है।
0: जी, चलिए अच्छी बात है। तो आज बताइए कौन सा गाना सुनेंगे आप?
1: आज मैम जी मुझे सुना दीजिए मशहूर सिंगर लता जी की आवाजों में। फिल्म का नाम है क्रांति और गाने का बोल है मारा ठुमका बदल गई चाल मितवा। इस
0: जी
1: गाने को लिखा है संतोष आनंद जी ने और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी
0: लक्ष्मीकांत
1: ने
0: प्यारेलाल जी। जी
1: फिल्म।
0: जी आप हमेशा पूरी जानकारी के साथ आते हैं आशुतोष जी।
1: मैम जी देखिए, ये हम लोग का जैसा साधारण इंसान नहीं है लिरिक्स और म्यूजिक डायरेक्टर,
0: बिल्कुल
1: तो उन लोगों को तो याद करना चाहिए।
0: जी।
1: ये तो लीजेंड है, ये तो करोड़ों में दो चार बनता है ऐसा।
0: तो आशुतोष जी बताइए, आपके वहाँ का मौसम का क्या हाल चाल है?
1: मौसम तो
0: बरसात
1: मैम
0: हो
1: जी
0: रही है या?
1: हाँ जी, लास्ट 4-5 दिन काफी धूप निकला था, काफी गर्मी था, लेकिन आज आसमान में बादल है।
0: तो थोड़ी
1: थोड़ी देर
0: गर्मी से
1: पहले
0: राहत मिली
1: थोड़ा
0: है
1: काफी मिला है मैम जी।
0: जी
1: अभी तो उतना गर्मी नहीं है, लगभग 30-31, बहुत कम है अभी। सुहाना मौसम
0: तो चलिए, आपका गीत भी हमें मिल चुका है, सब मिलकर सुनते हैं आपके पसंद का गीत।
1: और मैम जी आपका इजाजत हो तो मैं 2-4 दोस्तों भी याद करूंगा।
0: जी, नाम ले लीजिए।
1: पहले सुनेंगे विजयपुरम से मोनिका दीदी और सप्तमी विष्णु कुंडू दीदी और पूर्णिमा दीदी, और सुनेंगे मध्य प्रदेश से भगवान सिंह परमार जी और अविनाश तेली जी, त्रिपुरा से राम बाबू शर्मा, राम बाबू मालवी जी, केसरी सिंह राजपूत, मांगीलाल जी, और नेटवर्क का सारे श्रोताओं को लेकर सुनना है। आप भी सुनेंगे मैम जी।
0: जी जरूर, चलिए सुनते हैं।
1: नमस्कार।

0: चलिए जुड़ते हैं हमारे अगले कॉलर से। हेलो डियर फ्रेंड।
1: हेलो मैम, गुड आफ्टरनून मैम।
0: जी गुड आफ्टरनून जी।
1: मैं
0: अपना
1: ससन खाई से मोनिका बोल रही हूँ।
0: मोनिका जी बताइए कैसे हैं आप।
1: मैं तो बहुत अच्छी हूँ मैडम, आप कैसी हैं? बहुत दिनों के बाद मेरी कॉल आया।
0: जी मैं भी अच्छी हूँ। तो बहुत दिनों बाद कॉल आया है, तो कोई गीत तो सोच रखा होगा, तो बताइए कौन सा गीत आज आप सुनेगी।
1: आज आपका पसंद का गाना सुना दीजिए।
0: अच्छा मेरे पसंद का गाना, ठीक है।
1: जी
0: तो बताइए मोनिका जी अभी इस वक्त क्या कर रही थी आप।
1: मैं लेट लेट के आपका प्रोग्राम सुन रही थी।
0: तो चलिए कॉल भी आ गया आपको। और
1: जी मैडम बहुत धन्यवाद।
0: और बताइए आपके वहाँ मौसम कैसा है, बारिश हो रही है क्या।
1: नहीं अभी तो बारिश नहीं है, सुबह हुई थी थोड़ा। जी
0: जी
1: दोस्तों
0: तो मोनिका
1: का
0: जी,
1: नाम लेना चाहती हूँ, बहुत
0: हाँ,
1: धन्यवाद।
0: दोस्तों का नाम ले लीजिए।
1: सबसे पहले तो आप है
0: धन्यवाद।
1: आकाशवाणी परिवार से सभी सदस्यों के साथ मेरी भांजी दीपक दस सर बोधनी मैडम, शादीपुर से सप्तमी कुंड दीदी है, स्कूल लाइन से पूर्णिमा मैडम है, बिम्बरीगंज से शिप्रा है, बमसर से जया दीदी है, पश्चिम बंगाल से गणेश दास जी है, नैनीचंद जी है, राकेश जी है, बसंती लाल जी है, और दिल्ली से धर्मवीर भैया जी है, उनके दो बच्चे हैं, और पंजाब से पुरुषोत्तम अंकल है, और त्रिपुरा से आशुतोष देवनाथ भैया है, और उनके वाइफ संगीता देवनाथ।
0: तो मोनिका जी चलिए आपको सुनवाते हैं बाबुल फिल्म का गीत, सोनू निगम और श्रेया
1: थैंक यू।
0: घोषाल की।

0: कानूनी सहायता टेलीलॉ के ऐप वेबसाइट www.tele-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड ऑफिसर बनने के लिए AFCAD 2 of 2026 के आवेदन 20 मई से खुले हैं। विवरण के लिए विजिट करें afcat.edcil.co.in पर।
2: हेलो डियर फ्रेंड।
3: हेलो
2: हेलो जी, अपना परिचय दीजिए।
3: जी मैम, हम धेमाजी असम जुनाई निशा की सपोरी से बिमल उसोर बोल रहा हूँ मैम।
2: जी बिमल जी, बहुत बहुत स्वागत है। मेरी आपसे पहली बार बात हो रही है।
3: जी मैम, आगे भी मिला था हम।
2: अच्छा,
3: एक बार मिलाए फिर आप मिलाए मैम।
2: जी तो बिमल जी बताइए, क्या करते हैं आप?
3: जी मैम, हम मेरा दुकान है, सिलाई का काम करता हूँ हम।
2: सिलाई का काम करते हैं आप? अच्छा,
3: अभी दुकान में रह के आप लोग का प्रोग्राम सुन रहा हूँ मैम।
2: तो कैसे लगते हैं कार्यक्रम?
3: प्रोग्राम सुन के बहुत अच्छा लगता है मैम।
2: अच्छा, और बताइए परिवार में कौन कौन है?
3: परिवार में मैम मेरा है, दो लड़का है मेरा, और घर का परिवार चार है हम लोग का।
2: जी तो बताइए बिमल जी, आज कौन सा गाना सुनेंगे?
3: जी मैम, हमको सुनना है ये मासूम फिल्म का उससे नाराज नहीं है, ये गाना सुनना है हमको।
2: बहुत ही खूबसूरत गीत है। आपने ये फिल्म देखी है?
3: जी मैम देखा तो, आगे में देखा था, अभी भूल गया, अभी इतना नहीं देखा है अभी।
2: जी और बताइए आपके पसंदीदा गायक कलाकार कौन है?
3: जी हाँ, मेरा तो सब लता मंगेशकर है और अलका याग्निक है, कुमार सानू, ये सब है, और हम लोग का असमीस में है जुबिन गार्ग, सब अच्छा लगता है।
2: जी और बताइए अपने दोस्तों का नाम लेना चाहेंगे आप?
3: जी मैम लेना पड़ेगा, हम लोग का दोस्त सबसे मेरा बेस्ट फ्रेंड अक्का है, ओमबल बसुमतारी, और है फाइकोन मुंडा है, और अंजलि बसुमतारी है, रमेश प्रजापति है, रमेश पात्र है, दुर्गेश लोगनपुरी है, योगेंद्र रंगी है, राकेश है, और धर्मवीर है, और पूरन वर्मा है, हितेंद्र दास है, योगेंद्र रंगी है।
2: तो बिमल जी चलिए सारे दोस्तों के साथ सुनिए,
3: और आपको भी मैम, आपको भी दिल का कंधा कटो सबके लिए मैम।
2: जी चलिए सुनवाते हैं आपके पसंद का ये गीत।
3: जी धन्यवाद मैम, हमको फोन करने के लिए धन्यवाद।
2: जी धन्यवाद।

0: हेलो डियर फ्रेंड।
1: हेलो डियर फ्रेंड,
0: हेलो जी, नमस्कार। आपका
1: मैं
0: नाम?
1: मेरा नाम हितेंद्र दास बोल रहा हूँ, आसाम से। हाँ,
0: जी हितेंद्र दास जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
1: आपको भी स्वागत है और थैंक यू।
0: जी बताइए, इस वक्त क्या कर रहे थे आप?
1: इस वक्त मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, घर में बैठा हुआ हूँ।
0: हमारे कार्यक्रम सुन रहे होंगे
1: हाँ,
0: जी। जो बताइए अपने बारे में, क्या करते हैं आप?
1: तो बच्चों को पढ़ाता हूँ और एक प्राइवेट स्कूल में टीचिंग करता हूँ।
0: जी, आज बताइए कौन सा गाना सुनेंगे आप?
1: बॉर्डर फिल्म का संदेश से चिट्ठी आती है, ये सुना दीजिएगा ना।
0: बहुत ही प्यारा गीत है
1: हाँ,
0: जी।
1: और मेरा साथ सुनने वाला है त्रिपुरा से अविनाश तेली, उड़ीसा से नारायण प्रधान और झारखंड से शिवाजी।
0: तो चलिए सारे दोस्तों के साथ सुनवाते हैं आपको ये गीत
1: थैंक यू मैम।
0: जी।

0: हेलो डियर फ्रेंड
1: जी। हेलो मैडम जी, अस्सलाम वालेकुम
0: जी, अपना परिचय दीजिए।
1: जी आसिफ खान, दक्षिण गांव, सुकुल बाजार, उत्तर प्रदेश, अमेठी जिला, लखनऊ के पास से।
0: जी बताइए आसिफ खान जी, कैसे हैं आप?
1: ठीक है हाँ मैडम जी।
0: और बताइए आपके वहाँ क्या, मतलब अभी कैसे हाल चाल है, मौसम कैसा है आपके वहाँ का?
1: अभी ठीक है मौसम, मगर इस वक्त हम सूरत में हैं, पढ़ाई करते हैं।
0: जी। और
1: और आपके वहाँ सब अच्छा है मैडम जी?
0: जी यहाँ सब ठीक ठाक है। और आसिफ जी बताइए, आज कौन सा गाना सुनेंगे आप?
1: हमको विवाह का सुनवा दीजिए, हमारी शादी में ऐसे गाना है।
0: हमारी शादी में, जी बहुत ही प्यारा गीत है। और आपने ये गीत ही क्यों चुना है?

0: I see.
1: जी चलिए, आपका पसंद का गीत है तो हम सब मिलकर सुनते हैं विवाह फिल्म का ये गीत।
0: जी
1: जी
0: हम
1: चलिए
0: कुछ कहना था आपसे, हम
1: जी बोलिए।
0: नाम लेना चाहते हैं एक भाई का, बिहार के हैं, छपरा जिला के भाई हमारे,
1: जी
0: उनको ये रिक्वेस्ट है गाना
1: जी
0: अफजल भाई का।
1: तो चलिए सुनवाते हैं ये गीत।
0: जी बहुत शुक्रिया।

0: हेलो डियर फ्रेंड। हेलो
1: हेलो, गुड आफ्टरनून मैडम।
0: जी, गुड
1: आप कैसी
0: आफ्टरनून।
1: हो?
0: जी मैं अच्छी हूँ जी। आपका नाम, कहाँ से बोल रही हैं आप?
1: मेरा नाम शांतना वारे, जी विजयपुरम डॉलीगंज से बात कर रही हूँ।
0: तो आप हमारी आखिरी कॉलर हैं, समय भी ज़्यादा नहीं है, तो गाना बताइए, कौन सा
1: जी जी
0: गीत
1: जी जी
0: सुनेंगे
1: जी
0: आप?
1: आज बाजीगर फिल्म का किताबें बहुत सी,
0: जी।
1: ये गाना सुना दीजिए।
0: तो चलिए, मैंने गाना ढूंढ लिया है, सुनते हैं आपके पसंद का ये गीत,
1: ठीक
0: बाजीगर
1: है
0: फिल्म
1: मैडम,
0: का।
1: मेरे को कॉल करने के लिए थैंक यू।
0: जी, धन्यवाद।
1: ओके।

दोस्तों, कुछ सितारे आसमान से ओझल होकर ज़रूर खो जाते हैं, लेकिन उनकी रोशनी बरसों तक दिखाई देती रहती है। सुमन कल्याणपुर जी भी संगीत के ऐसे ही एक सितारा थी, जिनकी मधुर आवाज़ ने अनगिनत दिलों को रोशन किया। आज का यह विशेष कार्यक्रम समर्पित है भारतीय संगीत जगत की उस मधुर, शालीन और सदाबहार आवाज़ को, जिनकी गायकी ने दशकों तक श्रोताओं के दिलों को छुआ। सुमन कल्याणपुर। बीते कल 31 मई को 89 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया और उनके जाने के साथ ही भारतीय फिल्म संगीत का एक स्वर्णिम अध्याय मानो शांत हो गया। दोस्तों, सुमन कल्याणपुर केवल एक पार्श्व गायिका नहीं थी, बल्कि वे उस दौर की पहचान थी जब गीतों में सादगी, भावनाओं में गहराई और सुरों में आत्मा बसती थी। 28 जनवरी सन 1947 में ढाका में जन्मी सुमन जी का परिवार बाद में मुंबई आ गया। बचपन से ही संगीत के प्रति उनका झुकाव था और उन्होंने फिल्मी शास्त्रीय संगीत की शिक्षा प्राप्त की। धीरे धीरे उनकी आवाज़ फिल्मी दुनिया तक पहुंची और फिर उन्होंने हिंदी, मराठी, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, उड़िया समेत कई भाषाओं में अपनी मधुर आवाज़ का जादू बिखेरा।

फिल्म संगीत की दुनिया में उनका सफर 1950 के दशक में शुरू हुआ और 60 तथा 70 के दशक में वे लाखों दिलों की धड़कन बन गई। नाना करते प्यार तुम्हें से, तुमने पुकारा और हम चले आए। आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे, ना तुम हमें जानो, और पर्वतों के पेड़ों पर जैसे अनगिनत गीत आज भी संगीत प्रेमियों

फिल्म संगीत की दुनिया में उनका सफर 1950 के दशक में शुरू हुआ और 60 तथा 70 के दशक में वे लाखों दिलों की धड़कन बन गई। नाना करते प्यार तुम्हें से, तुमने पुकारा और हम चले आए। आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे, ना तुम हमें जानो, और पर्वतों के पेड़ों पर जैसे अनगिनत गीत आज भी संगीत प्रेमियों की यादों में ताज़ा है।

0: मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। शाम के 4 बजे हैं। आज की हमारी दूसरी सभा में हम अपने सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिवादन करते हैं। सभा के आरंभ में प्रस्तुत है निकोबारी कार्यक्रम।
1: सिलना मिनी रॉक रहमांग इंगरे तका लमक तेलंगी मीडियम वेव 438.6 मीटर एक 684 किलोहर्ट्ज़ रामांग एलंगी आकाशवाणी श्री विजयपुरम अंगी निकोबारी प्रोग्राम तहांग
2: kale evanu ye hong yewang jekkarel kui cheku ala ko aw kare at kale en min ka nga ya ne hinga malaria in wahan lo ten nga malaria in wahle ta kina pa hi antangam anopheles jeng kan miso ke ye hi ati la ren le ne reng ai mi ho ai poe hangen wahawa unat majerta anu wa ye hi haro un he ke nup te yu nga mak nei ta si pati hi unat le nen ku pi kui nu tanki he kin ku kui nu phanri ye hi yi wa tanga wanu ye ila ren ai hamak tare e chek ka maham re mi ho in to ho mi ho in nga chol ren de ai lal nga malaria in wa ha ko la ala re ai yu nga nga malaria lamakte ingam state health society an ngi min ka taloni
1: min ka talun hi ingla harap asangam world bicycle day take karen min iblino yala ngojun chinge tenet kainera nai taful ngam directorate of sports and youth affairs andaman and nikobar administration naholuran tangam sports authority of india नवीलरन किनेकेन गम मेका फिट इंडिया साइकिल रैली इप्सिना तालांगो जून जिंगेत तनेट कैने रनाय ताफूल गम साइकिल रैली नो ओपन टू ऑल इन ही आई आंकुंगी पानम टूरिस्ट यूथ स्कूल द कॉलेज स्टूडेंट्स तमे पेरेंट्स इकिनेकेन गम रैली में नलितकु नेदाजी स्टेडियम श्री विजयपुरम इद सटकंडो तबहु

0: ngajin dai hangam mana adin ke ke tikenye Lucas John Temeri en aritub ha yang adil ngang ne sindangamu he kinure changrong itaka saat ita fen kanro tela harap ngayen
1: अभी आप निकोबारी कार्यक्रम सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये श्री विजयपुरम केंद्र है। समय हुआ है शाम के 4:30। सुगम संगीत।

सुगम संगीत के कार्यक्रम में अभी आप गुलाम अली को सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 4:40 हुए हैं। अब सुनिए हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। पहले आज के शेष कार्यक्रम, अब से कुछ ही पलों में यानी 4:45 पर आप सुनेंगे फिल्मी गीतों का कार्यक्रम बहारों की शाम। 5 बजे तमिल कार्यक्रम में आकाशवाणी के 90 सालों के अवसर पर वार्ता आप सुनेंगे। बंगला कार्यक्रम में 5:30 पर विश्व दूध दिवस पर वार्ता होगी। संध्या 6 बजे कृषि जगत में प्रायोजित कार्यक्रम होगा कृत्रिम गर्भदान, हर किसान की नई उड़ान का 8वीं कड़ी। इसके तहत वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर लाहवेल नीनाथ साहेब राव से भेंट वार्ता होगी। विषय रहेगा कृत्रिम गर्भदान के लिए सरकारी योजनाएं और समर्थन। 6:30 पर कार्यक्रम होगा पॉप मसाला। मौसम की जानकारी और जलयानों की यात्रा कार्यक्रम से हम आपको अवगत करवाएंगे 7:15 पर। 7:20 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया। युववाणी के तहत 7:30 पर पुराने फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होगा यादें। रात 8 बजे सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में विभिन्न विषयों पर आधारित विशेष द्विभाषी कार्यक्रम श्रृंखला आप सुनेंगे, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। रात 8 बजे 8:30 पर रोजगार समाचार और गौरव गान सुनवाया जाएगा। रात 10 बजे फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होगा संदेशे आते हैं। इन कार्यक्रमों के अलावा रात 9:15 पर स्पॉटलाइट, 9:30 पर पब्लिक स्पीक होगा, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। इसके अतिरिक्त रात 10 बजे FM 100.9 MHz पर विविध भारती मुंबई से प्रायोजित कार्यक्रम होगा छाया गीत। ये थे हमारे केंद्र से आज के शेष कार्यक्रम। अब एक नजर हमारे कल के कार्यक्रमों पर। कल हमारी प्रातःकालीन सभा आरंभ होगी सवेरे 5:23 पर। 5:30 पर अनमोल विचार, तत्पश्चात आप सुनेंगे भक्त गीतों का कार्यक्रम प्रभाती वंदना। एग्रीटिप्स में 5:55 पर जानकारी का विषय रहेगा भूमि की उर्वरा शक्ति कैसे कायम रखें। 6:55

15 मिनट पर इंद्रधनुष कार्यक्रम केंद्रित होगा जन्मदिन शीर्षक पर। रामचरितमानस गान का कार्यक्रम का समय रहेगा 6:30। वतन के गीत आप सुनेंगे 6:40 पर। देशभक्ति गीतों पर आधारित कार्यक्रम देश रागिनी का समय रहेगा 7:15, जबकि FM 100.9 MHz पर आप सुनेंगे कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। 7:30 पर प्राइमरी चैनल और FM 100.9 MHz पर आकाशवाणी श्री विजयपुरम के 63वीं वर्षगांठ पर भेंट वार्ता पर आधारित विशेष कार्यक्रम होगा 63 वर्षों की सुरमई यात्रा। सुगम संगीत के कार्यक्रम में 8:30 पर फनकारा होंगी सलमा आगा। फिल्मी गीतों का कार्यक्रम तराने सुहाने का समय रहेगा 9:00। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में 9:30 पर प्रिया क्रिस्टस का गायन आप सुनेंगे। 10:00 फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होगा गीत गाता चल। प्रायोजित कार्यक्रम NCERT का समय रहेगा कल दिन के 11:00। 11:30 पर कार्यक्रम होगा चित्र गीत। 12:00 तेलुगु कार्यक्रम में आप सुनेंगे लाइट म्यूजिक। मलयालम कार्यक्रम में 12:30 पर आकाशवाणी के 90 सालों के विशेष अवसर पर श्री सदाशिवन से भेंट वार्ता होगी। 1:10 पर सुगम संगीत के कार्यक्रम में फनकारा होंगे पंकज उधास। आपके नाम फिल्मी पैगाम ये कार्यक्रम आप सुनेंगे 1:30 पर। 2:30 पर मौसम की जानकारी तत्पश्चात प्राइमरी चैनल पर हमारी पहली सभा संपन्न होगी, जबकि FM 100.9 MHz पर आप सुनेंगे कार्यक्रम नॉन स्टॉप म्यूजिक। यूं ही गाते रहो कार्यक्रम का समय रहेगा 3:30 पर। कल हमारी दूसरी सभा आरंभ होगी 4:00 निकोबारी कार्यक्रम के साथ, जिसमें सूचनाओं के अलावा आकाशवाणी के 90 वर्षों की सालगिरह पर वार्ता आप सुनेंगे। 4:30 पर सुगम संगीत कार्यक्रम में फनकार होंगे अशोक खोसला। हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में हम आपको बताएंगे 4:40 पर। 4:45 पर कार्यक्रम होगा बहारों की शाम। 5:00 तमिल में महिलाओं के लिए कार्यक्रम होगा। बंगला कार्यक्रम का समय रहेगा 5:30। संध्या 6:00 किसान वाणी के तहत आकाशवाणी की 90 साल वर्षगांठ पर विशेष कार्यक्रम होगा। फिल्मी गीतों का कार्यक्रम बहारों की शाम का समय रहेगा संध्या 6:30 पर। 7:15 पर हम आपको मौसम और जलयानों की यात्रा कार्यक्रम के से अवगत करवाएंगे। कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया का समय रहेगा 7:20। 7:30 पर युवाणी के तहत आकाशवाणी श्री विजयपुरम के स्थापना दिवस पर उपलक्ष्य में विशेष कार्यक्रम आप सुनेंगे। 8:00 फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होगा चित्रपट संगीत। 10:00 फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होगा संदेशे आते हैं। इन कार्यक्रमों के अलावा 9:15 पर स्पॉटलाइट, 9:30 पर मनी टॉक, 9:45 पर मंथन होगा, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। इसके अतिरिक्त 10:00 FM 100.9 MHz पर विविध भारती मुंबई से प्रायोजित कार्यक्रम होगा छाया गीत। ये थे हमारे केंद्र से आज के शेष व कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। अब सुनिए फिल्मी गीतों का कार्यक्रम बहारों की शाम। कार्यक्रम का आगाज हम कर रहे हैं 2 दिलों का संगम फिल्म के इस गीत के साथ, जिसे अनुराधा पौडवाल और विनोद राठौर के युगल स्वरों में बोल फैज अनवर के और संगीत दिया है मिलन सागर ने।

अभिजीत और सोनू निगम के आवाज़ों में ये अगला गीत है मुकाबला फिल्म से, बोल कुलवंत जैन के, और धुन तैयार किया है दिलीप सेन और समीर सेन ने।

मुकाबला फिल्म के इस गीत के साथ ही फिल्मी गीतों का कार्यक्रम बहारों की शाम अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5 बजे हैं। पेश है तमिल कार्यक्रम

0: my energy,
1: our energy.
2: Avi parakuti kada ava vandadana.

अभी आप तमिल कार्यक्रम सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय शाम के 5:30 हुए हैं। प्रस्तुत है बंगला कार्यक्रम।

श्रोताओं, ये था बंगला कार्यक्रम। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। संध्या के 6 बजे हैं। पेश है किसानों के लिए कार्यक्रम कृषि जगत।

0: कृषि जगत कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है।
1: अरे वाह, तुम्हारी गाय तो इस बार खूब दूध दे रही है। राज क्या है भाई?
2: राज नहीं, समझदारी है। मैंने AI अपनाया।
1: AI? ये क्या है?
2: AI यानी अच्छी नस्ल और समय पर गर्भाधान।
1: मतलब कम खर्च में ज्यादा फायदा।
2: बिल्कुल, दूध भी बढ़ा, हर साल बछड़ा भी, बीमारियां कम हुई और आमदनी डबल।
3: हाँ, AI अपनाओ, खुशहाली लाओ, अच्छी नस्ल से लाभ कमाओ।
0: पशु चिकित्सक की सलाह लें, समय पर कृत्रिम गर्भाधान कराएं और पशुपालन को बनाएं मुनाफे का मजबूत साधन। कृत्रिम गर्भाधान, हर किसान की नई उड़ान। किसान साथियों, आज लाइव फोन इन कार्यक्रम के माध्यम हम आपको सुनवाने जा रहे हैं पशुपालन एवं पशु चिकित्सा सेवा विभाग द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम कृत्रिम गर्भाधान, हर किसान की नई उड़ान की 8वीं कड़ी। लाइव फोन इन कार्यक्रम का विषय है कृत्रिम गर्भाधान के लिए सरकारी योजनाएं और समर्थन। इस विषय से संबंधित जानकारी हम देंगे पशुपालन विभाग के वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर नीनाथ लहोले। विषय से संबंधित प्रश्न पूछने के लिए हमारे किसान भाई कॉल कर सकते हैं इस नंबर पर। नंबर है 03192232558। हम पुनः इस नंबर को दोहराते हैं 03192232558। लीजिए सुनिए कृत्रिम गर्भाधान, हर किसान की नई उड़ान की 8वीं कड़ी।
4: नमस्कार साथियों, पशुपालन एवं पशु चिकित्सा विभाग द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम कृत्रिम गर्भाधान, हर किसान की नई उड़ान की 8वीं कड़ी में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज का विषय है कृत्रिम गर्भाधान के लिए सरकारी योजनाएं और समर्थन। इस विषय पर विस्तार से बताने के लिए हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर नीनाद लहले। डॉक्टर साहब, सबसे पहले कार्यक्रम में हम आपका स्वागत करते हैं।
5: धन्यवाद मैडम।
4: साथियों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि ये लाइव फोन इन प्रोग्राम है।

0: इस विषय से संबंधित आपके मन में कोई सवाल हो तो आप डॉक्टर साहब से पूछ सकते हैं। डॉक्टर साहब, जैसा कि हमारा आज का विषय ही है पशुपालन एवं पशु चिकित्सा पर जो कृत्रिम गर्भाधान होता है, तो हम सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे कि कृत्रिम गर्भाधान या AI क्या होता है?
1: जी मैडम, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन या फिर कृत्रिम गर्भाधारण, जिसे हम AI भी कहते हैं, ये एक वैज्ञानिक प्रजनन तकनीक है जिसमें उच्च गुणवत्ता वाले सांड या
0: जी
1: फिर बुल का सीमेन या वीर्य गाय या भैंस में उचित समय पर डाला जाता है। इससे क्या होता है, इससे बेहतर नस्ल के बछड़े पैदा होते हैं, दूध उत्पादन बढ़ता है और पशुपालक की आय में वृद्धि होती है।
0: अच्छा, एक कॉलर हमसे जुड़ चुके हैं डॉक्टर साहब, पहले हम ले लेते हैं।
1: ठीक है।
0: हेलो
1: हेलो
0: जी,
1: जी,
0: नमस्कार। नमस्कार,
1: नमस्कार।
0: कहाँ से बोल रहे हैं, कौन बोल रहे हैं?
2: मैं आशीष बात कर रहा हूँ, शिमला हिमाचल प्रदेश।
0: अच्छा, शिमला हिमाचल प्रदेश से आप बोल रहे हैं। जी, पूछिए अपना सवाल डॉक्टर साहब से।
2: जी डॉक्टर साहब को मेरा नमस्कार।
1: नमस्कार।
2: जी सर, मेरा एक महत्वपूर्ण सवाल है। जैसे कि कोई भी पशु गर्भ धारण करता है
1: जी
2: तो मेरा इसमें एक प्रश्न रहता है, तो उनकी जो है जब बछड़ा वो देता है तो उनके लिए खान पान का किस तरह से ध्यान रखना चाहिए और पानी का व्यवस्था क्या होनी चाहिए पशु के लिए?
1: अच्छा, आप पशु माँ के बारे में बात कर रहे हैं या बछड़े के बारे में बात कर रहे हैं?
2: दोनों के बारे में बात कर रहा हूँ। जैसे कि थोड़ी कई बार जो है पानी किस तरह से पिलाना चाहिए जब, क्योंकि माँ माँ गर्भ धारण करती है, क्योंकि ठंडा या थोड़ा शील गर्म से पिलाना चाहिए, और खाने का जो है किस तरह से जो है प्रावधान होना चाहिए?
1: जी, खाने का प्रावधान आप ही, अब माँ के लिए बोलता हूँ, अगर गर्भधारण में अब अभी जो गाय है पेट में, अगर उसका शिशु पल रहा है उसको, तो उसका नॉर्मल वैसा ही जैसा रूटीन में चारा देते हैं हम, जैसे सूखा चारा, हरा चारा, कॉन्सेंट्रेट फीड, ये संतुलित मात्रा में होनी चाहिए। और आपको वो कोशिश करना है कि आपको बच्चा देने के बाद 300 दिन तक ही आपको दूध उसका निकालना है, ठीक है? कुछ महीनों के लिए आपको उसको ड्राई पीरियड में रखना पड़ेगा, ठीक है? और बीच बीच में गर्भवती माँ को जैसे कैल्शियम हो गया, फास्फोरस, कोई मिनरल सप्लीमेंट्स है, वो भी बीच बीच में आप उसे दे दीजिए,
2: जी तो इसमें
1: दिया
2: एक
1: कीजिए।
2: बात और जोड़ना चाहता हूँ, जैसे कि जो हम जैसे काले चने हैं या कोई है, क्या उसमें आहार में उसको शामिल कर सकते हैं
1: बिल्कुल
2: हमारे
1: बिल्कुल। काले
2: गर्भ
1: चने
2: धारण में?
1: को आप ना, काले चने को आप वैसे ही ना दीजिए, आप काला चना को भिगा के, जैसे एक बड़ी गाय है ना, तो काले चने को रात भर भिगाओ, दूसरे दिन तक उसमें अंकुर आता है, ठीक है? अंकुरित चना आता है वो, आप अंकुरित चना उसको 200 से 250 ग्राम आप उसको रोज खिला सकते हो, बट अंकुरित चना, ठीक है? पूरा गोटा चना नहीं खिलाना आपने। जी, समझ गए?
2: जी, समझ गए, धन्यवाद।
1: धन्यवाद जी।
0: डॉक्टर साहब, अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि हमारे इस द्वीप समूह में कृत्रिम गर्भाधान कितना महत्वपूर्ण कारगर है?
1: जी, हमारे द्वीप समूह में उच्च गुणवत्ता वाले ब्रीडिंग बुल्स की उपलब्धता
0: जी
1: काफ़ी सीमित है। AI के माध्यम से हम देश के सर्वश्रेष्ठ जेनेटिक मटेरियल को यहाँ के पशुओं तक तो पहुँचाते हैं।
0: अच्छा
1: इससे क्या होता है, इससे नस्ल तेज़ी से सुधार होता है, नस्ल में तेज़ी से सुधार होता है
0: जी
1: और दूध उत्पादन में भी बढ़ावा मिलता है।
0: और किसानों को तो दूध उत्पादन ही
1: हाँ
0: सबसे
1: जी,
0: बड़ा, उनका व्यवसाय में यही सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है।
1: जी।
0: सर, सेक्स सॉर्टेड सीमेन क्या है और इसके क्या फायदे हैं, ये जानना चाहेंगे।
1: सेक्स सॉर्टेड सीमेन, ये भी कृत्रिम गर्भाधारण से ही डाला जाता है।
0: जी
1: ये एक विशेष तकनीक है जिससे फीमेल काफ या फीमेल बछड़े पैदा होने की जो लगभग 90% उसकी ये बढ़ जाती है, उसकी मतलब कंडीशंस 90% तक बढ़ जाती है।
0: जी
1: मतलब हम जब AI करेंगे सेक्स सॉर्टेड सीमेन से, तो 90% चांसेस है कि इसमें फीमेल्स बछड़े ही पैदा हो। अभी
0: अच्छा
1: फार्मर्स का ऐसा होता है कि अगर फीमेल बछड़े पैदा हो रहे हैं तो ये वही आगे चल के दूध देने वाली गाय बन जाएगी, तो इससे फार्मर्स को ही काफ़ी प्रॉफिट मिल सकता है।
0: अच्छा डॉक्टर साहब, एक कॉलर हमसे जुड़ चुके हैं, आइए उनसे पहले हम बात कर लेते हैं। हेलो
3: हेलो,
0: जी, बोलिए, कौन बोल रही है,
3: मैं ललिता दास बोल रही हूँ मैडम।
0: कहाँ से बोल रही है?
3: मैं मंगलूटान से बोल रही हूँ।
0: ललिता मंगलूटान से बोल रही है, पूछिए डॉक्टर साहब
3: जी
0: से।

0: प्रश्न पूछिए।
1: जी नमस्कार डॉक्टर साहब।
2: नमस्कार नमस्कार मैडम, बोलिए।
1: मेरा सवाल ये है जी, इंद्रो ट्रांसफर जो अंडमान में हो रहा है ना, उसमें जर्सी या शाहीवाल का ही सुई क्यों लगा रहे हैं?
2: ठीक है ठीक है, आपने सवाल ठीक पूछा है मैडम। अभी एम्ब्रो ट्रांसफ़र जो है अभी एक नई आधुनिक तकनीक है, इसे हम भ्रूण प्रत्यारोपण तकनीक भी कह सकते हैं। अभी इसमें हमने जर्सी और सहीवाल का भ्रूण लिया है, मतलब एक उच्च कोट हाई यील्डिंग मतलब तो उच्च कोटि की जो गाय है उसका और एक उच्च कोटि का जो सांड है बुल है उसके संयोग से मिलकर जो भ्रूण तैयार हुआ है वो जर्सी साहीवाल का है। ठीक है, अभी जर्सी आपको सभी को पता है कि जर्सी जो गाय है ये दूध उत्पादन ज़्यादा करती है। ठीक है, और जल्दी से प्रजनन क्षमता उसकी अर्ली मैच्योरिटी के जिसे कहते हैं कि उसकी जो वयस्क जल्दी हो जाती है। ठीक है, और रही बात साहीवाल जो हमारी देश की गाय है, इसमें ना हीट टॉलरेंस मतलब उष्णकटिबंध क्षेत्रों में ये अच्छी कार्य काम करती है, प्रजनन क्षमता अच्छी होती है इसकी, रोग प्रतिकारक शक्ति है, मान देखा जाए तो सहनशीलता है, और अंडमान के क्लाइमेट के हिसाब से जैसे यहाँ पे ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर रहता है तो साहीवाल उसको टॉलरेट कर सकता है, इसीलिए हमने डिपार्टमेंट ने जर्सी साहीवाल का भ्रूण हमने यहाँ पर लेकर आए हैं और उसी का प्रत्यारोपण हम कर रहे हैं। जी
0: तो उम्मीद करते हैं ललिता जी आपको आपके प्रश्न के उत्तर मिल गए होंगे। डॉक्टर साहब, जैसे हम बात कर रहे थे सेक्स सॉर्टेड सीमेन के बारे में, तो इस पर जो है अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा कोई योजना चला रही है, इस बारे में थोड़ा बताएं।
2: जी मैडम, सेक्स सॉर्टेड सीमेन ये कुछ सालों से चल रहा है हमारे यहाँ पे
0: जी,
2: तो हमारा टारगेट है कि आते इन 5 सालों में कम से कम 2000 हमें बछड़ियाँ मिले फीमेल्स। ठीक है, और अभी तक हमें 30 फीमेल्स हमने सेक्स सॉर्टेड सीमेन के यूज़ करके हम तकनीक यूज़ करके हमने ली है।
0: अच्छा,
2: और ये सेक्स सॉर्टेड सीमेन जो तकनीक है ये राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंतर्गत एक्सीलरेटेड ब्रीड इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम या फिर हम शॉर्ट में ABIP भी बोल सकते हैं
0: जी,
2: उसके अंडर में चलाया जा रहा है। इसके तहत सेक्स सॉर्टेड सीमेन का उपयोग किया जा रहा है ताकि अधिक संख्या में फीमेल काव्स उत्पन्न की जा सके और डेयरी विकास को बढ़ावा मिले।
0: तो इस योजना के तहत यही फायदा फार्मर्स को दिए जा रहे हैं। अब हम ये जानना चाहेंगे कि जो अभी जैसे ललिता दास ने प्रश्न किया था आपसे, भ्रूण प्रत्यारोपण जो है वो तकनीक क्या होता है?
2: जी, अभी भ्रूण प्रत्यारोपण अभी हम इसे अभी कॉमन नेम में एम्ब्रो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी भी कहते हैं।
0: जी जी
2: ठीक है, इस तकनीक में मैडम हम पशु में जो हमारी लोकल गाय है
0: जी,
2: उसमें 7 दिन का तैयार एम्ब्रियो या फिर भ्रूण डालते हैं।
0: जी जी,
2: ये भ्रूण पहले से ही एक उच्च गुणवत्ता वाली गाय और एक श्रेष्ठ बैल या फिर सांड के संयोग से तैयार किया जा सकता है, किया जाता है।
0: अच्छा,
2: यानी आपकी स्थानीय या साधारण गाय केवल सरोगेट माँ या पालक माँ का ही काम करेगी।
0: अच्छा,
2: उसके पेट में जो बच्चा बढ़ता है वह अनुवांशिक रूप से उच्च गुणवत्ता वाली डोनर गाय और श्रेष्ठ बैल का बच्चा होता है।
0: मतलब इसका जो तकनीक है यही बताता है।
2: यही बताता है।
0: अच्छा, अब हम अगले प्रश्न पर जाना चाहेंगे, जैसे भ्रूण प्रत्यारोपण तकनीक और आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में क्या अंतर है?
2: अभी आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन जो है
0: जी,
2: इसमें केवल सुपीरियर बुल का ही जेनेटिक्स का उपयोग होता है। मतलब सिर्फ सुपीरियर बुल का ही वीर्य आ रहा है इसमें
0: जी,
2: जबकि एम्ब्रियो ट्रांसफर में क्या होता है, जो भ्रूण प्रत्यारोपण तकनीक है इसमें सुपीरियर बुल या सुपीरियर सांड और सुपीरियर गाय का
0: जी,
2: दोनों का जेनेटिक्स एक साथ मिलता है, इसलिए एम्ब्रियो ट्रांसफर जेनेटिक इम्प्रूवमेंट की दृष्टि से अधिक प्रभावशाली माना जाता है।
0: अच्छा, हमसे कॉलर जुड़ चुके हैं, आइए उनसे पहले हम बात कर लेते हैं। हेलो
3: हेलो
0: जी, कौन बोल रहे हैं?
3: प्रकाश दास बोल रहे हैं मैडम।
0: प्रकाश दास कहाँ से बोल रहे हैं?
3: जी मंगलूटान ही है।
0: मंगलूटान से बोल रहे हैं, पूछिए डॉक्टर साहब से अपना प्रश्न पूछिए।
3: प्रश्न है मैडम कि जो ATP जो गाय को करता ना मैडम
0: जी,
3: जो कितना साल से जो करता है?
2: जो हमारा भ्रूण प्रत्यारोपण एक्चुअली सर्वप्रथम नमस्कार प्रकाश जी, जो

0: एज लिमिट है जो भ्रूण प्रत्यारोपण कर रहे हैं हम, तो उसमें कंडीशन ये रखा गया है कि कंडीशन मतलब हम इसी को ज़्यादा महत्व ये दे रहे हैं कि बच्चा नया नया हो, गाय नया नया हीट में आया हो, हीफर जिसे कहते हैं, या फर्स्ट कार्विंग या सेकंड कार्विंग हो, या एक एक बच्चा दिया वाला हो या दूसरा का बच्चा दिया वाला हो, इनकी थोड़ी सी क्या होता है प्रजनन क्षमता ना थोड़ी ज़्यादा अच्छी होती है। इसीलिए हम लोग ये गाय को ज़्यादा प्रिफर करते हैं भ्रूण प्रत्यारोपण के लिए।
1: जी सर,
0: जी
1: उम्मीद करते हैं आपको अपने प्रश्न के उत्तर मिल गए होंगे। डॉक्टर साहब, यहाँ छोटा सा अंतराल लेते हैं, उसके बाद हम आपसे बातें करेंगे।
2: अरे वाह, तुम्हारी गाय तो इस बार खूब दूध दे रही है। राज क्या है भाई?
3: राज नहीं, समझदारी है। मैंने AI अपनाया।
2: AI? ये क्या है?
3: AI यानी अच्छी नस्ल और समय पर गर्भाधान।
2: मतलब कम खर्च में ज्यादा फायदा।
3: बिल्कुल, दूध भी बढ़ा, हर साल बछड़ा भी, बीमारियां कम हुई और आमदनी डबल।
4: हाँ, AI अपनाओ, खुशहाली लाओ, अच्छी नस्ल से लाभ कमाओ।
5: पशु चिकित्सक की सलाह लें, समय पर कृत्रिम गर्भाधान कराएं और पशुपालन को बनाएं मुनाफे का मजबूत साधन। कृत्रिम गर्भाधान, हर किसान की नई उड़ान।
2: अरे वाह, तुम्हारी गाय तो इस बार खूब दूध दे रही है। राज क्या है भाई?
3: राज नहीं, समझदारी है। मैंने AI अपनाया।
2: AI? ये क्या है?
3: AI यानी अच्छी नस्ल और समय पर गर्भाधान।
2: मतलब कम खर्च में ज्यादा फायदा।
3: बिल्कुल, दूध भी बढ़ा, हर साल बछड़ा भी, बीमारियां कम हुई और आमदनी डबल।
4: हाँ, AI अपनाओ, खुशहाली लाओ, अच्छी नस्ल से लाभ कमाओ।
5: पशु चिकित्सक की सलाह लें, समय पर कृत्रिम गर्भाधान कराएं और पशुपालन को बनाएं मुनाफे का मजबूत साधन। कृत्रिम गर्भाधान, हर किसान की नई उड़ान।
1: डॉक्टर साहब, हम पुनः लौटते हैं और आपसे फिर जानना चाहेंगे कि किसानों को भ्रूण प्रत्यारोपण जो तकनीक है उससे क्या फायदे होते हैं?
0: मैडम, फार्मर्स भ्रूण प्रत्यारोपण से फार्मर्स को ऐसे बछड़े मिलेंगे
1: जी
0: जिनमें अधिक दूध देने की क्षमता, बेहतर प्रजनन क्षमता
1: जी,
0: अच्छी ग्रोथ और अधिक उत्पादकता के गुण होंगे। इससे भविष्य में उनकी आय बढ़ने की संभावना काफ़ी अधिक हो जाती है। अभी जैसे कि यहाँ की एक लोकल गाय है
1: जी,
0: ठीक है, अभी ये एक लोकल गाय दिन में 2 से 3 लीटर दूध दे रही है, ठीक है। अब उसमें हम भ्रूण प्रत्यारोपण करेंगे, भ्रूण प्रत्यारोपण करेंगे जैसे जर्सी और साहीवाल का है, उसके जो बछड़े निकलेंगे, लड़की जो फीमेल बछड़े निकलेंगे, उनकी कैपेसिटी अराउंड 10 से 15 लीटर दूध देने की पर डे की हो जाएगी।
1: अच्छा,
0: ठीक है। इसके वजह से क्या होगा कि किसान की आय कई गुना बढ़ सकती है। यानी मतलब किसान को बिना महंगी नस्ल की गाय खरीदने के उसी गांव में उच्च अनुवंशिक क्षमता वाला बछड़ा प्राप्त हो सकता है। तो इसलिए
1: ये जो है बहुत जरूरी है। जैसे आपने लोकल गाय के बारे में बात की है, अब हम यही जानना चाहेंगे कि क्या लोकल गाय को भी हम भ्रूण प्रत्यारोपण तकनीक कार्यक्रम में शामिल कर सकते हैं?
0: बिल्कुल कर सकते हैं,
1: कर सकते हैं। यानी कोई भी किसान जो है अपने गाय को ला करके इस तकनीक
0: कर सकते हैं, बट उसके लिए भी ऐसा है कि हमारे जो स्पेशलिस्ट है
1: जी,
0: वो पहले हम गाय चेक करते हैं, उसकी जो ओवरीज है, गर्भाशय है, ओवरीज है, वो हमने चेक करना पड़ता है कि उसकी प्रजनन क्षमता को हमको हमें देखना पड़ता है
1: जी, जी।
0: उसके हिसाब से ही हम उसे वो गाय को सिलेक्ट करते हैं। अभी देखा जाए मैडम, तो एक गर्भ का अगर कोई गाय गर्भवती बनती है इस कृत्रिम प्रत्यारोपण से
1: जी,
0: उसका मिनिमम कॉस्ट आता है 50,000।
1: अच्छा,
0: 45 to 50,000 कॉस्ट है उसका। वो कॉस्ट आपका 1.5 लाख तक बढ़ सकता है।
1: अच्छा,
0: बट अंडमान निकोबार में डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड वेटरनरी सर्विसेज ये सुविधा 100% सब्सिडी में दे रही है। 100% सब्सिडी में फार्मर्स को कोई कॉस्ट बेयर करने की जरूरत नहीं है। तो ये बहुत डिपार्टमेंट की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और ये बहुत बड़ी मुहिम चल रही है
1: जी। जी, इस बारे में हम थोड़ी आपसे और जानकारी लेना चाहेंगे। पहले हम एक कॉलर से बात कर लेते हैं। हेलो,

0: हेलो
1: जी बोलिए, कौन बोल रहे हैं?
0: मैडम, हम भाविन दास बोल रहे हैं,
1: बाबिन दास जी कहाँ से बोल रहे हैं?
0: मॉल्टन से। डॉक्टर
1: मंगलूटान से बोल रहे हैं। बोलिए डॉक्टर साहब से, आप अपना प्रश्न पूछिए।
0: साहब, सर
2: नमस्कार। नमस्कार बाबिन जी।
0: नमस्कार सर। सर, हमारे गाय को सेक्सलेस हीमन लगाने के बाद अगर कंसीव ना हो तो क्या सुविधा मिल सकती है हम लोगों को?
2: आप ये कह रहे हैं कि सेक्स सॉर्टेड सीमेन का अगर आप से आप अपने गाय को गर्भधारणा करवाने की कोशिश करते हैं और अगर वो फेल होता है
0: जी
2: तो उसमें आपको क्या सुविधाएं प्राप्त होती है? जी ठीक है, ये
0: जी
2: महत्वपूर्ण बात आपने पूछी है और ये मैं सारे जनता के संचार सारे पशुपालकों को इसके बारे में पता होना चाहिए। सेक्स सॉर्टेड सीमेन ये एक्चुअली हम लोग डोर टू डोर स्टेप डिलीवरी है, बट इसके लिए हम 250 रुपीज़ चार्ज करते हैं। इसके पहले भी आपके यहाँ पे शो हुआ था, उन्होंने भी कहा था कि इसके मेनलैंड में बहुत ज़्यादा चार्जेज है, बट यहाँ पे हम सिर्फ 250 रुपीज़ डिपार्टमेंट चार्ज कर रहा है। अभी अगर फर्स्ट टाइम अगर हमने सुई डाला है, इंसेमिनेशन किया है, अगर वो फेल होता है तो उसमें आपको पैसा नहीं मिलेगा वापस। अगर सेकंड टाइम उसी गाय को डाला है, इंसेमिनेशन किया है, अगर वो दोनों टाइम फेल हो गया है तो आपको 500 रुपीज़ रिफंड मिलेगा। ठीक है, अभी जैसे मैंने कहा कि 90% चांसेस है फीमेल बच्चा पैदा होने की, पर अभी आपको समझ लो पहला इसमें आपको लड़का बच्चा पैदा हुआ है तो आपको पैसा नहीं मिलेगा। अगर दूसरे टाइम भी उसी गाय को लड़का बच्चा पैदा हुआ है तो आपको 250 रुपीज़ का रिफंड होगा। तो आपका ये मेरे ख्याल से आपके सवाल का जवाब मिल गया बाबिंदर बाबिंदर
0: जी सर,
2: जी।
1: बहुत बहुत धन्यवाद बाबिंदास जी। सर, जैसे हम बात कर रहे थे मुहिम के बारे में, गांव में आपके विभाग द्वारा इस तरह की मुहिम चलाई जाती होंगी
2: बिल्कुल
1: और
2: बिल्कुल।
1: किसानों को, जो किसान है वो अवेयर होते हैं या समझते हैं, आप तक आते हैं आपकी बात को? जैसे आप गांव में, जैसे कोई मेला लगता है या गांव का कोई मीटिंग करते हैं तो गांव वासियों को आप जमा करके इस बारे में बताते होंगे,
2: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
1: तो क्योंकि हर घर तक पहुंचना जो
2: हाँ,
1: है
2: अभी
1: सो।
2: आप देखिए ये जो भ्रूण प्रत्यारोपण तकनीक के
1: जी
2: बारे में बता रहा हूँ, अभी ये स्टार्ट हुए अराउंड 3 to 4 months हो गए, फ़रवरी 10 से हमने शायद स्टार्ट किया था।
1: जी जी
2: तो अभी तक हमें 20 पॉजिटिव 20 प्रेगनेंसी कंफर्म मिली है,
1: अच्छा,
2: तो कितने फास्ट हो रहा है ये,
1: फास्टर, यानी कि सफल है
2: बिल्कुल
1: कार्यक्रम,
2: सफल है, बिल्कुल
1: सफल है।
2: सफल हो रहा
1: किसानों को जो है, ये जो किसान क्रेडिट कार्ड होता है,
2: है।
1: इसका पशुपालन विभाग में क्या महत्व है, ये जानना चाहेंगे।
2: मैडम, किसान क्रेडिट कार्ड से पहले तो ऐसा होता था कि एग्रीकल्चर सेक्टर में ही किसान क्रेडिट कार्ड की
1: जी
2: तहत
1: जी
2: लोन मिलता था,
1: जी
2: बट अभी एनिमल हस्बेंड्री में भी जो एनिमल हस्बेंड्री सेक्टर से जो जुड़े पशुपालक हैं
1: जी
2: उन्हें वो सुविधा उठा सकते हैं। इसके माध्यम से डेयरी जैसे गाय पालन, बकरी पालन, सुअर पालन, मुर्गी पालन, ये जो लोग पालते हैं, किसान पालते हैं, इन्हें कम ब्याज पर लोन प्राप्त कर सकते हैं। लोन का ब्याज बहुत कम होता है, अराउंड 7% होता है इसका। आप जैसे किसान क्रेडिट कार्ड के तहत आपको 50,000 से 5 लाख तक का लोन आपको मिल सकता है।
1: अच्छा।
2: इसका इंटरेस्ट रेट भी काफ़ी कम है, 7% है। अगर पशुपालक इसे जल्दी अगर भर देता है,
1: चुका देते हैं अपने
2: जल्दी चुका
1: लोन को।
2: लेता है, तो
1: जी
2: अराउंड 4% तक इसका आपको सब्सिडी मिल सकती है,
1: मिल
2: फोर
1: सकते,
2: परसेंट तक ही हो जाएगा वो लोन। तो इसके काफ़ी लाभदायक है। इसका उपयोग पशुपालक जो है अपना भाड़ा ठीक करने में, गाय खरीदने में, बकरी खरीदने में, मुर्गी खरीदने में,
1: जी
2: मेडिसिन खरीदने में, खाद्य खरीदने में इसका उपयोग कर
1: कर
2: सकता है।
1: सकते हैं।
2: वो डिपेंड करता है कि अमाउंट जो है लोन है वो डिपेंड करता है आप थोड़ा सा जो वेटरनरी ऑफिसर्स होते हैं तो वो हम लोग पहले उनसे चेक कर लेते हैं कि इनकी क्या हिसाब से इनको और कितना लोन देना चाहिए।
1: अच्छा, सर हमसे एक कॉलर जुड़ चुके हैं, आइए पहले बात कर लेते हैं। हेलो,
3: हेलो जी मैम।
1: कहाँ से बोल रही हैं और कौन बोल रही हैं?
3: हेलो जी
1: हाँ बोलिए, आपकी आवाज़।
3: मैम, जी चंपा रानी दास बोल रही हूँ, मैं न्यू वंडोर से बोल रही हूँ मैम।
1: चंपा रानी दास जी, न्यू वंडूर से बोलिए, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। पूछिए
3: थैंक
1: पूछिए, प्रश्न पूछिए डॉक्टर साहब से।
3: यू। हाँ सर जी, हम लोग एनिमल हस्बेंड्री वाले, एम्ब्रॉयडरी ट्रांसप्लांटेशन क्यों लाया है अंडमान में, जबकि एआई और सेक्स शॉर्टेज ऑलरेडी चल रहा है।
2: जी मैडम, आपने जो सवाल पूछा ना, ये काफ़ी लोग भी मेरे ख्याल से बाकी किसान भाई भी यही सोच रहेंगे सोच रहे

0: होगे कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन चल रहा है आपका, सेक्स सॉर्टेड सीमेन भी चल रहा है, तो ये भ्रूण प्रत्यारोपण आपने यहाँ पे अगर आया है तो क्यों, इसकी ज़रूरत क्या पड़ गई?
1: क्या पड़
0: चल
1: गई?
0: ठीक है मैडम, ऐसा है कि अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में उच्च गुणवत्ता वाले पशुओं को मुख्य भूमि से लाना कठिन है और महंगा है। आप ट्रांसपोर्टेशन देख लीजिए, आप एक गाय अगर मेनलैंड से उच्च गुणवत्ता वाली गाय लगे तो आपको कितना कॉस्ट पड़ेगा ये आप ही जानते हैं, ठीक है। अभी गर्भ प्रत्यारोपण के माध्यम से हम क्या कर रहे हैं, इसी श्रेष्ठ अनुवांशिक सामग्री को सीधे द्वीपों में ला सकते हैं और कम समय में अधिक संख्या में उन्नत पशु तैयार कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी पहले भी कहा था कि हमें 20 प्रेगनेंसीज मिली है काफ़ी 3-4 महीनों में, तो ये काफ़ी बड़ी उपलब्धता है। अब इससे भविष्य में क्या हुआ, दूध उत्पादन बढ़ेगा, जो नस्ल है नस्ल सुधार तेजी से होगा और किसानों की आय में भी वृद्धि होगी। मैडम आशा करता हूँ आपको
1: प्रश्न के
0: जवाब
1: उत्तर मिल गए
0: प्रश्न का
1: होंगे।
0: उत्तर मिल गया होगा मैडम जी।
1: अब
0: थैंक
1: उन्हें
0: यू
1: पता चल गया होगा कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी।
0: जी, बिल्कुल।
1: अब हम जानना चाहेंगे कि विभाग जो है किसानों को और क्या सहायता प्रदान करता है।
0: विभाग डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड वेटरनरी सर्विसेज ट्रीटमेंट के अलावा, ट्रीटमेंट तो देता ही है, मेडिसिंस भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर मुख्य भूमि से कंपेयर भी किया जाए तो बहुत मेडिसिन फ्री
1: बहुत
0: ऑफ
1: में
0: कॉस्ट
1: जी
0: है। वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलाया जाता है, पोल्ट्री वैक्सीन फ्री में है, 100% सब्सिडी है। अभी FMD फुट एंड माउथ डिसीज की वैक्सीन चल रहा है, वैक्सीनेशन चल रहा है, राउंड चल रहा है साउथ अंडमान में,
1: जी
0: जिसे हम खुरपका एंड
1: मोपका रोग
0: मोपका
1: कहते हैं
0: कहते हैं।
1: जी।
0: इसका वैक्सीनेशन अभी 1 तारीख से स्टार्ट हो चुका है, तो वो भी चल रहा है। इनफर्टिलिटी कैंप्स, इनफर्टिलिटी कैंप्स जैसे फार्मर देखता है, फार्मर की आय कहाँ से बढ़ती है? फार्मर ये सोचता है कि अगर मेरा गाय बच्चा ही नहीं देगी तो मैं दूध कैसे निकालूंगा, तो उसके लिए तहत डिपार्टमेंट इनफर्टिलिटी कैंप्स जगह जगह ऑल ओवर अंडमान निकोबार आइलैंड्स कर रहा है और इसमें काफ़ी सफलताएं भी मिली है। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन तो आपने देखा ही है, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी करवाते हैं, जैसे 1 मंथ ट्रेनिंग प्रोग्राम है, विद स्टाइपेंड है और विदाउट स्टाइपेंड भी है। ये सब ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हमारे यहाँ पे ट्रेनिंग कम डेमोन्स्ट्रेशन फार्म्स हैं, पोल्ट्री के, पिगरी के, डकरी के, इवन डेयरी के भी फार्म्स हैं। तो वहाँ पे कोई भी इच्छुक जो
1: किसान है वो
0: किसान है
1: जी।
0: वो इस ऑनलाइन जाके फॉर्म भर के वो सीधा वहाँ पे जाके 1 मंथ ट्रेनिंग ले सकता है। अगर उनको अपना व्यवसाय स्टार्ट करना है किसी क्षेत्र में पशुपालन में, तो वहाँ जाके वो आप आराम से 1 मंथ का ट्रेनिंग फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकता है।
1: यानी पशुपालन विभाग की ओर से सुविधाएं दी जा रही है, बस
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: जरूरत है फार्मर्स को आगे आने की।
0: आगे आने की। श्योर,
1: एक कॉलर हमसे जुड़ चुके हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो
2: हेलो,
1: हेलो जी, कौन बोल रहे हैं?
2: मेरा नाम प्रसन्नजीत विश्वास है,
1: प्रसन्नजीत
2: मैं
1: विश्वास
2: मेमे
1: जी।
2: से, मैं मेमे से बोल रहा हूँ।
1: हाँ पूछिए, अपना प्रश्न पूछिए डॉक्टर साहब से।
2: जैसे कि सर, अगर मैं डेयरी फार्म के साथ अगर गोट फार्मिंग करना चाहता है तो डिपार्टमेंट और गवर्नमेंट तरफ से मुझे क्या मदद मिल सकती है?
0: जी, बिल्कुल बिल्कुल। अभी आप गोट फार्म, आपने कहा कि डेयरी फार्म के साथ आपको गोट फार्म भी खोलना है, राइट?
2: जी।
0: जी, ठीक है। अगर आपको, आप सोचते कि भाई अब मुझे, चलो मुझे गोट फार्म खोलना है, बकरी पालन करनी है, तो मैं आपको ये सलाह दूंगा कि डिपार्टमेंट की तरफ से आपको जो 1 मंथ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, वो उसमें भाग लेना चाहिए। हमारे पोर्टलर में भी गवर्नमेंट गोट फार्म ट्रेनिंग कम डेमोन्स्ट्रेशन फार्म है, वहाँ पे जाके आप 1 मंथ का ट्रेनिंग ले सकते हैं विद स्टाइपन और विदाउट स्टाइपन। उसके बाद आप KCC किसान क्रेडिट कार्ड के तहत भी आप लोन ले सकते हो। जैसे मैंने इसके पहले भी कहा कि 50,000 से 5 लाख तक का लोन का प्रावधान है, तो आप इसका फ़ायदा आप बिल्कुल उठा सकते हो।
1: तो
0: तो
1: उम्मीद करते हैं कि उनको मेरे
0: जी
1: प्रश्न के उत्तर मालूम चल गए होंगे। डॉक्टर साहब, आप वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी हैं, लंबे समय से विभाग में कार्यरत हैं, क्या आप मानते हैं कि भ्रूण प्रत्यारोपण तकनीक द्वीप समूह के डेयरी सेक्टर का भविष्य बदल सकता है?
0: जी हाँ मैडम, बिल्कुल बदल सकता है। जैसे कृत्रिम गर्भधारण यानी आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन ने पिछले कई वर्षों में नस्ल सुधार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है,
1: जी
0: लेकिन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी या फिर भ्रूण प्रत्यारोपण तकनीक हमें बहुत तेज़ी से सुपीरियर जेनेटिक्स को मल्टीप्लाई करने का अवसर देती है। यदि हम सेक्स सॉर्टेड सीमेन

0: और ईटीटी को साथ मिलकर इस्तेमाल करते हैं तो भविष्य में अंडमान और निकोबार आइलैंड में अधिक संख्या में उच्च उत्पादकता वाली फीमेल डेयरी एनिमल्स तैयार की जा सकती है।
1: बिल्कुल,
0: ये डेयरी सेक्टर के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है।
1: बहुत ही अच्छा जो प्रश्न था और उसके उत्तर भी आपने अच्छे दिए। साथियों, अभी आप पशुपालन एवं पशु विभाग द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम कृत्रिम गर्भाधान हर किसान की नई उड़ान सुन रहे थे। आज का हमारा विषय था कृत्रिम गर्भाधान के लिए सरकारी योजनाएं और समर्थन। इस विषय पर आपने विस्तार से जानकारी हासिल की वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर निनाद लाहले के साथ। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद मैडम।

0: किसान साथियों, अभी आप फोन लाइव फोन इन प्रोग्राम के माध्यम पशुपालन एवं पशु चिकित्सा विभाग द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम कृत्रिम गर्भाधान हर किसान की नई उड़ान की 8वीं कड़ी सुन रहे थे। जानकारी दे रहे थे पशुपालन विभाग के वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर नीनाथ लोहले और विषय था कृत्रिम गर्भाधान के लिए सरकारी योजनाएं और समर्थन।
1: अरे वाह, तुम्हारी गाय तो इस बार खूब दूध दे रही है। राज क्या है भाई?
2: राज नहीं, समझदारी है। मैंने AI अपनाया।
1: AI? ये क्या है?
2: AI यानी अच्छी नस्ल और समय पर गर्भाधान।
1: मतलब कम खर्च में ज्यादा फायदा।
2: बिल्कुल, दूध भी बढ़ा, हर साल बछड़ा भी, बीमारियां कम हुई और आमदनी डबल।
3: AI अपनाओ, खुशहाली लाओ, अच्छी नस्ल से लाभ कमाओ।
4: पशु चिकित्सक की सलाह लें, समय पर कृत्रिम गर्भाधान कराएं और पशुपालन को बनाएं मुनाफे का मजबूत साधन। कृत्रिम गर्भाधान, हर किसान की नई उड़ान।
0: किसान साथियों, आज का कृषि जगत कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। नमस्कार।

अभी आप कृषि जगत कार्यक्रम सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये श्री विजयपुरम केंद्र है। 6:30 हुए हैं। अब सुनिए कार्यक्रम पॉप मसाला।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम पॉप मसाला। आकाशवाणी का ये श्री विजयपुरम केंद्र है। संध्या के 7 बजे हैं।

श्रोताओं, हम आपको बता दें, कुछ ही देर में यानी 7:15 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया।

7:30 पर युवाणी के तहत आप सुनेंगे कार्यक्रम यादें। आज रात 8 बजे सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में विभिन्न विषयों पर आधारित विशेष द्विभाषी कार्यक्रम श्रृंखला आप सुनेंगे, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

आज रात 10 बजे फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होगा संदेशे आते हैं। कल सवेरे 5:55 पर एग्रीटिप्स में जानकारी का विषय रहेगा, भूमि की उर्वरा शक्ति कैसे कायम रखें। कल से सुबह 6:15 पर इंद्रधनुष कार्यक्रम केंद्रित होगा जन्मदिन शीर्षक पर। कल सुबह 7:30 पर गुड मॉर्निंग अंडमान कार्यक्रम के तहत आकाशवाणी श्री विजयपुरम की 63वीं वर्षगांठ पर भेंट वार्ताओं पर आधारित विशेष कार्यक्रम होगा 63 वर्षों की सुरमई यात्रा।

0: मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.9 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। संध्या के 7:05 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार बुलेटिन इस अंतराल के बाद।
1: पुलिस?
2: मिस सीमा
1: जी,
2: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए, वरना घर आ जाएंगे।
1: क्यों? लेकिन मैं
2: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
1: डिजिटल अरेस्ट?

0: 1 लाख दो, बन जाओगे।
1: इतने पैसे?
0: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
1: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
2: हेलो मम्मा।
3: RBI कहता है,
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in।
6: हर घर सूर्य घर।
7: नमस्कार, आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले कुछ मुख्य समाचार। किसानों को जागरूक करने के उद्देश्य से कृषि मंत्री ने 1 महीने का राष्ट्रव्यापी खेत बचाओ अभियान का मध्य प्रदेश के रायसेन में शुभारंभ किया। पश्चिम बंगाल में मंत्रिमंडल विस्तार के तहत 35 नए मंत्रियों ने पद और गोपनीयता की शपथ ली। श्री विजयपुरम में तेलुगु देशम पार्टी के कार्यक्रम महानाडु 2026 में समाज के अधिकारों और विकास पर बल दिया गया। और वाइस एडमिरल विनीत मकार्टी ने अंडमान निकोबार कमान के 20वें कमांडर इन चीफ के रूप में कार्यभार संभाला।

सांध्य समाचारों के साथ मैं संगीता देवनाथ। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के सामरी रामसिया गांव में राष्ट्रव्यापी खेत बचाओ अभियान का शुभारंभ किया। एक महीने तक चलने वाला यह अभियान देश की कृषि भूमि को बचाने और किसानों को वैज्ञानिक खेती के लिए जागरूक करने की दिशा में एक बड़ी पहल है। कार्यक्रम में किसानों को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा, इस अभियान में कृषि विश्वविद्यालय, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि विज्ञान केंद्र और जनप्रतिनिधि मिलकर भाग ले रहे हैं। अभियान के तहत किसानों को मिट्टी परीक्षण, सॉयल हेल्थ कार्ड, प्राकृतिक खेती, संतुलित उर्वरक उपयोग और जल संरक्षण जैसे विषयों पर जानकारी दी जाएगी। अभियान के दौरान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, फसल बीमा योजना, किसान क्रेडिट कार्ड जैसी सरकारी योजनाओं का लाभ भी किसानों तक पहुंचाया जाएगा। खेत बचाओ अभियान के अंतर्गत आज दक्षिण अंडमान के कोलिनपुर और नमूनाघर गांव में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान किसानों को उर्वरकों के संतुलित उपयोग और जल संरक्षण उपायों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। द्वीप समूह में यह कार्यक्रम कृषि विभाग, कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन अभिकरण और ICAR कृषि विज्ञान केंद्र दक्षिण अंडमान के सहयोग से आयोजित किया गया। पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। राज्यपाल R.N. रवि ने कोलकाता के लोक भवन में आयोजित समारोह में 35 नए मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। समारोह में मुख्यमंत्री और अन्य वरिष्ठ नेता उपस्थित रहे। नवनियुक्त मंत्रियों को विभाग बाद में आवंटित किए जाएंगे। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के 6 वर्ष पूरे हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना की सराहना करते हुए कहा कि पीएम स्वनिधि ने बिना गारंटी के ऋण, वित्तीय समावेशन और विकास के नए अवसर खोलकर लाखों रेहड़ी पटरी वालों के जीवन स्तर में सुधार किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यह योजना विश्वास, सम्मान और सशक्तिकरण पर आधारित है। वर्ष 2020 में योजना शुरू होने के बाद से अब तक 1,12,00,000 से अधिक ऋण दिए गए हैं। देश के लाखों रेहड़ी पटरी वालों को पिछले 6 साल से पीएम स्वनिधि स्कीम के जरिए आसानी से कर्ज मिल रहा है। इससे उनके लिए अस्थायी आजीविका सुनिश्चित हो पाई है। इस योजना के तहत बिना किसी गारंटी के 3 चरणों में क्रमशः 15,000

25,000 और 50,000 तक के कर्ज उपलब्ध कराए जाते हैं। इन कर्जों पर ब्याज सब्सिडी तथा ऋण गारंटी सहायता भी प्रदान की जाती है। इस पहल से देश भर के शहरों और कस्बों में 75 लाख से अधिक लाभार्थियों को फायदा हुआ है। पीएम स्वनिधि योजना के तहत अब तक 70,800 करोड़ रुपए से अधिक के कर्ज वितरित किए जा चुके हैं। इसके अलावा 55 लाख से अधिक लाभार्थियों को इस स्कीम से डिजिटल रूप से जोड़ा गया है। भाजपा की अंडमान निकोबार इकाई ने संगठन विस्तार के तहत विभिन्न प्रकोष्ठों के संयोजकों की घोषणा की है। राज्य प्रकोष्ठ संयोजक एम विनोद ने प्रदेश अध्यक्ष अनिल कुमार तिवारी के मार्गदर्शन और अनुमोदन से इन नियुक्तियों की जानकारी दी। नवनियुक्त प्रकोष्ठ संयोजकों का कार्यकाल वर्ष 2028 तक रहेगा। घोषित नामों के अनुसार बौद्धिक प्रकोष्ठ के लिए भानु प्रताप यादव, विधि प्रकोष्ठ के लिए सुपर्णा बिस्वास, प्रोफेशनल प्रकोष्ठ के लिए अभिजीत अग्रवाल तथा मेडिकल प्रकोष्ठ के लिए मयंक को नियुक्त किया गया है। शिक्षक प्रकोष्ठ की जिम्मेदारी पी रामचंद्रन, सहकारिता प्रकोष्ठ की नंदकिशोर सिंह और पूर्व सैनिक प्रकोष्ठ की सर्वेश्वर मिश्रा को सौंपी गई है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी श्री विजयपुरम से सुन रहे हैं। समाचारों में आगे प्रमुख हैं, तेलुगु देशम पार्टी और कमान। आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रसारित होने वाला यह प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप मीडियम वेव के साथ साथ एफएम 100.9 मेगाहर्ट्ज पर भी सुन रहे हैं। प्रादेशिक समाचार के अलावा सुबह 9 बजे, 10 बजे और 11 बजे प्रति घंटा समाचार हेडलाइंस एफएम रेडियो पर भी उपलब्ध है। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। तेलुगु देशम पार्टी की अंडमान निकोबार इकाई ने 27 और 28 मई को श्री विजयपुरम के हैडो स्थित म्युनिसिपल कम्युनिटी हॉल में अपना वार्षिक सम्मेलन महानाडू 2026 आयोजित किया। 2 दिवसीय कार्यक्रम में पार्टी नेताओं, कार्यकर्ताओं, एनआरआई समर्थकों और द्वीपों में रहने वाले तेलुगु भाषी परिवारों ने भाग लिया। कार्यक्रम की शुरुआत स्वर्गीय एनटी रामाराव को श्रद्धांजलि, पार्टी ध्वजारोहण और द्वीप प्रज्वलन के साथ हुई। उद्घाटन सत्र में तेलुगु समाज के कल्याण और अंडमान निकोबार के विकास के प्रति पार्टी की प्रतिबद्धता दोहराई गई। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष एन माणिक्य राव यादव ने कहा कि महानाडु तेलुगु स्वाभिमान का उत्सव है और पार्टी द्वीपों के हर तेलुगु परिवार की आवाज बनकर कार्य करती रहेगी। वाइस एडमिरल विनीत मकाटी ने आज अंडमान निकोबार कमान के 20वें कमांडर इन चीफ के रूप में पदभार ग्रहण किया। वे 1 जुलाई 1989 को भारतीय नौसेना में कमीशन हुए थे। उन्हें नौसेना प्रशिक्षण स्टाफ और त्रिसेवा क्षेत्रों में 36 वर्षों से अधिक का व्यापक अनुभव प्राप्त है। उनके कार्यकाल में आईएनएस दिल्ली के कमिश्निंग क्रू का हिस्सा रहने के साथ आईएनएस अजय, आईएनएस खंजर और आईएनएस शिवालिक की कमान शामिल है। अपने कार्यभार ग्रहण करने के बाद वाइस एडमिरल मकाटी ने अंडमान निकोबार कमान की सामरिक महत्ता पर बल देते हुए भारत के समुद्री हितों की सुरक्षा और हिंद महासागर क्षेत्र में स्थिरता बनाए रखने की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने परिचालन तैयारियों को और मजबूत करने, तीनों सेनाओं के बीच बेहतर समन्वय बढ़ाने तथा इंडो पैसिफिक क्षेत्र में राष्ट्रीय सुरक्षा के महत्वपूर्ण स्तंभ के रूप में कमान की भूमिका को और सुदृढ़ करने पर जोर दिया। वाइस एडमिरल मकाटी को विशिष्ट सेवा के लिए अति विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया जा चुका है। उत्तर एवं मध्य अंडमान के कालाडी स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय ने राष्ट्रीय स्तर पर उपलब्धि हासिल करते हुए स्कूल चैलेंज टोबैको फ्री एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस 2025 के फाउंडेशनल श्रेणी में 3रा स्थान प्राप्त किया है। यह पहल भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा तंबाकू मुक्त पीढ़ी के उद्देश्य से संचालित की जा रही है। इस उपलब्धि को 29 मई को नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय पुरस्कार समारोह के दौरान सम्मानित किया गया। इसी कार्यक्रम में नशा मुक्त विद्यालय एक्शन प्लान का भी शुभारंभ हुआ। विद्यालय की ओर से राष्ट्रीय पुरस्कार प्राथमिक विद्यालय शिक्षक तर्पण सरकार ने प्राप्त किया। इस अवसर पर उप शिक्षा निदेशक विज्ञान राम प्रवेश भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम में स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय के सचिव संजय कुमार ने देश भर के विजेता विद्यालयों को सम्मानित किया। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी श्री विजयपुरम में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए

0: गए हैं। पात्र अभ्यर्थी 2 जून से 25 जून तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। इच्छुक अभ्यर्थी निर्धारित अवधि के भीतर ऑनलाइन पोर्टल collegeadmission.andaman.gov.in के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। किसानों को जागरूक करने के उद्देश्य से कृषि मंत्री ने एक महीने का राष्ट्रव्यापी खेत बचाओ अभियान का मध्य प्रदेश के रायसेन में शुभारंभ किया। पश्चिम बंगाल में मंत्रिमंडल विस्तार के तहत 35 नए मंत्रियों ने पद और गोपनीयता की शपथ ली। राजधानी श्री विजयपुरम में तेलुगु देशम पार्टी के कार्यक्रम महानाडु 2026 में समाज के अधिकारों और विकास पर बल दिया गया और वाइस एडमिरल विनीत मकाटी ने अंडमान निकोबार कमान के 20वें कमांडर इन चीफ के रूप में कार्यभार संभाला। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: इसका सब प्रॉपर चलता है।
2: कल उसके बैंक अकाउंट में 15,000 रुपए का फ्रॉड हुआ है, पता है?
1: इसको तो कोई टेंशन ही नहीं होती है, देखना।
3: टेंशन क्यों? मेरी कोई गलती नहीं थी, फिर भी फ्रॉड होने पर मैंने तुरंत बैंक को इन्फॉर्म कर दिया। आरबीआई कहता है अगर आपके अकाउंट से किसी ने धोखे से पैसे निकाले हैं तो बैंक को जल्द से जल्द इन्फॉर्म कीजिए। 3 दिन के अंदर इन्फॉर्म किया तो कोई नुकसान नहीं होगा, जितना लेट करोगे उतना ज्यादा नुकसान। और सुन, सब चलता नहीं है, प्रॉपर चलाना पड़ता है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: आकाशवाणी का ये श्री विजयपुरम केंद्र है। 7:15 हुए हैं। अब सुनिए मौसम व जलयानों की यात्रा कार्यक्रम। पहले मौसम। मौसम कार्यालय से प्राप्त सूचना के अनुसार अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा हुई। कार निकोबार वायुसेना क्षेत्र में 2 मिलीमीटर और नानकवरी में 1 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई। जन सेवाओं और मछुआरों को सूचित किया जाता है कि हवा की गति 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से होगी। मछुआरों को आज से 4 तारीख तक समुद्र में न जाने की सलाह दी जाती है। कल सवेरे तक के मौसम संबंधी पूर्वानुमान में बताया जाता है कि अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के अनेक स्थानों पर हल्के से मध्यम वर्षा होगी या गरज के साथ छींटे पड़ेंगे। ये था मौसम का हाल। अब सुनिए जलयानों का यात्रा कार्यक्रम। जहाजरानी सेवा निदेशालय से प्राप्त सूचना के अनुसार लिटिल अंडमान की यात्रा पर एमवी सेंटिनल कल सुबह 7 बजे श्री विजयपुरम से रवाना होगा और उसी रोज रात 8 बजे लिटिल अंडमान से श्री विजयपुरम वापस लौटेगा।

नानकवरी होते हुए कैम्बलबे की यात्रा पर जलयान सिंधु कल सुबह 9 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा। उसकी वापसी बृहस्पतिवार सुबह 8 बजे कैम्बलबे से छूटकर श्री विजयपुरम के लिए होगी। स्वराज द्वीप और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत के लिए एमवी जॉली बॉय कल सुबह 6 बजे श्री विजयपुरम से जाएगा और कल ही दोपहर 12 बजे रंगत से छूटकर लॉन्ग आइलैंड और स्वराज द्वीप होते हुए श्री विजयपुरम वापस लौटेगा। एमवी बाराटंग शाही द्वीप के लिए कल सुबह 6:15 पर श्री विजयपुरम से चलेगा। जलयान कल ही सुबह 8:30 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम की वापसी करेगा। स्वराज द्वीप की यात्रा पर एमवी नॉर्थ पैसेज कल सुबह 6:15 पर श्री विजयपुरम से जाएगा और कल ही सुबह 8:45 पर स्वराज द्वीप से श्री विजयपुरम वापस लौटेगा। एमवी स्ट्रेट आइलैंड शहीद द्वीप के लिए कल दिन के 11 बजे श्री विजयपुरम से रवाना होगा और दोपहर बाद 1 बजे शहीद द्वीप से स्वराज द्वीप के लिए छूटेगा। जलयान कल ही 2:30 पर स्वराज द्वीप से श्री विजयपुरम की वापसी यात्रा करेगा। स्वराज द्वीप के लिए एमवी

रानीचंगा कल दिन के 11:30 पर श्री विजयपुरम से चलेगा और कल ही दोपहर बाद 3:30 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम वापस लौटेगा। इस बीच ये जलयान दोपहर बाद 2 बजे स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप के लिए छूटेगा। एमवी बाराटंग शहीद द्वीप के लिए कल दोपहर बाद 2:30 पर श्री विजयपुरम से रवाना होगा और उसकी वापसी कल ही शाम 4:30 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। स्वराज द्वीप की यात्रा पर एमवी कमोट्टा कल शाम 5 बजे श्री विजयपुरम से जाएगा। जलयान बुधवार 3 तारीख को सवेरे 5:30 पर स्वराज द्वीप से छूटकर शहीद द्वीप होते हुए श्री विजयपुरम वापस लौटेगा। ये थे जलयानों के यात्रा कार्यक्रम। आकाशवाणी का ये श्री विजयपुरम केंद्र है। 7:20 हुए हैं। अब सुनिए कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया। कार्यक्रम में सबसे पहले सुनिए जान फिल्म का गीत मनहर उधास और अलका याग्निक के आवाजों में, बोल आनंद बख्शी के, और धुन तैयार किया है आनंद मिलिंद ने।

फोर्स फिल्म के इस गीत के साथ ही फिल्मी गीतों का कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया अब यहीं समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय 7:30 हुए हैं। प्रस्तुत है युवा श्रोताओं के लिए कार्यक्रम

युववाणी कार्यक्रम सुनने वाले सभी युवा दोस्तों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज 1 जून है और आज के दिन विश्व अभिभावक दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, यह दिन माता पिता के प्रेम, त्याग, समर्पण और उनके अमूल्य योगदान को सम्मान देने के लिए समर्पित है। माता पिता ही बच्चों के प्रथम शिक्षक होते हैं, जो उन्हें जीवन के संस्कार, नैतिक मूल्य और सही मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। यह दिवस हमें अपने माता पिता के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने तथा उनके सम्मान और देखभाल का संकल्प लेने का अवसर प्रदान करता है। उनके आशीर्वाद और मार्गदर्शन से ही जीवन सफल और सार्थक बनता है। दोस्तों, इसी के साथ ही आज ही के दिन विश्व दुग्ध दिवस भी मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य दूध के पोषण महत्व तथा डेयरी क्षेत्र के योगदान के प्रति लोगों को जागरूक करना है। दूध को संपूर्ण आहार माना जाता है, क्योंकि इसमें कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन तथा अन्य आवश्यक पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। यह बच्चों की शारीरिक एवं मानसिक वृद्धि के साथ साथ सभी आयु वर्ग के लोगों के लिए लाभकारी है। यह दिवस हमें संतुलित आहार में दूध और दुग्ध उत्पादों के महत्व को समझने तथा दुग्ध उत्पादों के योगदान का सम्मान करने की प्रेरणा देता है। दोस्तों, ये तो थी आज के दिन से जुड़ी कुछ खास बातें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे आज के इस कार्यक्रम में। दोस्तों, आज इस माह का पहला सोमवार है और आज के दिन हम आपके लिए लेकर आते हैं पुराने फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम यादें।

दोस्तों, कभी कभी इंसान किसी रिश्ते को बचाने के लिए अपनी तरफ से हर कोशिश कर लेता है। वह समझौता करता है, इंतज़ार करता है, अपने दर्द को छुपाता है और बार बार उम्मीद करता है कि शायद सब ठीक हो जाए। लेकिन एक समय ऐसा भी आता है जब दिल थक जाता है। उसे महसूस होने लगता है कि अब और सहना उसके बस की बात नहीं है। यह वह अवस्था होती है जब मोहब्बत खत्म नहीं होती मगर दर्द उसकी जगह लेने लगता है। मन में शिकायत कम और टूटन ज़्यादा होती है। इंसान चाहता तो है कि सब पहले जैसा हो जाए, लेकिन हालात उसे यह स्वीकार करने पर मजबूर कर देते हैं कि अब आगे बढ़ना ही बेहतर है। बहुत कुछ कहने के बाद, बहुत कुछ सहने के बाद दिल एक आखिरी फैसला करता है। यह फैसला गुस्से का नहीं बल्कि गहरी थकान का होता है, जब मन बस

दोस्तों, कई बार प्यार किसी बड़ी मुलाकात से नहीं बल्कि एक छोटी सी झलक से शुरू होता है। किसी को रोज आते जाते देखना, उसकी मुस्कान को महसूस करना और फिर अनजाने में उसी का इंतज़ार करने लगना, यहीं से दिल की कहानी शुरू होती है। धीरे धीरे वह चेहरा दिन का सबसे

बार प्यार किसी बड़ी मुलाकात से नहीं, बल्कि एक छोटी सी झलक से शुरू होता है। किसी को रोज़ आते जाते देखना, उसकी मुस्कान को महसूस करना और फिर अनजाने में उसी का इंतज़ार करने लगना, यहीं से दिल की कहानी शुरू होती है। धीरे धीरे वह चेहरा दिन का सबसे खूबसूरत हिस्सा बन जाता है। मन हर रोज़ उसी समय का इंतज़ार करता है जब एक झलक मिल सके। बातें भले न हुई हों, लेकिन दिल ने सपने बुनने शुरू कर दिए होते हैं। उनकी हंसी और उनकी मासूमियत सब कुछ खास लगने लगती है। इंसान खुद को समझाता है कि यह सिर्फ एक आकर्षण है, लेकिन दिल मानता नहीं। उसे लगता है कि इस भीड़ भरी दुनिया में कोई ऐसा है जिसने बिना कुछ कहे उनकी दुनिया बदल दी है।

दोस्तों, जब प्यार नया नया होता है तो दिल में एक मीठी सी बेचैनी रहती है। इंसान खुद भी नहीं समझ पाता कि उसके साथ क्या हो रहा है। बिना किसी वजह के मुस्कुराना, अचानक किसी की याद में खो जाना और हर समय उसी के बारे में सोचना एक नई दुनिया जैसा लगता है। दिल में कई सवाल होते हैं मगर उनके जवाब नहीं मिलते। बस इतना महसूस होता है कि कोई है जिसने जीवन को पहले से ज़्यादा खूबसूरत बना दिया है। उसकी याद आते ही चेहरा खिल उठता है और उसके बिना हर खुशी अधूरी लगती है। यह वह दौर होता है जब इंसान अपने ही एहसासों से हैरान होता है। उसे समझ नहीं आता कि यह कैसी चाहत है जो हर पल उसे उसी की तरफ खींचे जा रही है।

दोस्तों, कभी कभी प्यार सिर्फ एक रिश्ता नहीं रहता, बल्कि एक पुकार बन जाता है। चाहे दूरियां कितनी भी हों, दिल को हमेशा यही लगता है कि उसका अपना कहीं ना कहीं उसकी आवाज़ ज़रूर सुन रहा होगा। लंबा इंतज़ार हो सकता है, मगर उम्मीद ख़त्म नहीं होती। हर रात, हर खामोशी और हर याद उसी इंसान के नाम हो जाती है। मन चाहता है कि वह लौट आए और सारी अधूरी बातें पूरी हो जाएं। यह भावना सिर्फ मिलने की इच्छा नहीं, बल्कि एक गहरे जुड़ाव की निशानी है। ऐसा जुड़ाव जो समय, दूरी और परिस्थितियों से भी बड़ा होता है। इंसान अपने प्यार को भुलाने की कोशिश नहीं करता, बल्कि उसे अपनी सांसों की तरह अपने साथ रखता है। और दिल से बस एक ही आवाज़ निकलती है कि अब लौट आओ।

दोस्तों, ज़िंदगी में कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो समय के साथ पुराने तो हो जाते हैं लेकिन कभी मिट नहीं पाते। चाहे कितनी भी दूरियां आ जाए, चाहे हालात कितने भी बदल जाएं, उनकी याद दिल में हमेशा जिंदा रहती है। जब दो लोग सच्चे मन से एक दूसरे से जुड़े होते हैं तब उनके साथ बिताए छोटे छोटे पल भी अनमोल बन जाते हैं। कभी किसी की मुस्कान याद आती है, कभी कोई वादा और कभी कोई ऐसी बात जो उस समय साधारण लगी थी लेकिन बाद में सबसे कीमती बन गई। समय आगे बढ़ता रहता है मगर दिल कुछ यादों को अपने सबसे सुरक्षित कोने में संभाल कर रखता है, क्योंकि कुछ रिश्ते सिर्फ साथ रहने से नहीं बल्कि यादों से भी जिंदा रहते हैं। और इंसान पूरे विश्वास के साथ कह सकता है कि दुनिया बदल जाए मगर वह उन पलों को कभी नहीं भूलेगा।

अभी आप युववाणी कार्यक्रम सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये श्री विजयपुरम केंद्र है। रात के 8 बजने को है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे सरकार के 12 वर्ष

पूर्ण होने के उपलक्ष्य में विभिन्न विषयों पर आधारित विशेष द्विभाषी कार्यक्रम श्रृंखला, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

कार्यक्रम का आगाज हम कर रहे हैं आसमान से ऊंचा फिल्म के इस गीत के साथ। इसे गाया है पार्वती खान ने, लिखा है इंदिवर ने और संगीत से सजाया है राजेश रोशन ने।

गुलजार की रचना को आवाज़ें दी है लता मंगेशकर और मुकेश ने, संगीत सजाया है कल्याण जी आनंद जी ने पूर्णिमा फिल्म के लिए। आप सुन रहे हैं ये गीत।

पूर्णिमा फिल्म के इस गीत के साथ ही फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चित्रपट संगीत अब यहीं समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये श्री विजयपुरम केंद्र है। रात के 8:30 हुए हैं। अब सुनिए रोजगार समाचार और गौरव गान। पहले रोजगार समाचार। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण में प्रतिनियुक्ति के आधार पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक तथा उप पुलिस अधीक्षक के पदों हेतु नामांकन आमंत्रित किए जाते हैं, जो अखिल भारतीय आधार पर होगा। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक वेतन मैट्रिक लेवल 11 में पूर्व संशोधित वेतन बैंड 3 के तहत 2 पद और पुलिस अधीक्षक वेतन मैट्रिक लेवल 10 में पूर्व संशोधित वेतन बैंड 3 के अंतर्गत 3 पद रखा गया है। ये सभी पद प्रतिनियुक्ति के आधार पर होगा। रिक्तियों की संख्या में परिवर्तन किया जा सकता है। पात्रता मानदंड, शैक्षणिक योग्यता, अनुभव आदि तथा आवेदन पत्र राष्ट्रीय जांच अभिकरण NIA की वेबसाइट www.nia.gov.in पर उपलब्ध है। इस पद के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार बाद में अपना आवेदन वापस नहीं ले सकेंगे। योग्य अधिकारियों के नामांकन दस्तावेजों सहित हार्ड कॉपी इस पते पर भेजना होगा। पुलिस अधीक्षक राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण मुख्यालय के सामने केंद्रीय सरकारी कार्यालय परिसर लोधी रोड नई दिल्ली 110003। ये आवेदन रोजगार समाचार में प्रकाशन के तिथि से 45 दिनों के भीतर यानी 15 जून तक पहुंच जाने चाहिए। इच्छुक अधिकारी अग्रिम प्रति ईमेल spadmin.nia@gov.in द्वारा भी भेज सकते हैं। साथ ही डाक द्वारा भी भेजा जा सकता है। अंतिम तिथि के बाद अपूर्ण आवेदन अथवा आवश्यक दस्तावेजों के बिना आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। और अधिक जानकारी के लिए 2 मई का एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर देखा जा सकता है। इसी के साथ रोजगार समाचार समाप्त हुए। अब सुनिए गौरव गान।

आकाशवाणी का ये श्री विजयपुरम केंद्र है। रात के 8:45 होने को है। कुछ ही पलों में समाचारों का प्रसारण होगा, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउ लाइन ने नई दिल्ली में वार्ता की। एक दूसरे के सुरक्षा हितों के खिलाफ अपनी भूमि के दुरुपयोग को रोकने पर बल दिया। भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता लागू। भारतीय निर्यातकों को ओमान की 98% उत्पाद श्रेणियों पर शुल्क मुक्त पहुंच प्राप्त होगी। भारत और ऑस्ट्रेलिया भावी प्रौद्योगिकी अनुसंधान में रक्षा औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देंगे। मलेशिया 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के सोशल मीडिया उपयोग पर प्रतिबंध लगाने वाले देशों में शामिल। और राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में कल तक आंधी चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउ लाइन ने आज व्यापार और आर्थिक, रक्षा, सुरक्षा और सीमा प्रबंधन सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। द्विपक्षीय वार्ता के बाद विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने नई दिल्ली में बताया कि दोनों पक्षों ने लोगों के बीच संपर्क के लिए कनेक्टिविटी के महत्व पर बल दिया। दोनों नेताओं ने कालाधान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट परियोजना को यथाशीघ्र पूरा करने पर सहमति व्यक्त की। विदेश सचिव ने कहा कि प्रधानमंत्री ने म्यांमा की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति भारत के समर्थन की पुष्टि की है।
1: दोनों पक्षों ने अपने सुरक्षा हितों के प्रतिकूल गतिविधियों के लिए क्षेत्र के दुरुपयोग को रोकने के महत्व पर बल दिया। कुल मिलाकर राष्ट्रपति की इस यात्रा ने दोनों पक्षों के दीर्घकालिक साझेदारी को और गहरा करने तथा क्षेत्र में पारस्परिक लाभ, विकास और समृद्धि के लिए मिलकर काम करने की साझा प्रतिबद्धता की एक बार फिर पुष्टि की है।
2: ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी इन द रीजन।
0: इस बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउ लाइन का स्वागत किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि म्यांमा भारत की पड़ोसी प्रथम, एक्ट ईस्ट और महासागर नीतियों में एक महत्वपूर्ण भागीदार है। भारत के साथ म्यांमा के महत्वपूर्ण संबंधों पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि म्यांमा दक्षिण पूर्व एशिया के लिए भारत का प्रवेश द्वार है, क्योंकि ये एकमात्र आसियान देश है जो भारत के साथ भूमि सीमा साझा करता है। उन्होंने शांति और सुलह के लिए म्यांमा के प्रयासों के प्रति भारत के अटूट समर्थन का भी आश्वासन दिया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता आज से लागू हो गया है। समझौते पर 6 महीने पहले हस्ताक्षर किए गए थे। श्री गोयल ने नई दिल्ली में कहा कि इस समझौते से भारत के कामगारों, लघु तथा मध्यम उद्यमों जैसे विभिन्न क्षेत्रों के निर्यातकों को ओमान के बाजार में प्राथमिकता मिलेगी।
3: I am confident that this comprehensive agreement
4: हमें विश्वास है कि व्यापक समझौता ओमान के साथ हमारे संबंधों को नई गति प्रदान करेगा। पहले दिन से ही भारत को ओमान की 98% उत्पाद श्रेणियों में शुल्क मुक्त पहुंच प्राप्त होगी और इससे भारत के ओमान को होने वाले 99% से अधिक निर्यात को लाभ मिलेगा। व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता CEPA हमारे साझा भविष्य की रूपरेखा है।
3: Of our shared future.
0: श्री गोयल ने बताया कि समझौते के लागू होने के बाद आज मुंबई, कोलकाता और चेन्नई से कई खेपें भेजी जा रही हैं। उन्होंने कहा कि यह समझौता अपनी उन्नत रसद और बंदरगाह अवसंरचना के माध्यम से खाड़ी सहयोग परिषद और पूर्वी अफ्रीकी बाजारों तक पहुंचने का एक महत्वपूर्ण द्वार बनेगा। श्री गोयल ने कहा कि अमरीकी FDA, यूरोपीय औषध एजेंसी

या ब्रिटेन के MHRA से अनुमोदित भारतीय जेनेरिक दवाओं को अब ओमान में 90 दिन के भीतर बाजार में बिक्री की अनुमति मिल जाएगी। उन्होंने कहा कि भारत ने समझौते के तहत गैर सेवा क्षेत्रों में भारतीय श्रमिकों की सुरक्षा के लिए एक बाध्यकारी प्रतिबद्धता भी हासिल की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर श्री गोयल का एक लेख साझा किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि यह समझौता रोजगार सृजन को बढ़ावा देने, किसानों के हितों की रक्षा करने और दोनों देशों के बीच साझा समृद्धि को बढ़ावा देने का अवसर प्रदान करता है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने स्वतंत्र, खुले, शांतिपूर्ण, स्थिर और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र को बनाए रखने में क्षेत्रीय साझेदारों के साथ सहयोग बढ़ाने के महत्व की पुष्टि की है। नई दिल्ली में दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों के बीच दूसरी बैठक में क्षेत्र में निर्बाध व्यापार, नौवहन तथा हवाई उड़ान की स्वतंत्रता के महत्व पर बल दिया गया। बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और ऑस्ट्रेलिया की रक्षा मंत्री रिचर्ड माल्स ने की। दोनों नेताओं ने भविष्य की प्रौद्योगिकी अनुसंधान में रक्षा औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा की। श्री माल्स ने भारत को ऑस्ट्रेलियाई रक्षा विज्ञान, प्रौद्योगिकी और अनुसंधान शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया। सरकार ने कहा है कि पूरे देश में पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त भंडार है। पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सभी तेल विपणन कंपनियां पेट्रोल और डीजल की सक्रिय रूप से आपूर्ति कर रही हैं।
2: डोमेस्टिक एलपीजी घरेलू कुकिंग गैस के संबंध में पिछले 3 दिनों में 1,21,00,000 बुकिंग्स रिसीव हुई हैं, उसके अगेंस्ट 1,22,00,000 डिलीवरीज की गई हैं और 95% डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड के साथ की गई हैं।
1: इस बीच सरकार ने उन फर्जी ईमेल का खंडन किया है जिनमें एलपीजी डीलरशिप और डिस्ट्रीब्यूटरशिप देने का दावा किया गया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने बताया कि info@lpg वितरक चयन पते से भेजे गए ईमेल फर्जी हैं और इनका आधिकारिक एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप चयन प्रक्रिया से कोई संबंध नहीं है। प्रामाणिक जानकारी केवल आधिकारिक एलपीजी वितरक चयन पोर्टल पर ही उपलब्ध है। पश्चिम बंगाल में आज मंत्रिपरिषद का विस्तार किया गया। राज्यपाल आरएन रवि ने कोलकाता के लोकभवन में 35 मंत्रियों को शपथ दिलाई। नवनियुक्त मंत्रियों की विभागों का आवंटन बाद में किया जाएगा। इस बीच तृणमूल कांग्रेस ने 2 विधायकों संदीप अंसाहा और ऋतव्रत बैनर्जी को पार्टी विरोधी गतिविधियों, महत्वपूर्ण बैठकों में अनुपस्थित रहने और सार्वजनिक रूप से पार्टी नेतृत्व की आलोचना करने के आरोप में निष्कासित कर दिया। उच्चतम न्यायालय ने नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा को मौजूदा पेन और पेपर प्रारूप के स्थान पर कंप्यूटर आधारित परीक्षा आयोजित करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। न्यायालय ने कहा कि कंप्यूटर आधारित पुनर्परीक्षा आयोजित करने का कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि परीक्षा रद्द होने के बाद से राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी पहले से ही चुनौतियों का सामना कर रही है। अगली सुनवाई 27 जुलाई को होगी। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा है कि लोक अदालतों और जिला विधि सेवा प्राधिकरणों को तलाक का निर्णय देने का अधिकार नहीं है और विवाह भंग करने का अधिकार केवल पारिवारिक न्यायालयों के पास है। एक याचिका की सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने कहा कि लोक अदालतों को केवल सौहार्दपूर्ण समझौते कराने का अधिकार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों से प्रेरित भारत में पिछले 12 वर्ष में अभूतपूर्व बदलाव आया है। आकाशवाणी समाचार विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर विशेष प्रस्तुति लेकर आया है। आज बात किसानों के कल्याण की दिशा में सरकार के कदमों की।
3: नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा पिछले 12 वर्षों में किसानों के कल्याण और उनकी आय बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। इनमें सबसे प्रमुख योजना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है, जो देश की सबसे बड़ी

0: किसान कल्याण योजनाओं में से एक है। इस योजना के तहत किसानों को हर साल 6,000 रुपए सीधे उनके बैंक खातों में दिए जाते हैं और अब तक लगभग 9 करोड़ 50 लाख किसान परिवारों के खातों में 4,28,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि भेजी जा चुकी है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या के किसान दिनेश कुमार जायसवाल ने बताया कि किसान सम्मान निधि योजना किसानों के लिए बहुत लाभकारी है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चलाई जा रही किसान सम्मान निधि योजना का मुझे भरपूर लाभ मिल रहा है। इससे मुझे काफी सहायता मिलती है। हम समय पर अपने खाद और बीज की खरीदारी कर लेते हैं।
0: प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से सिंचाई व्यवस्था मजबूत हुई है और मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के माध्यम से किसानों को मिट्टी की पोषक तत्वों की जानकारी दी जा रही है। साल 2014-15 से लेकर अब तक 26 करोड़ मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जा चुके हैं। वहीं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत करीब 23 करोड़ किसानों को 1,92,000 करोड़ रुपए के फसल बीमा दावों का लाभ मिला है। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के तहत छोटे और सीमांत किसानों को 60 वर्ष की आयु के बाद हर महीने 3,000 रुपए की पेंशन सुनिश्चित की जा रही है। उत्तर प्रदेश के एक लाभार्थी गौरव त्यागी ने कहा कि यह किसानों के लिए बहुत फायदेमंद है।
2: किसान मानधन योजना चल रही है, बहुत ही लाभदायक है। प्रधानमंत्री की तो जितनी भी योजनाएं रही हैं वो सारी बड़ी महत्वपूर्ण रही हैं, किसान के हित में रही हैं। और ये बुढ़ापे में जो 3,000 रुपए के इसके मिलेंगे, ये जो बहुत ही बढ़िया टाइम की जो एज के हिसाब से
0: न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानों के लिए एक मजबूत सहारा बना है, जिसके तहत किसानों को उनके उत्पादन लागत का 1.5 गुना मूल्य मिल रहा है। सरकार द्वारा उठाए गए ठोस नीतियों के कारण देश का कुल खाद्यान्न उत्पादन 2013-14 के 265 मिलियन टन से बढ़कर 2024-25 में लगभग 358 मिलियन टन हो गया है। इसके अलावा भारत ने रिकॉर्ड 154 मिलियन टन से अधिक चावल का उत्पादन कर चीन को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश बन गया है। आज भारत का किसान केवल अन्नदाता ही नहीं बल्कि देश की आर्थिक प्रगति और विकास का एक महत्वपूर्ण आधार भी बन चुका है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
4: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
3: ये आकाशवाणी है। मलेशिया ने 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के सोशल मीडिया के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसका उद्देश्य बच्चों को हानिकारक सामग्री, साइबर बुलिंग और ऑनलाइन गतिविधियों की लत से बचाना है। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया ने बच्चों के लिए सोशल मीडिया के उपयोग पर प्रतिबंध लगाए हैं। देश में विनिर्माण क्षेत्र में मजबूती से औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में अप्रैल 2025 की तुलना में इस वर्ष अप्रैल में 4.9% की वृद्धि दर्ज की गई है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने बताया कि विनिर्माण क्षेत्र में इस दौरान 6.2% की वृद्धि दर्ज की गई। मौसम विभाग ने राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में कल तक के लिए आंधी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिमी बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में कल तक बिजली तथा तेज हवाएं चलने का अनुमान व्यक्त किया गया है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में लू के दौरान सुरक्षित रहें, सावधानियां, तैयारी और बचाव विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। इसमें मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर डी आर पटनायक और सफदरजंग अस्पताल के चिकित्सा विभाग की डॉक्टर रूपाली मलिक भाग लेंगी। श्रोता इस विषय से संबंधित अपने प्रश्न टेलीफोन नंबर 011-233-10481 पर प्रश्न पूछ सकते हैं। उत्तराखंड के चमोली जिले के यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल फूलों की घाटी को आज से पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। वन रेंज अधिकारी चेतना कांडपाल ने बताया कि फूलों की घाटी में वर्तमान में 300 से अधिक फूलों की प्रजातियां और वनस्पतियों की कई दुर्लभ किस्में हैं।
5: वैली 1 जून से 31 अक्टूबर तक ओपन रहती है। पहले बार इसकी डिस्कवरी फ्रैंक स्माइथ ने की थी 1931 में, जब वो कॉमेट के एक एक्सपीडिशन से लौट रहे थे। उसके बाद वो वैली दोबारा आई 1937 में, और 1938 में उन्होंने

0: नमस्कार श्रोताओं, कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं कनकलता। श्रोताओं, गर्मी का मौसम चल रहा है। ये मौसम जहां अपने साथ रसीले आम, तरबूज, लीची, खरबूज जैसे स्वादिष्ट फल लाता है, वहीं लू का प्रकोप भी। देश के कई हिस्से इस समय लू यानी हीट वेव से जूझ रहे हैं। हालांकि बीच बीच में थोड़ी बारिश होने से गर्मी से राहत भी मिलती है। भीषण गर्मी के मौसम में लू कई बार जानलेवा भी साबित होता है। ऐसे में जरूरी है कि हम लू से बचाव के लिए सावधानियां बरतें। हमारा आज का कार्यक्रम इसी पर आधारित है। लू से बचाव के लिए क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए और लू लगने की स्थिति में प्रभावित व्यक्ति की सहायता किस प्रकार करनी चाहिए, इन्हीं सब बातों पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं भारत मौसम विज्ञान विभाग में वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ डी आर पटनायक और सफदरजंग अस्पताल में मेडिसिन विभाग में प्रोफेसर डॉ रूपाली मलिक। स्टूडियो में आप दोनों का स्वागत है। श्रोताओं, स्टूडियो की फोन लाइन्स खुली हुई हैं। नंबर है 2331-0481, 2371-7117, 2371-7106 और 2331-4444। दिल्ली से बाहर के श्रोता इन नंबरों से पहले 011 लगाना न भूलें। व्हाट्सएप नंबर है 9289094044। आप इस पर भी प्रश्न भेज सकते हैं। आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts पर भी #AskAIR के जरिए अपने सवाल पोस्ट कर सकते हैं। ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और दूरदर्शन की DTH सेवा पर भी उपलब्ध है। कार्यक्रम की शुरुआत में हमारे साथ जुड़ चुके हैं रमाशंकर वाजपेयी रायबरेली से। जी रमाशंकर जी,
1: नमस्कार। मैं ये पूछना चाहता था कि लू से बड़ी पुरानी सुनते आए हैं, लू में प्याज बहुत ही बचाव करता है और अन्य कोई भी साधन जिस तरह से लू से बचा जा सके वो कृपया बताए।
2: रूपाली जी, जी बिल्कुल, जैसा आपने कहा कि लू के समय में प्याज से बहुत बहुत ही बचाव मिलता है, तो इसका कोई साइंटिफिक एविडेंस मेरे पास है ऐसा तो मैं नहीं कहूंगी, बट फिर भी जो हम पुराने समय से ये जो धारणाएं चलती आ रही हैं इनमें कहीं ना कहीं कुछ सच्चाई है। तो आप प्याज जैसी चीजों का सेवन कर सकते हैं, बट उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप अपना फ्लूइड इनटेक यानी कि पीने की जो तरल पदार्थ जो होते हैं उनका सेवन आपको बढ़ाना है। तो सबसे ज्यादा जरूरी लू के समय में बचने के लिए है एक एडिक्वेट फ्लूइड इनटेक यानी कि तरल पदार्थ का सही मात्रा में आपको आपको लेना है, और इसके अलावा आपको गर्म जगह से बचना है। मतलब अगर घर से बाहर जितना हो सके उन चीजों को आपको अवॉइड करना है, घर जितना हो सके घर के अंदर रहना है, तो ये चीजें ज्यादा जरूरी हैं। खाने पीने में आपको जो भी आपको अभी मौसमी फल जो मैडम ने अभी बताए, तरबूज, लीची, आम, इनका सेवन करना है और तरल पदार्थ का आपको पर्याप्त मात्रा में सेवन करना है। ये सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज है।
0: डॉक्टर रूपाली, आपने कहा कि पर्याप्त मात्रा में तरल पदार्थ लिक्विड लेना चाहिए, तो किस तरह के तरल पदार्थों को लेना ठीक रहेगा ताकि जो शुगर का जो लेवल है वो बॉडी में कंट्रोल रहे?
2: आप नारियल पानी ले सकते हैं, आप आम रस, आम पन्ना जो कि बहुत गर्मी के समय में बहुत ही एक कॉमन एक कूल ड्रिंक माना जाता है।

0: बेल का रस, इस तरह के जो नेचुरल ड्रिंक्स हैं आप उनको प्रिपेयर कीजिए, आप उनको लीजिए और आप नॉर्मल अपना पानी लीजिए। और अगर आपको डिहाइड्रेशन क्रैम्प्स जैसी अगर फीलिंग आती है तब आप ओआरएस का जो मेडिकल ओआरएस जो अवेलेबल है उसका सेवन भी कर सकते हैं।
1: श्रीकांत झागड़े हैं महाराष्ट्र से। श्रीकांत जी क्या पूछना चाहते हैं आप?
2: हेलो
1: जी
2: नमस्कार।
1: नमस्कार
2: मैं श्रीता जाफर बोल रहा हूँ पुणे महाराष्ट्र से। मेरा दो सवाल है, ये बहुत अधिक गर्मी में जैसे थकान है, चिड़चिड़ापन है, बेचैनी लगती है, तो उसी स्थिति में क्या करना चाहिए? और दूसरा ये था कि ऐसे में मतलब ब्लड प्रेशर वालों ने क्या सावधानियां रखनी चाहिए, खासकर ना हाई बीपी वालों ने अपनी?
0: हाँ जी देखिए ये भी बहुत इम्पोर्टेंट एक क्वेश्चन आपने पूछा है, क्योंकि जो हाई बीपी के जो मरीज होते हैं वो बहुत समय इस तरह की कुछ दवाइयों पे होते हैं जैसे कि बीटा ब्लॉकर्स, एंड वो जो लोग होते हैं दे आर प्री डिस्पोज टू हैव हीट स्ट्रोक, मतलब उन को हीट स्ट्रोक की कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको कोई भी कोमॉर्बिडिटी है या कोई और आपको बीमारी से अगर आप ग्रस्त हैं, कोई भी क्रॉनिक आपको डिजीज है, सीओपीडी, एस्थमा, ब्लड प्रेशर की बीमारी, शुगर की बीमारी, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने आप को धूप से गर्मी से बचा कर रखें, क्योंकि इसमें आपका जो कार्डियो रेगुलेटरी जो मैकेनिजम्स हैं वो सब कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस तरह के मरीज को खास ध्यान रखना है।
1: डॉक्टर पटनायक आपसे हम ये जानना चाहेंगे सबसे पहले कि हीट वेव यानी लू क्या है?
3: देखिए जो हीट वेव जो लू बोलते हैं बहुत भाषा में, तो हमारा जो समर टाइम में जो ज्यादातर कि अप्रैल में जून थोड़ा सा जुलाई पार्ट में भी, तो क्या टेम्परेचर जो तापमान है उसका साधारणतः नॉर्मल से कभी कभी ज्यादा हो जाता है, नॉर्मल से ज्यादा हो जाता है। तो ये तो गर्मी का महीना है, गर्मी का महीना है तो टेम्परेचर साधारणतः ज्यादा रहता है, लेकिन जो नॉर्मल होता है हमारा जो क्लाइमेटोलॉजी 30 साल का एवरेज जो उसको नॉर्मल बोलते हैं उससे भी थोड़ा ज्यादा होता है, कंटिन्यूसली कुछ दिन के लिए प्रिवेल करता है, तो वो हम उसको एक हीट वेव डिफाइन करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम डेफिनेशन अगर हम करेंगे तो 40 डिग्री से अगर ज्यादा टेम्परेचर है तो एंड उसका जो नॉर्मल से 4.5 से 6.4 तक अगर हो गया तो हीट वेव हम बोलेंगे। अगर उस 6.4 से भी ज्यादा डिपार्चर जो कि नॉर्मल से ज्यादा इतना हो गया तो सीवियर हीट वेव बोलेंगे। तो ये एक डेफिनेशन के हिसाब में हम जैसे कि नॉर्मल से अगर इतना तो करते हैं। और एक डेफिनेशन ये भी है कि अगर 45 डिग्री हो गया तो हम उसको हीट वेव कर देंगे।
1: लेकिन क्या ये अलग अलग इलाकों के लिए अलग अलग होता है? जैसे कोस्टल एरियाज के लिए अलग होगा, प्लेन्स के लिए अलग होगा?
3: हाँ, कोस्टल एरिया के लिए थोड़ा सा है कि कोस्टल एरिया में 37 डिग्री होने के बाद भी हमने हीट वेव करते हैं, क्योंकि कोस्टल एरिया में जो ह्यूमिडिटी का थोड़ा प्रभाव रहता है ना, तो इससे कारण ज्यादा हानिकारक हो जाता है। तो अगर तापमान बहुत ज्यादा भी नहीं है लेकिन जो ह्यूमिडिटी जो एयर का ह्यूमिडिटी होता है कोस्टल एरिया में उसको मिलता है, इसलिए हमने उसको थोड़ा सा कोस्टल जो 37 डिग्री से ज्यादा होना था वो कोस्टल एरिया है।
1: और प्लेन्स के लिए?
3: प्लेन्स के लिए 40 डिग्री से ज्यादा होना।
1: एक और श्रोता है हमारे साथ राजू लवानिया आगरा उत्तर प्रदेश से। राजू जी
4: जी मेरा नमस्कार डॉक्टर साहब को और दीदी आपको भी
1: नमस्कार।
3: नमस्कार
4: डॉक्टर साहब, मैं ये जानना चाह रहा था जैसे घरेलू नुस्खों में तो खैर जैसे आम का पना है, बेल का शरबत है या नींबू पानी है, ये तो खैर पुराने जो नुस्खे हैं वो तो है ही, लेकिन मेडिकल साइंस में हीट वेव का परमानेंट ट्रीटमेंट और इम्पोर्टेंट ट्रीटमेंट क्या है?
0: जी देखिए सबसे इम्पोर्टेंट ट्रीटमेंट है कि आप जो गर्मी वाली जगह है उससे दूर रहें। तो अगर कोई किसी को भी इस तरह के लक्षण अगर आते हैं तो सबसे पहले हमें उस व्यक्ति को फटाफट से गर्मी वाली जगह से दूर मूव करना है। उसके बाद हमें उनको ठंडे पानी की पट्टी करनी है और साथ में अगर पॉसिबल है तो एक पंखा करना है, आप थोड़ा पानी स्प्रिंकल करके और पंखा करें। पंखा करना बहुत जरूरी होता है क्योंकि उससे इवेपोरेशन से जब हीट उड़ती है तो उससे और ज्यादा आपका हीट लॉस होता है, ज्यादा देर की अगर आप खाली उसमें ठंडा कुछ रख देंगे। उसके अलावा आपको पंखा भी ऊपर से करना है, तो पंखे के आगे थोड़ा थोड़ा पानी छिड़क के थोड़ी ठंडी पट्टी करना, तो ये जो है सबसे इम्पोर्टेंट इलाज है जो कहीं भी किया जा सकता है।
1: लू लगने पर क्या लक्षण दिखते हैं?
0: देखिए लू के लक्षण बहुत तरह के हो सकते हैं, माइल्ड लक्षण हो सकते हैं जिसमें कि आपको हीट क्रैम्प्स हो सकते हैं, स्किन रैश हो सकते हैं।

0: सकते हैं, जिसको कि नॉर्मल भाषा में हम प्रिकली हीट बोलते हैं या घमोरियां बोलते हैं। तो उसमें आपको आपको थोड़ा पाउडर डाल लेना है, कुछ एंटी एलर्जिक एंटी हिस्टामिनिक दवाई जैसे कि सिट्रोजीन वगैरह है उसका आप यूज कर सकते हो, और पानी आपको अच्छे से पीना, और ढीले ढाले कपड़े पहनने हैं, और हल्के रंग के हल्के कपड़े, ढीले ढाले कपड़े वो आपको पहनने हैं। तो ये हुआ हीट रैश के लिए। हीट क्रैम्प्स में आपको हो सकता है कि थोड़ा अकड़न जकड़न महसूस हो, आपको हाथ पैर सीधा करने में दिक्कत लगे, मांसपेशियों में आपको जकड़न महसूस हो, तो इस स्थिति में आपको फ्लूइड्स का ध्यान रखना। ये डिसइलेक्ट्रोलीमिया जो हो जाता है, इलेक्ट्रोलाइट्स का इम्बैलेंस जो हो जाता है हीट के वजह से, वो उससे होता है। तो उस समय आपको मेडिकल जो ORS है, आप ना केवल जो बाकी तरल पदार्थ जो कि हम रूटीनली लेते हैं उसके अलावा आप मेडिकली जो ORS मिलते हैं, मेडिकल ORS, आप उनका सेवन करें अगर आपको हीट क्रैम्प जैसा सिस्टम हो।
1: गंभीर लक्षण क्या होते हैं?
0: गंभीर लक्षण हो सकते हैं आपको हीट एग्जॉशन या फिर हीट स्ट्रोक। हीट स्ट्रोक सबसे सीवियर वैरायटी है, जिसमें कि आपको बेहोश

0: ये हुआ हीट रैश के लिए। हीट क्रैम्प्स में आपको हो सकता है कि थोड़ा अकड़न जकड़न महसूस हो, आपको हाथ पैर सीधा करने में दिक्कत लगे, मांसपेशियों में आपको जकड़न महसूस हो, तो इस स्थिति में आपको फ्लूइड्स का ध्यान रखना। ये डिसइलेक्ट्रोलीमिया जो हो जाता है, इलेक्ट्रोलाइट्स का इम्बैलेंस जो हो जाता है हीट के वजह से, वो उससे होता है। तो उस समय आपको मेडिकल जो ओआरएस है, आप ना केवल जो बाकी तरल पदार्थ जो कि हम रूटीनली लेते हैं, उसके अलावा आप मेडिकली जो ओआरएस मिलते हैं, मेडिकल ओआरएस, आप उनका सेवन करें अगर आपको हीट क्रैम्प जैसा सिस्टम हो।
1: और गंभीर लक्षण क्या होते हैं?
0: गंभीर लक्षण हो सकते हैं आपको हीट एग्जॉशन या फिर हीट स्ट्रोक। हीट स्ट्रोक सबसे सिवियर वैरायटी है, जिसमें कि आपको बेहोशी, आपका एक तो जो कोर बॉडी टेम्परेचर है वो 40 डिग्री कोर बॉडी टेम्परेचर, जो कि आपका रेक्टल टेम्परेचर आइडली होना चाहिए, ना कि सरफेस सतह वाला नहीं, कोर बॉडी जिसमें कि रेक्टल टेम्परेचर आइडियल माना जाता है, वो 40 डिग्री से ज्यादा अगर आपका है तो वो, प्लस आपको कुछ भी बेहोशी का लक्षण, ऑल्टर्ड सेंसोरियम जिसको बोलते हैं, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, इस तरह का कोई भी लक्षण है, तो ये आप सबसे सिवियर फॉर्म जो होता है हीट स्ट्रोक का, उसमें गिना
1: तो
0: जाता है।
1: अगर ऐसी स्थिति हो तो हॉस्पिटल ले जाने से पहले तुरंत
0: बिल्कुल
1: क्या
0: बिल्कुल
1: सहायता उपलब्ध कराई जा
0: उसमें
1: सकती है घर पर?
0: फटाफट आप उनको ठंडी जगह, एक तो हल्के कपड़े, ढीले कपड़े और गीला करके, कपड़ा गीला करके पंखा उसके ऊपर करना है, यही सबसे इम्पोर्टेंट है। इवन अस्पताल में भी जो सबसे पहला ट्रीटमेंट दिया जाएगा यही दिया जाएगा। हीट स्ट्रोक दो तरह का होता है, क्लासिकल और एक्सर्शन। तो क्लासिकल में आपको यही सबसे इम्पोर्टेंट और इफेक्टिव मेथड है, जो एक्सर्शनल होता है, उसमें बहुत बार हम इमर्शन भी बोलते हैं कि आप उसको ठंडे पानी में इमर्स कर दो, कि कपड़े सब हटा के किसी ठंडे पानी के टब में लिटाना, वो एक्सर्शनल हीट स्ट्रोक में होता है। बट जो आजकल जो मिलता है उसमें क्लासिकल हीट स्ट्रोक है, और कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, अगर कोई बाहर हैवी वर्क कोई कर रहा है तो उसमें क्लासिकल और एक्सर्शनल दोनों तरह का हीट स्ट्रोक हो सकता है।
1: चौधरी महेंद्र सिंह मथुरा उत्तर प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हैं। जी महेंद्र जी।
2: जी कनक जी नमस्कार।
1: नमस्ते।
2: आकाशवाणी स्टूडियो में आमंत्रित दोनों विशेषज्ञों का बहुत बहुत स्वागत और नमस्कार।
0: धन्यवाद
2: जी। मैं चाहता हूँ कि एक स्वस्थ व्यक्ति दिन में कितना पानी पिए और कितना पानी जरूरी है। दूसरा सवाल मेरा ये है कि जैसे अच्छा एक स्वस्थ व्यक्ति पानी की पूर्ति हेतु बोतल लगवाता है, यानी डिस्टिल वाटर कहें या कुछ भी कहें उसे, तो आवश्यक है या नहीं?
0: ये देखिए, एक किसी भी अडल्ट व्यक्ति की जो बॉडी होती है उसका 70-80% जो कॉन्स्टिट्यूएंट है वो पानी है, ठीक है। तो उस हिसाब से अगर जो अडल्ट व्यक्ति है, कम से कम उसको 8 से 10 ग्लास पानी डेली पीना है। ये नॉर्मल सिचुएशन की बात है, लगभग एटली कम से कम आपको 8 ग्लास पानी पीना है, क्योंकि आपका 70-80% जो आपका बॉडी का वेट है वो उसमें वाटर है, तो उसका जो रिप्लेनिश करने के लिए आपको कम से कम 2 लीटर आपको पानी पीना है। बट अगर हम आज के समय की बात करें, जब हम लू लगने की बात कर रहे हैं, तो उस समय आपको थोड़ा सा अतिरिक्त पानी की आवश्यकता होती है, कम से कम 2 से 3 लीटर आपको पीना ही है। इसके अलावा डिपेंडिंग कि आप क्या काम कर रहे हैं, आप कहाँ हैं, वहां कितनी गर्मी है, अगर आपको लगता है बहुत पसीना आ रहा है, बहुत वाटर लॉस है, तो आप इसके अतिरिक्त भी पानी पी सकते हैं। बट नॉर्मल स्थिति में 3-3.5 लीटर से ज्यादा पानी पीने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वरना उसके भी साइड इफेक्ट हो सकते हैं।
1: और ये भी ध्यान रखना होगा कि हम पानी पीने के नाम पर या लस्सी पीने के नाम पर बहुत ज्यादा मीठी चीजें
0: बिल्कुल ना बिल्कुल
1: लें।
0: बिल्कुल मीठा तो अतिरिक्त बिल्कुल ना लें, और पैक्ड इसलिए जूसेस जो है वो अवॉइड करें, नेचुरल अगर आप लें वो फिर भी
1: जो हमारे पुराने लस्सी, छाछ, बेल का शरबत, ऐसी चीजें ज्यादा अच्छी होती है। नींबू पानी
0: बिल्कुल।
1: डॉक्टर पटनायक, कई बार वार्म नाइट और वेरी वार्म नाइट की भी चेतावनी जारी की जाती है, तो ये कब किया जाता है और इसका मतलब क्या होता है?
3: देखिए खतरा क्या होता है, तो दिन का तापमान तो हमेशा समर में हाई रहता ही है, तो उससे जो हम हीट वेव का डेफिनेशन करते हैं, दिन का मैक्सिमम टेम्परेचर जो होता है उसके ऊपर। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि दिन के साथ मैक्सिमम टेम्परेचर हो गया, हीट वेव हुआ, उसके बाद नाइट जब आता है तो नाइट में भी क्या होता है, जो नाइट का टेम्परेचर तापमान है वो भी बहुत ज्यादा हो जाता है, तो वो ज्यादा हानिकारक होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो बाहर में रहते हैं ये दिन का भी गर्मी झेल लिया, उसके बाद जब नाइट का भी टेम्परेचर, अगर उनके पास एसी नहीं है जो यूज नहीं करते, तो उसको हम वार्म नाइट कहते हैं, तो उसमें मिनिमम टेम्परेचर

0: जो है आपका नाइट का टेम्परेचर वो भी अगर 4.5 to 6.4 हो गया तो उसमें वार्म नाइट कर दे, तो वार्म नाइट जो है नाइट टेम्परेचर में समर के टाइम में, लेकिन नाइट टेम्परेचर में अगर अधिक हो गया तो उसको वार्म नाइट कहे,
1: और वो भी खतरनाक होता
0: है, वो भी खतरनाक होता है।
1: धर्मवीर लाइन पर है हमारे साथ दिल्ली से। जी धर्मवीर जी।
2: हेलो नमस्कार जी, मैं धर्मवीर गांधीनगर दिल्ली से बात कर रहा हूँ
1: जी।
2: हमारे एक्सपर्ट को भी नमस्कार।
0: नमस्कार।
2: मैं ये पूछना चाहूंगा, जैसे हम गांधीनगर मार्केट में रहते हैं और दुकान हर प्रत्येक दुकान में एसी चलते हैं एक एक दो दो, तो एक तो उनकी भी हीट निकलती है, मार्केट में निकलते हैं तो ऐसा लगता है जैसे हम किसी बच्ची से गुजर रहे हैं, तो ऐसे में हम लोग सावधानी क्या बरतें हैं, जाना भी जरूरी होता है। और दूसरा मेरा ये पूछना है कि डायबिटीज मरीजों को सिकंजी और ओआर का घोल लेना ठीक है कि नहीं। और तीसरा एक और पुरानी एक बात याद आती है, बुजुर्ग कहते थे, जैसे कहते थे कि लोहा लोहे को काटता है, ऐसे जो गर्मी गर्मी को मारती है, बैलेंस बराबर करती है। अगर जितनी ज्यादा गर्मी हो आप चाय पी लें कॉफी पी लें तो बैलेंस बना रहता है, कोल्ड ड्रिंक लेना ठीक रहता है कि नहीं, कृपा करते।
3: हाँ जी, देखिए कोल्ड ड्रिंक लेना तो नहीं ठीक है ना, बट जो आप नेचुरल जो चीजें हैं जो आपको वैसे ठंडक प्रदान करती हैं, जैसा कि हम डिस्कस कर रहे हैं कि आप बेल रस पी सकते हैं या फिर आप नींबू पानी ले सकते हैं, तो जो नेचुरल चीजें कोकोनट वाटर ले सकते हैं, तो जो तरल चीजें हैं उनका सेवन आपको बढ़ाना है। इसका मतलब कोल्ड ठंडा लेने से आपको कोल्ड ड्रिंक नहीं पीनी है, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक लेने से आपकी शरीर को कुछ फायदा नहीं मिलेगा। तो कोल्ड ड्रिंक जैसी चीजें नहीं अवॉइड करनी है, नहीं लेनी है, वो अवॉइड करनी है। और जो आपने कहा शुगरी ड्रिंक, क्या डायबिटीज के मरीज को हम दे सकते हैं? नहीं, वो अवॉइड करनी है। नींबू पानी अगर आप देंगे उनको तो आप बिना चीनी के दीजिए, नमक वाला नींबू पानी दे सकते हैं, सॉल्टेड नींबू पानी दे सकते हैं, या आप उनको लस्सी दीजिए छाछ वाली जो होती है, जो कि नमकीन लस्सी होती है, तो उनको उस कोकोनट वाटर आप दे सकते हैं।
1: जो श्रोता अभी अभी हमसे जुड़े हैं उन्हें हम बता दें कि आप सुन रहे हैं कार्यक्रम पब्लिक स्पीक। आज हम लू से सुरक्षा और सावधानियों पर चर्चा कर रहे हैं। आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं भारत मौसम विज्ञान विभाग में वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ डी आर पटनायक और सफदरजंग अस्पताल में मेडिसिन विभाग में प्रोफेसर डॉ रूपाली मलिक। ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और दूरदर्शन की डीटीएच सेवा पर भी उपलब्ध है। और अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं अमित उपाध्याय बिहार से। अमित जी आप हमें सुन पा रहे हैं? जी
4: हाँ हाँ जी जी मैं सुन पा रहा हूँ। मैं सासाराम बिहार से बोल रहा हूँ। अमित उपाध्याय, मैं ये मेरा ये सवाल था कि जैसे कि पिछले हम लोग देखें तुलना करें और पिछले साल के और हर एक साल से तुलना करें तो गर्मी का जो टेम्परेचर है वो लगातार बढ़ते जा रहा है। तो जैसे कि पहले टेम्परेचर हाई, अभी मई में ही टेम्परेचर इतना 45 प्लस जा रहा है, 48 तक आ जा रहा है। तो हम ये मेरा ये प्रश्न है कि स्वस्थ शरीर जो जिसका शरीर में कुछ नहीं है जांच करने पर भी, वो भी चलते चलते कभी कभी गिर जाते हैं अचानक से, उनका भी बेहोशी अगर कुछ वैसे हो जाता है, तो हम लोग इस पे क्या और ऐड कर सकते हैं? जैसे कि खूब पानी पीना जो भी डॉक्टर साहब बताते हैं वो सब हम लोग करते हैं, इसमें और क्या हम लोग ऐड कर सकते हैं ताकि हम लोग स्वस्थ रह सके? जी
3: देखिए, जब भी आप बाहर निकलें कुछ एक आप छतरी लें या कपड़ा लें, गमछा जैसा कि कहा जाता है, गीला करके लें तो और भी अच्छा है। तो आपको उन चीजों का ध्यान रखना। देखिए नॉर्मल व्यक्ति में भी ये चीज हो सकती है, जिसको पहले से कोई बीमारी है वो ज्यादा प्रीडिस्पोज्ड है क्योंकि उसके रेगुलेटरी मैकेनिज्म ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। एंड स्पेशली जैसे कि कोई एंटीसाइकोटिक ड्रग्स जो लेते हैं खासतौर से, वो लोग बहुत ही प्रीडिस्पोज्ड होते हैं इस तरह की कॉम्प्लिकेशंस के लिए, हीट स्ट्रोक के लिए, क्योंकि उसमें पूरा टेम्परेचर रेगुलेशन उनका हो जाता है। तो वो लोग खास ध्यान रखें। और जो नॉर्मल व्यक्ति है तो बाहर निकलते समय ये सब प्रिकॉशंस लें, फ्लूइड्स लें, तो इतना ही है आप कर सकते हैं। और अगर कोई सिम्टम आपको लगता है हीट एग्जॉशन का या हीट स्ट्रोक का, तो इमिडिएटली ठंडी जगह पे मूव करके गीला कपड़ा रख के आप हवा कर सकते हैं।
1: तो हीट वेव किसी को भी प्रभावित कर सकता है, पर जैसा कि आपने बताया कि जिनको शुगर है या जिन्हें हाई ब्लड प्रेशर है उन्हें इसका ज्यादा खतरा रहता है। और कौन कौन से ऐसे वर्ग है, मतलब कैटेगरी क्या क्या है जिनके लोगों को इसका खतरा?
3: किसी भी क्रॉनिक डिजीज का अगर कोई मरीज है, कोई अस्थमा है, कोई सीओपीडी है, कोई हार्ट डिजीज का पेशेंट है, कोई कैंसर कीमोथेरेपी पे है, ये सब भी प्रीडिस्पोज्ड है। बच्चे हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं, प्रेग्नेंट लेडीज हैं, ये सभी जो हाई रिस्क ग्रुप्स में ही आते हैं।
1: तो प्रेग्नेंट लेडीज की जो आपने बात की उसमें क्या असर पड़ता है उस पर, उसके होने वाले बच्चे पर हीट वेव का?
3: देखिए जब आप हीट से एक्सपोज्ड है तो आपको पेरिफेरल वेजोडायलेटेशन होता है।

0: कि आपकी जो पेरिफ्रीज की जो वेसल्स हैं वो डायलेट हो जाती हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा हीट आपके बॉडी से बाहर निकल सके. उसकी वजह से थोड़ा वॉल्यूम जो है आपका बाकी इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स की ब्लड सप्लाई, उसके लिए ब्लड कम हो जाता है. तो ऐसे में जो बच्चा है उसका ब्लड सप्लाई भी कम हो सकता है. तो इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि प्रेग्नेंट लेडीज को हम कोशिश करें ऐसी गर्मी की जगह से बचा कर रखें, और फ्लूइड, फिर से वही बात है, तरल पदार्थ का जितना हो सके सेवन करें.
1: महाराष्ट्र से कोल्हापुर से विजय कुमार स्वामी है हमारे अगले श्रोता.
2: हाँ जी
1: जी.
2: हाँ कनक दीदी नमस्ते.
1: नमस्ते.
2: हाँ दीदी को भी नमस्ते. सर नमस्ते.
0: नमस्ते.
2: हाँ विजय कुमार स्वामी गांव बस्तवा तहसील शिवर जिला कोल्हापुर महाराष्ट्र से बोल रहा हूँ मैं.
1: जी जी.
2: हाँ मेरा सवाल यह है कि अभी दिन रात पंखे जो चालू है
1: जी,
2: इसका हमारे पर शरीर पर कुछ असर हो सकता है क्या?
1: पंखे का असर तो गलत नहीं होगा.
0: नहीं, पंखे से फायदा है, बट अगर 40 डिग्री से ज्यादा का टेम्परेचर है तब केवल पंखा चलाने से फायदा नहीं है. तब आप एसी चला के एसी का टेम्परेचर 27 डिग्री रख के साथ में आप पंखा चलाएंगे तो उससे और आपको 4 डिग्री कम महसूस होगा. तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि एसी का टेम्परेचर 15, 20, 22, 21 नहीं रखना है, 27 रखना है ज्यादा से ज्यादा जो पॉसिबल. और साथ में आप थोड़ा फैन तब चलाएंगे तो वो और मदद करेगा. और जैसे कि पहले वो मैं पूछ रहे थे कि हम सब जगह एसी चल रहा है, इतना गर्म है, तो और हम क्या कर सकते हैं? आपको जितना हो सके अपने छतों पे ग्रीन प्लांटेशन करना चाहिए, उससे थोड़ा सा आपका जो है
1: घर का तापमान थोड़ा
0: तापमान जो है कंट्रोल रहेगा.
1: और घर के आसपास भी पौधे लगाने चाहिए.
0: बिल्कुल बिल्कुल, वो बहुत इम्पोर्टेंट है.
1: हमारे एक श्रोता ने व्हाट्सएप पर प्रश्न पूछा है डॉक्टर पटनायक कि आईएमडी की एडवाइजरी और मौसम संबंधी अपडेट आम लोग कहां से और कैसे प्राप्त कर सकते हैं?
3: आईएमडी जो
1: ये मयंक शेखर जी, मैं आपको नाम बता दूं, मयंक शेखर मिश्रा हैं, ये वाराणसी से उन्होंने पूछा है.
3: हाँ वाराणसी भी बहुत गर्मी जगह है और वहाँ भी बहुत लस्सी ये सब जो इसलिए भी चलता है. तो देखिए जो हम जो आईएमडी जो देता है सूचना जो हीट वेव का अर्ली वार्निंग जो बोलते हैं हम, वो बहुत सारे मैकेनिज्म में हम देते हैं. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल पहला तो एक है कि हम हमारा वेबसाइट में देते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग वेबसाइट नहीं करते अपडेट, मान लीजिए वेबसाइट नहीं देते. दो देन दूसरा हमारा जो ऐप वगैरह है उसमें भी हमारे इसका जानकारी देते हैं. ऐप के साथ साथ हम आजकल क्या कर रहे हैं, हर दिन एक वीडियो बनाते हैं, हम वीडियो बनाते हैं उसको अपलोड किया जाता है, तो उसमें आपका पुरका जानकारी जो यूट्यूब में अपलोड किया जाता है तो जो जो लोग उसको भी एक्सेस करते हैं उसमें से मिल जाए. आपको ऐप से मिलेगा, व्हाट्सअप में मिलेगा, देन सोशल मीडिया फेसबुक आईएमडी का अगर कोई है जिनका अकाउंट अगर करेंगे तो उसमें मिलेगा. तो ये तो ऑल इंडिया लेवल में भी है. और हमारे जो रीजनल सेंटर वगैरह जैसे कि वाराणसी से उन्होंने बताया भाई साहब, तो लखनऊ में हमारा जो रीजनल मेट सेंटर्स है वहां से जो रीजनल डिस्ट्रिक्ट वाइज भी इन्फॉर्मेशन, उनका वेबसाइट अलग होता है, उनका जो डाटाबेस है जहां जहां मैसेज आता है उनका सारा सब उन्होंने रखा है. तो हर तरह का मीडियम से हम लोगों को प्रेषित करते हैं.
1: इन्होंने ये भी पूछा है कि दिन के कुछ वो विशेष समय क्या है जब लोगों को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए इतनी भीषण गर्मी में.
3: ठीक है, ये दिन में जब टेम्परेचर सबसे मैक्सिमम टेम्परेचर जो होता है वो लगभग अराउंड 2:30-3 के आसपास, 3:30 इसी में होता है दिन का मैक्सिमम टेम्परेचर. लेकिन सुबह से गर्मी शुरू हो जाता है, गर्मी टेम्परेचर भी बढ़ता है. और दूसरी बात क्या होता है कि जब नीचे का जमीन भी गर्म हो जाता है वहां से भी टेम्परेचर ऊपर रेडिएट होता है. तो ये दोनों का जब ये होता है तब मैक्सिमम टेम्परेचर होता है. तो आपका इसलिए मैक्सिमम टेम्परेचर लगभग उसी टाइम में 2:30 के बाद आता है, जबकि पहला 12 बजे बचपन टाइम नहीं आता है, 2:30 के बाद 3 बजे अराउंड उसमें आता है कि जब दोनों तरफ से रेडिएशन आता है. तो इसलिए उसी टाइम में नेचुरली जब डायरेक्ट सनलाइट है 11 बजे के बाद एटलीस्ट डायरेक्ट सनलाइट ज्यादा तेज है उस टाइम अवॉइड करना चाहिए. जब मैक्सिमम टेम्परेचर आ रहा है, जब गर्मी धरती के नीचे गर्मी हो गया, गर्म हवा भी नीचे से फेंक रहा है, तो वो भी 3-4 बजे तक तो अवॉइड करना,
1: मतलब 11 से 4 तक अवॉइड करना चाहिए जहां तक हो सके. अगला सवाल है रवि जवालिया जी का हरिद्वार से.
4: नमस्कार मैम जी.
1: नमस्कार
4: जी, मैं रवि जवालिया जड़वीरपुर हरिद्वार से बोल रहा हूँ और सभी विशेषज्ञ को

0: आपको भी नमस्कार बोल रहा हूँ जी, और आप सभी को और मेरे सभी श्रोता गणों को भी अभिभावक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं जी।
1: जी आपको भी।
0: हाँ जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि मैं कोरजेशन मशीन पे गत्ता कंपनी में काम करता हूँ, वो मशीन थोड़ी हीट जनरेट करती है, तो मुझे वहाँ पे क्या सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि मुझे भी शायद गर्मी का एहसास होता ही है सभी को, तो मैं अपने माध्यम से वैसे तो मुझे पता है, मैं श्रोता उससे भी जान मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि क्या मुझे उसमें क्या सावधानी बरतनी चाहिए मैम जी।
1: ये जहाँ काम करते हैं वो मशीन से गर्मी निकलती है काफी, तो क्या सावधानी इनको बरतनी चाहिए?
2: तो जितना हल्का कपड़ा हो सके आप उतना हल्का कपड़ा पहने, और फिर वही अगर एक गीला कपड़ा आप सिर के आसपास लगा सकते हैं तो वो आई थिंक आपको थोड़ा मदद करेगा, और लिक्विड चीजें लेते
1: हैं। ये तो हम आपको बार बार बता रहे हैं, डॉक्टर साहब बार बार बता रहे हैं कि आपको जितना हो सके उतना तरल पदार्थ लिक्विड लेना है,
2: और आसपास कहीं पंखा है तो आप पंखा
1: बीच बीच में आप जा सकते हैं। डॉक्टर रूपाली, बहुत छोटे बच्चे जो अभी अपनी स्थिति नहीं बता सकते हैं, ऐसे बच्चों के अभिभावक कैसे समझ पाएंगे कि बच्चे को लू लग गई है?
2: जी बिल्कुल, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि तो बच्चों को गर्मी के समय जैसा सर ने बताया 11 से 4 के बीच में आप घर से बाहर ना भेजें, ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि उसी टाइम पे सबसे ज्यादा लू लगने का रिस्क होता है। और बच्चों को हमें बहुत इंश्योर करना है कि वो कम से कम 8 ग्लास पानी जरूर पिए, क्योंकि इस समय हो सकता है बच्चा पानी कम पी रहा है, तो हमें उस चीज का बहुत ध्यान रखना है कि बच्चों का फ्लूइड इंटेक ठीक रहे, 11 से 4 के समय वो बाहर ना निकले। और बाकी अगर लगता है कि बच्चा कुछ भी सुस्तीपन दिखा रहा है,
1: जैसे बहुत छोटा बच्चा,
2: बिल्कुल
1: जो बहुत, का बच्चा
2: बिल्कुल
1: है,
2: बिल्कुल
1: उसके लिए
2: सुस्तीपन दूध नहीं पीना, अगर बच्चा इतना छोटा बिल्कुल अगर दूध नहीं पीना या बुखार होना तो इमीडिएटली आपको किसी भी हेल्थ केयर फैसिलिटी को विजिट करना है और उनकी मदद लेनी है। और बच्चों को भी ढीले कपड़े, ये कपड़े बहुत इम्पोर्टेंट है, हल्के फुल्के हवादार ढीले कपड़े।
1: अगला सवाल है राकेश जी का शिमला से।
3: जी नमस्कार।
1: नमस्कार
3: जी, मेरा दो सवाल है। पहला सवाल तो ये कि जब गर्मी बढ़ती है तो लोग क्या करते हैं, फ्रिज का पानी पीते हैं, वो कितना घातक है? और दूसरा सवाल मेरा ये है कि जैसे कि अब हिमाचल प्रदेश में पहाड़ी क्षेत्र में गर्मी भी बढ़ रही है, तो इसमें मैदानी क्षेत्र में क्या असर पड़ेगा? ये मेरे दोनों सवाल है।
1: जब हिल स्टेशन पर गर्मी बढ़ने लगी है तो प्लेन्स पे और भी गर्मी होगी, इनका ये पूछना है कि क्या असर पड़ेगा प्लेन्स में?
4: देखिए, जैसा कि हिल स्टेशन में थोड़ा सा हमारा ये है कि हिल स्टेशन में थोड़ा तापमान प्लेन स्टेशन से थोड़ा कम रहता है, ठीक है, तो इसलिए जैसा कि प्लेन स्टेशन से भी लोग जाते रहते हैं, तो बट आजकल क्या होता है, क्लाइमेट चेंज है, तो हिल एरिया में भी जो जैसे कि पहला इतना गर्मी नहीं होता था, आजकल हिल एरिया में भी गर्मी महसूस कर रहे हैं, तो इसलिए तो हिल स्टेशन के लिए तो गर्मी आपका धीरे धीरे भी हो रहा है, पहले जो इतना नहीं हो रहा था इसलिए, लेकिन प्लेन एरिया में तो आपका उससे ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि प्लेन एरिया में तो थोड़ा गर्मी का ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि वहां नॉर्मल टेम्परेचर जो है वो ऑलवेज थोड़ा सा ज्यादा है हिल स्टेशन के ऊपर, तो इसलिए हिल स्टेशन में जब हो रहा है तो उसका प्रभाव प्लेन में नहीं है, लेकिन उसका प्लेन में भी रहेगा, जब हिल में हो रहा था तो प्लेन में भी रहेगा।
1: डॉक्टर पटनायक, हीट एक्शन प्लान्स क्या है?
4: हाँ, हीट एक्शन प्लान क्या होता है कि पहला क्या हो रहा था, जब ये एक्शन प्लान नहीं होता था तो हीट क्या धीरे धीरे किल करता है, तो हीट वेव के कारण भी धीरे धीरे ग्रेजुअली डेथ जो है नंबर ऑफ डेथ बढ़ता गया, तो गुजरात साइड में पहला ये महसूस हुआ कि बहुत सारे जो हीट रिलेटेड डेथ बढ़ रहा है, तो देखा गया कि जब टेम्परेचर बढ़ रहा है बहुत अनजान के कारण लोग क्या करना है क्या नहीं करना है ये नहीं जानते थे, इसलिए बहुत एक्सपोजर होता था, क्या एक्शन लेना है उनको पता नहीं था, तो इसलिए लोग थोड़ा डेथ 2010-12 में ऐसा हुआ, तो उसमें हीट एक्शन प्लान जब स्टार्ट हुआ उसमें क्या होता है, एक जो भी राज्य में जहां हीट रिलेटेड ये सब इफेक्ट रहता है तो उन्होंने वन बाय वन थोड़ा हीट एक्शन प्लान शुरू किया, तो पहला मान लो गुजरात में हीट एक्शन प्लान शुरू किया, तो हीट एक्शन प्लान में क्या होता है, ये बहुत सारे म्यूनिसिपल लोग जो होते हैं, हेल्थ प्रोफेशनल होते हैं, IMD के जो वार्निंग अर्ली वार्निंग देते हैं, और ये बाकी जो एडवाइजरी इशू करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं पानी, ये सारे जो है एक तरीके से रहता है, तो पहला उनको क्या होता है, एक हमारे डिपार्टमेंट से अगले 5 दिन अगले 7 दिन के लिए तापमान कैसा रहेगा वो एक पहला इन्फॉर्मेशन हो गया, तो वो इन्फॉर्मेशन के बाद फिर म्यूनिसिपल जो होते हैं वो अपना काम करते हैं, अगर पानी डिस्ट्रीब्यूट करना होता पानी

0: करते हैं, अगर ज्यादा लोग एंटिसिपेट कर रहे हैं कि ज्यादा लोग हो जाएंगे तो उनको फिर मेडिकल अटेंशन देना जाता है।
1: डॉक्टर पटनायक, अब समय हो रहा है कार्यक्रम को समाप्त करने का। हम अपने उन सभी श्रोताओं का आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने फोन लाइन्स और डिजिटल माध्यम से इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। भारत मौसम विज्ञान विभाग में वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर डी आर पटनायक और सफदरजंग अस्पताल में मेडिसिन विभाग में प्रोफेसर डॉक्टर रूपाली मलिक, आप दोनों का स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ ही पब्लिक स्पीक का ये अंक यहीं समाप्त होता है। अगले सप्ताह हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए कनकलता को आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं
3: आकाशवाणी का ये श्री विजयपुरम केंद्र है। रात के 10 बजे हैं, प्रस्तुत है फिल्मी गीतों का कार्यक्रम संदेशे आते हैं।

आते हैं। श्रोताओं नमस्कार, कार्यक्रम संदेश आते हैं में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, अगर आप हमारे जरिए अपना मनपसंद गीत सुनना चाहते हैं, फोन उठाइए, टाइप कीजिए गीत के बोल, फिल्म का नाम, आपका नाम, पता जरूर शामिल कीजिए और हमें भेजिए इस नंबर पर। हमारा नंबर है 9474234000। नंबर एक बार फिर सुन लीजिए, 9474234000।

कार्यक्रम का पहला संदेश हमने शामिल किया है गारा चर्मा से अंकिता का। ये सुनना चाहती है दिल तो पागल है फिल्म से प्यार कर गीत।

दिगलीपुर से रेशमा सुनना चाहती है विजयपथ फिल्म का गीत, जिसे अलका याग्निक और कुमार सानू ने गाया है। रेशमा जी, आनंद लीजिए आपका मनपसंद गीत।

स्वराजद्वीप से मनोहर और साथी, इनका संदेश हमें मिला है और ये सुनना चाहते हैं ये जवानी है दीवानी फिल्म का गीत जिसे विनी दयाल और शेफाली ने गाया है।

आज के इस कार्यक्रम के आखिरी संदेश हमने शामिल किया है बातों बस्ती से महेश का। ये सुनना चाहते हैं सरफरोश फिल्म का ये गीत।

अर्ज है, कुछ मजनू बने, कुछ रांझा बने, कुछ रोमियो कुछ फरहाद हुए, इस रंग रूप की चाहत में जाने कितने बर्बाद हुए। वो देखो

जिसे देखो दिल की धुनी रमाता। अरे ये मंदिर नहीं है, शिवाला नहीं है, हसीनों से कह दो कहीं और जाएं, मेरा दिल है दिल, धर्मशाला नहीं है।

0: करते हैं।
1: सरफरोश फिल्म के इस गीत के साथ ही फिल्मी गीतों का कार्यक्रम संदेशे आते हैं अब यहीं समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये श्री विजयपुरम केंद्र है। मौसम कार्यालय से प्राप्त सूचना के अनुसार अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा हुई। कार निकोबार वायुसेना क्षेत्र में 2 मिलीमीटर और नानकवरी में 1 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई। जन सेवाओं और मछुआरों के लिए सूचित किया जाता है कि हवा की गति 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से होगी। मछुआरों को आज से 4 तारीख तक समुद्र में न जाने की सलाह दी जाती है। कल सवेरे तक के मौसम

पूर्वानुमान में बताया जाता है कि अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होगी या गरज के साथ छींटे पड़ेंगे। ये था मौसम का हाल। इस समय रात के 10:30 और 35 सेकेंड हुए हैं। आज की हमारी दूसरी सभा अब यहीं समाप्त होती है। प्राइमरी चैनल पर कल प्रातः 5:23 पर हम अपनी पहली सभा में, जबकि 100.9 MHz विविध भारती FM पर कल सुबह 6 बजे फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय हिंद।

मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। आज मंगलवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ माह की 12वीं तिथि, तदनुसार 2 जून सन 2026। सुबह के समय 5:28.30 हुए हैं। आज की हमारी पहली सभा में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन करते हैं।